मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीआरएमए 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और वेब्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 12वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 3 सितंबर 2026। सुबह के 5:56 हो रहे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि

0: भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचाव कर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज का विषय है परवल की खेती। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम परवल की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। परवल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इसमें जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। भारी व लवणीय मृदाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। यह फसल सूखे के प्रति सहनशील है। जलमग्न दशा में इसकी बढ़वार ठीक नहीं हो पाती है। मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करने के बाद 4-5 जुताइयां देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल बना लेते हैं। जहाँ तक उर्वरकों की बात है तो परवल की अच्छी खेती के लिए 200 से 250 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से पहले ही खेत में मिला देना चाहिए। फिर इसके बाद 120 किलोग्राम यूरिया, 240 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 65 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। अंतिम जुताई के समय 40 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 65 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बाकी जो यूरिया बचती है, 40 किलोग्राम यूरिया मार्च माह में सिंचाई के बाद खेत में देना चाहिए तथा 40 किलोग्राम यूरिया फूल आने पर पौधों के चारों तरफ देना चाहिए। जब खेत तैयार हो जाए फिर 30 से 40 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे 2 मीटर की दूरी पर बना लेते हैं। लाइन से लाइन की दूरी भी 2 मीटर ही रखते हैं, परंतु जब इसे मचान पर चढ़ाने के लिए उगाते हैं तो ये दूरियां 1.5-1.5 मीटर ही रखते हैं। प्रत्येक गड्ढे में आधा भाग मिट्टी, 1/4 भाग बालू और 1/4 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 100 ग्राम नीम की खली, ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई कर देते हैं और फिर इसमें परवल के पौधे को लगाते हैं। इसकी जो प्रजातियाँ हैं वह डांडली, कल्याणी, बिहार शरीफ, सुपारी, सफेदा, निरिया, संतोखिया और जौनपुरी, ये सब देसी किस्में हैं। इसके अलावा कुछ उन्नतशील किस्में हैं जैसे FP1, FP3 और FP4। तो इनमें से जो भी प्रजाति आपको मिले लेकर के रोपाई करें। परवल के पौधे तनों द्वारा लगाए जाते हैं। इसके लिए परवल की लताओं की कटिंग लगाते हैं। पके परवल के बीज बोकर भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से लगभग 50% पौधे नर निकल जाते हैं जिससे पैदावार की क्षति होती है। अतः पौधों का प्रसारण कटिंग द्वारा ही किया जाता है। जिन पौधों में फलत समाप्त हो चुकी होती है वो तो मादा पौधे ही होते हैं। इन्हें पहचान कर इन्हीं लताओं में से 120 से 150 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े जिनमें 3-4 गांठों से कम ना हो गोलाई में घुमाकर इस प्रकार मोड़ना चाहिए कि लच्छे की चौड़ाई लगभग 30 सेंटीमीटर रह जाए। फिर गोले को आमने सामने दाब कर बीच में बांध देते हैं जिससे ये लंबे हो जाते हैं और दोनों किनारों पर छोर की शक्ल बन जाती है। इन लक्ष्यों को तय

0: तैयार किए गए थालों में जो जमीन से 6 से 8 सेंटीमीटर ऊपर उठे हों, में इस प्रकार रोपित करते हैं कि बंडल के दोनों सिरे लगभग 2-2 सेंटीमीटर जमीन से बाहर निकले रहें। रोपाई के बाद मिट्टी भली भांति दबा देनी चाहिए ताकि वायु जड़ों तक न पहुंच सके। एक बात और ध्यान में रखें, परागण क्रिया सुचारू रूप से होने के लिए 10% नर पौधों की रोपाई भी करना जरूरी है। लताओं की रोपाई के तुरंत बाद थालों में हल्की सी सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर तथा सर्दी में 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। फूलने एवं फलन के समय खेत में नमी रहना आवश्यक है। पौधों को मचान पर चढ़ाने से 2 से 4 कुंटल प्रति एकड़ उपज अधिक मिलती है। ये मचान एंगल आयरन अथवा लकड़ी के खंभों पर लोहे के तारों अथवा लकड़ी के मार्च के महीने में बनाए जाते हैं। अप्रैल या मई माह में परवल में फल आने लगते हैं तथा अक्टूबर तक मिलते हैं। फल लगने के 15-20 दिन बाद परिपक्व हरे फलों की तुड़ाई मुलायम अवस्था में ही कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर परवल की खेती करनी चाहिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था परवल की खेती। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रेम और समर्पण, ये भक्ति मार्ग के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो एक भक्त की भक्ति को पूर्ण करते हैं। यही भाव है जो मनुष्य प्राप्त कर आगे बढ़ता है और अपने ज्ञान पटल को समृद्ध कर भक्ति के सही अर्थ को स्थापित करता है और भक्त अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त करता है।

प्रेम और समर्पण से उत्पन्न भक्ति से जब भक्त अपने आराध्य को प्राप्त करता है तो वो सही मायनों में अपनी भक्ति को पूर्ण कर पाता है। और आराध्य को प्राप्त करने के बाद ज्ञान और वैराग्य का प्रकाश उस भक्त के चारों ओर की प्रकृति को सौहार्दपूर्ण बनाता है।

भक्ति जब पूर्ण होती है तो वो इतनी समृद्ध होती है कि वो अपने आसपास के समस्त वातावरण को भी समृद्ध कर देती है। और भक्त के संपर्क में आने वाला प्रत्येक जीव जो इस प्रकृति में विद्यमान है, वो भक्त के भक्ति से उत्पन्न अनुराग और भाव से समृद्ध होकर अपने प्रभु के प्रति अपने प्रेम को सफल करने में लग जाता है। असल मायने में भक्ति की सफलता इसी को माना गया है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे जगजीत सिंह, सुरेश वाडेकर और संजय तलवार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज के कार्यक्रम का विषय है मन के जीते जीत।
1: एक राजा ने सुंदर महल बनवाया और मुख्य द्वार पर गणित का एक सूत्र लिखवाया। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि इस सूत्र के हल होते ही ये द्वार खुल जाएगा और जो व्यक्ति ये सूत्र हल करके द्वार खोलेगा, मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। ये घोषणा जैसे ही लोगों को मालूम हुई तो सभी राजमहल के मुख्य द्वार तक पहुंच गए और गणित का सूत्र हल करने की कोशिश करने लगे। किसी को भी वो सूत्र समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे ये बात अन्य राज्यों तक पहुंची तो वहां से भी बड़े बड़े गणितज्ञ ये सूत्र हल करने के लिए वहां पहुंच गए। कुछ गणितज्ञ तो अपने साथ गणित की कई किताबें भी लेकर पहुंचे। बहुत कोशिशें की लेकिन वे भी ये सूत्र हल नहीं कर सके। वहीं एक साधारण सा गरीब लड़का भी ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि वो भी इस सूत्र को हल करने की कोशिश करेगा। सैनिकों को उसने अपनी इच्छा बताई। सभी ने सोचा कि यहां बड़े बड़े गणितज्ञ असफल हो गए हैं। खैर, उन्होंने कहा कि तुम भी कोशिश कर लो। वो लड़का कुछ देर ध्यान में बैठा और आंखें खोलकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा तुरंत ही खुल गया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिया? लड़के ने बताया, जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरे अंतर मन से आवाज आई कि पहले ये जांच कर लेनी चाहिए कि यह सूत्र सही भी है या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना चाहिए। मैंने मन की बात मानी। सूत्र के साथ दरवाजे का संबंध जानने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास किया और ये दरवाजा खुल गया। इससे ये साबित हो गया कि सूत्र और दरवाजे में कोई संबंध था ही नहीं। वो कोई सूत्र ही नहीं था, उसे हल करने की जरूरत भी नहीं थी। ये तो छोटी सी समस्या थी। सभी ने अपने विचारों से इसे बहुत बड़ा और कठिन बना लिया था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो गया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि हमारे जीवन में कई बार कोई समस्या छोटी सी होती है और हम विचारों से उसे बड़ा बना लेते हैं। राजा ने मुख्य द्वार पर गलत सूत्र लिखा। सभी ने उसे बड़ी परेशानी मान लिया और उसे हल करने की कोशिश करने लगे। किसी ने सूत्र की सत्यता जानने की कोशिश ही नहीं की। अपने भावी उत्तराधिकारी की तार्किक बुद्धि परखने के लिए राजा ने ऐसी शर्त रखी थी।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था मन के जीते जीत। आलेख और वाचन अरुण पांडे का।
2: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है PCOS की समस्या और इसका समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर

0: पाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 3 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो हमें फोन करना ना भूले। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम, आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज के कार्यक्रम में विषय है नेत्रदान महादान। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आर पी मौर्य।
2: श्रोताओं नमस्कार। आज आप जैसा कि जानते हैं हमारे देश में दृष्टिहीनता बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिहीनता का कारण है कार्नियल ब्लाइंडनेस, यानी कि स्वच्छ पटल अंधता। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके कारण क्या हैं, कितने लोग उससे प्रभावित हैं और क्या उसके बचाव हैं। तो सबसे पहले कार्नियल ब्लाइंडनेस समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कार्निया क्या है, यानी आंखों का स्वच्छ पटल क्या है। कार्निया आंख के अग्रभाग में आगे के हिस्से में काली पुतली के ठीक ऊपर एक डोम के आकार का कांच की तरह पारदर्शी मोटी झिल्ली है। स्वच्छ पटल पारदर्शी बना रहे ये हमारे सामान्य दृष्टि यानी देखने की बुनियादी जरूरत है। यदि किसी कारण से कार्निया पारदर्शी से अपारदर्शी हो जाए, यानी जो स्वच्छ पटल चमकता कांच की तरह है, अगर उसमें कोई सफेदी हो, फूली पड़ जाए, खरोच लग जाए, तो आंख का जो देखते हैं वो प्रकाश हमारे रेटिना तक, दृष्टि पटल तक नहीं पहुंचेगा और व्यक्ति जो है कार्नियल दृष्टिहीनता से प्रभावित होगा और अंधेपन को महसूस करेगा, उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देखा जाए तो विश्व के कुल दृष्टिहीनों में से 2/3 केवल भारतवर्ष में है और इस समय लगभग 70 लाख से अधिक कार्नियल ब्लाइंड हैं, जिनकी कम से कम एक आंख की दृष्टि तीक्ष्णता यानी विजुअल एक्विटी 6/60 से कम है तथा 10 लाख से अधिक लोग दोनों आंखों से कार्नियल ब्लाइंड हैं। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 50,000 नए कार्नियल ब्लाइंड जुड़ जा रहे हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले समय में कार्नियल ब्लाइंडनेस 1 करोड़ से अधिक होंगे, जिसमें कि करीब 46% कार्नियल ब्लाइंड बच्चे हैं, यानी 16 साल से कम उम्र के पीडियाट्रिक एज ग्रुप के हैं। केवल 50% कार्नियल ब्लाइंडनेस इलाज के योग्य होता है और मैं यहां बताना चाहूंगा कि कार्नियल ब्लाइंडनेस का एकमात्र इलाज है नेत्रदान, नेत्र प्रत्यारोपण। आइए अब हम जानते हैं कि कार्नियल ब्लाइंडनेस होता क्यों है, यानी कि हमारे आंखों की जो स्वच्छ पटल है वो अपारदर्शी क्यों हो जाती है, आंखों में मतलब फूली क्यों पड़ जाती है, सफेदी क्यों हो जाती है। इसके बहुत से कारण हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग कारण हैं। जैसे विकासशील देश में और अल्प विकसित देश भारत है, श्रीलंका है, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ पे दृष्टिहीन कार्नियल ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण है आंखों में संक्रमण, चोट, कुपोषणता। और जबकि विकसित देशों में दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, ऑपरेशन के बाद बुल्लस किरेटोपैथी या बहुत सारी जनजात विकृतियां होती हैं, उसमें भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब हम एक एक कारण के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कैसे करते हैं। तो कॉर्नियल दृष्टिहीनता का पहला जो प्रमुख कारण है आंखों का संक्रमण, आज हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑकुलर इन्फेक्शन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रोहे यानी ट्रकोमा। यह एक अत्यधिक छुतहा कंटीजियस नेत्र रोग है जो क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस नामक सूक्ष्म विषाणु के संक्रमण से होता है। यह दुनिया का सबसे पुरानी आंखों की बीमारी है। वैसे तो यह मिस्र देश में ईसा पूर्व से आया था और नेपोलियन के द्वारा ढेर सारे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों में पहुंच गया, इसीलिए इसको मिलिट्री ऑप्थैल्मिया भी कहते हैं। ट्रैकोमा यूं तो पूरी दुनिया में देखा गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट और घनी आबादी वाली जगह पे जहां साफ सफाई की कमी है, ज्यादातर लोग कंजस्टेड रहते हैं, वहां पे जीवाणुओं का संक्रमण बढ़ जाता है।

0: करता है और ये बच्चों में ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है आंखों में चोट लगने का। आंख की कार्निया में अगर चोट लग जाए तो उससे भी दृष्टिहीनता होता है, यानी कार्नियल ब्लाइंडनेस होता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय था नेत्रदान महादान। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आरपी मौर्य। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाईं ओर से चीख सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

0: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है PCOS की समस्या और इसका समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 3 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूले। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का STD कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज दिनांक 3 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 7:30 बजे से सुनिए महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भारत बनाम हांगकांग क्रिकेट मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स का प्रसारण होगा शाम 4 बजे। ये दोनों कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। उर्दू कार्यक्रम का समय होगा 9:30 पर। यह कार्यक्रम रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:31 पर सुनिए विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन और दिन में 12:45 पर डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर सुनिए डॉक्टर शुचि उपाध्याय के भजन। कार्यक्रम किसान वाणी में अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ सुनिए अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गाया किसानी गीत। इन्हीं के गाए गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत में दिन में 1:45 और 9:50 पर।

0: शाम 5:15 पर कार्यक्रम युवाणी में सुनेंगे आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। कार्यक्रम धरती के गीत का प्रसारण होगा शाम 5:00। कार्यक्रम कहकशां का समय होगा दोपहर 2:30 पर। ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम अंगनैया में सुनिए ग्रामीण परिवेश में रोजगार के अवसर विषय पर डॉक्टर पीवी राजीव से शबनम परवीन की बातचीत और साथ ही सुनिए गीत संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12:00 से। ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का समय होगा दिन में 11:00 से। फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार का प्रसारण होगा सुबह 10:00। सदाबहार फिल्मी गानों के कार्यक्रम मधुरिमा का प्रसारण सुबह 8:45 पर किया जाएगा। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस का समय होगा सुबह 7:00 से। ये कार्यक्रम आप अब से थोड़ी देर में हमारे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन पाएंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज दिनांक 3 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है पीसीओएस की समस्या और इसका समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 3 सितंबर 2026 को प्रातः 10:00 से 11:00 के बीच। तो हमें फोन करना

0: भारतीय दलं हांगकांग दलं सम्मुखी करिष्यति। स्पर्धेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने प्रारप्स्यते इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। कहते हैं

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: कहते हैं जब संगीत दिल तक पहुंचता है तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती, और जब तबले की थाप में बनारस की मिट्टी की खुशबू घुल जाए तो संगीत की पहचान और भी खास हो जाती है। नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं स्तुति स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस में। तो बनारस, आज हम याद कर रहे हैं अपने बनारस घराने के ऐसे महान कलाकार को जिनकी उंगलियों की थाप ने तबले को सिर्फ एक वाद्य नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भाव, संवाद और अभिव्यक्ति का माध्यम बना दिया। जी हाँ, बनारस आज है महान तबला वादक पंडित किशन महाराज की जन्म जयंती। 3 सितंबर सन 1923 को बनारस में जन्मे पंडित किशन महाराज भारत के शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध तबला वादक और बनारस घराने के प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक थे। आपको बता दें कि उनका संगीत संस्कार बचपन से ही हुआ। उनके पिता हरि महाराज स्वयं संगीत से जुड़े थे। पिता के निधन के बाद उनके चाचा और गुरु पंडित कंठे महाराज ने उन्हें तबले की शिक्षा दी। यही कठिन साधना आगे चलकर उन्हें भारतीय तबला वादन के सबसे प्रतिष्ठित नामों में लेकर गई। पंडित किशन महाराज की खासियत सिर्फ उनकी तकनीक नहीं थी, वो तबले के माध्यम से संगीत के दूसरे कलाकारों के साथ ऐसा संवाद स्थापित करते थे कि तबला संगत का हिस्सा होते हुए भी अपनी अलग पहचान बनाए रखता था। जी हाँ बनारस, उन्होंने अपने लंबे संगीत जीवन में भारत शास्त्रीय संगीत के अनेक बड़े कलाकारों के साथ संगत की और एकल तबला वादन में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। यही नहीं, आपको बता दें बनारस की उनकी कला को देश ने भी सम्मान दिया। उन्हें 1973 में पद्मश्री, 1984 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार और सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बाद में सन 2006 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी फेलो चुना गया। यानी बनारस की उस समृद्ध संगीत परंपरा में जिसकी पहचान पंडित किशन महाराज ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई, उनकी थाप आज भी संगीत प्रेमियों के लिए एक विरासत है। तो चलिए आज के इस दिन उनको याद कर उनको और उनकी अद्भुत कला को दिल से नमन करते हैं। जी और अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो भाई हमारे संगीत की तरह ही हमारी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। आपको बता दें बनारस की सितंबर का पहला सप्ताह भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है। ये हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, हम जो खाते हैं उसकी गुणवत्ता, विविधता और हमारे शरीर की जरूरत के अनुसार उसका संतुलन, ये सभी हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, भारत सरकार के पोषण कार्यक्रमों में भी पोषण, अनेमिया की रोकथाम, बच्चों की वृद्धि की निगरानी, स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ और स्वच्छता जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया जाता है। इसलिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक हमें एक बहुत सरल लेकिन जरूरी बात याद दिलाता है कि स्वस्थ शरीर की शुरुआत हमारी थाली से ही होती है, और पोषण केवल खाना खाने तक सीमित नहीं, स्वच्छता, सुरक्षित भोजन, पर्याप्त देखभाल और सही जानकारी, ये सब बेहतर स्वास्थ्य का एक हिस्सा हैं। तो इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक पर एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें, अपनी थाली को थोड़ा और संतुलित बनाएं, बच्चों

के भोजन पर थोड़ा और ध्यान दें, स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को महत्व दें और सबसे जरूरी पोषण से जुड़ी सही जानकारी अपने परिवार और आसपास के लोगों तक भी पहुंचाएं। तो बनारस आज हमने एक तरफ जहां बनारस की उस महान संगीत परंपरा को याद किया जिसे पंडित किशन महाराज ने अपनी तबले की थाप से समृद्ध किया, और दूसरी तरफ बात की उस चीज की जो हर इंसान की जिंदगी की बुनियाद है, स्वस्थ और संतुलित पोषण। संगीत हमें भीतर से समृद्ध करता है और अच्छा पोषण हमें स्वस्थ जीवन जीने की ताकत देता है। तो इसी तरह करेंगे आगे भी बहुत सारी बातें, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ और सुनिए आज के कार्यक्रम का ये पहला ट्रैक।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं अपने शहर बनारस का हाल समाचार। बनारस और पूर्वांचल के वस्त्र उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ने और निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को वाराणसी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वस्त्र समिति द्वारा संचालित टेक्सटाइल एक्सपोर्ट

फैसिलिटेशन सेंटर वाराणसी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भारत यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम का विषय बिल्डिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया ईयू के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन फॉर टेक्सटाइल सेक्टर रखा गया। इसका उद्देश्य वाराणसी और पूर्वांचल के वस्त्र निर्माताओं, निर्यातकों और एमएसएमई इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विशेषकर यूरोपीय संघ में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देना है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वस्त्र मंत्रालय की टेक्सटाइल कमिश्नर वृंदा मनोहर देसाई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए स्थानीय वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और बदलती बाजार जरूरतों के अनुरूप तैयार करना होगा। उन्होंने वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। वस्त्र समिति के सचिव कार्तिकेय डांडा ने TEFC की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे सुविधा केंद्र निर्यातकों को विभिन्न स्तरों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। इससे क्षेत्र की उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने और निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। वस्त्र समिति के सहायक निदेशक अम्बरीश सिंह ने भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते से स्थानीय वस्त्र उद्योग को मिलने वाले संभावित अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने टैरिफ रियायतों, रूल्स ऑफ ओरिजिन और निर्यात के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। वहीं आपको बता दें कि जिले में लगातार हो रही अत्यधिक बारिश और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए 3 सितंबर यानी आज कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी संबंधित विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले के परिषदीय राजकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त ICSE, CBSE और अन्य बोर्ड से संबंधित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में 3 सितंबर यानी आज अवकाश रहेगा। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आगे आपको बताएं कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए योगी सरकार ने तकनीक को राहत और बचाव की रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। काशी में तैयार किए गए 3D अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन तकनीक की मदद से बाढ़ के संभावित प्रभाव का पहले ही आकलन किया जा रहा है। जलस्तर बढ़ने की स्थिति में कौन कौन से इलाके प्रभावित हो सकते हैं, किन स्थानों पर पानी भरने की आशंका है और कितने घर इसकी चपेट में आ सकते हैं, इसकी जानकारी तकनीक के माध्यम से पहले ही प्राप्त की जा रही है। इसी आधार पर प्रशासन समय रहते राहत और बचाव की रणनीति तैयार कर रहा है। अपर जिलाधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने बताया कि 3D डिजिटल ट्विन और GIS तकनीक से संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पूर्व आकलन कर प्रशासन पहले से ही रणनीति तैयार कर रहा है। इसी तकनीक से प्राप्त जानकारी के आधार पर राहत बचाव कार्यों की योजना और संसाधनों की तैनाती को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी के अनुसार काशी के लगभग 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की 3D मैपिंग की गई है। इसमें 100 से अधिक थीमेटिक लेयर शामिल हैं। लाइट डिटेक्शन एंड एजिंग तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए इस डिजिटल मॉडल से क्षेत्र की विस्तृत और वास्तविक समय के अनुरूप जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। बाढ़ के दौरान पानी में डूबने वाले क्षेत्र स्थानों और प्रभावित होने वाले घरों की संख्या का भी पूर्व आकलन किया जा सकता है। इससे प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों के लिए पहले से तैयारी करने और जरूरत के अनुसार संसाधनों की तैनाती करने में मदद मिलती है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस डिजिटल मॉडल को तैयार करने के लिए लाइट एयरक्राफ्ट के साथ बैकपैक और वाहनों के माध्यम से भी 3D GIS मैपिंग की गई है। काशी की गलियों से लेकर प्रमुख सड़कों और अन्य क्षेत्रों तक का डेटा एकत्र कर डिजिटल स्वरूप में तैयार किया गया है। इसके आधार पर विकसित कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का उपयोग विकास कार्यों की योजना बनाने वाले विभागों और एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। यही नहीं, तकनीक आधारित ये पहल न केवल आपदा प्रबंधन को मजबूत कर रही है बल्कि काशी के भविष्य के शहरी विकास के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है।
साथ ही आपको बता दे, बनारस की बारिश और बाढ़ के दौरान वरुणा नदी के तटवर्ती

तटीय इलाकों में सीवर का पानी वापस आने की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम अब फ्लड पिलर बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसके जरिए बाढ़ के दौरान सीवर के बैक फ्लो को रोकने का प्रयास किया जाएगा। वहीं शहर में जल जमाव की समस्या को लेकर महापौर अशोक कुमार तिवारी ने सख्त रुख अपनाते हुए गली पिटों की सफाई में लापरवाही पर संबंधित सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। बुधवार को सिगरा स्थित स्मार्ट सिटी सभागार में महापौर ने शहर में जल जमाव और जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की। लगातार बारिश के कारण तैरता कचरा यानी फ्लोटिंग मटेरियल गली पिटों में फंसने की समस्या सामने आई है, जिससे कई स्थानों पर पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। महापौर ने स्वास्थ्य समस्या और जलकल विभाग को आपसी समन्वय के साथ गली पिटों की समस्या दूर करने को कहा। महापौर ने आगे नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को बाढ़ और बारिश से जुड़ी जल जमाव की शिकायतों के लिए अलग कंट्रोल रूम। काशी में भक्ति और उल्लास का माहौल बनने लगा है। दुर्गा कुंड स्थित इस्कॉन वाराणसी में बुधवार से 4 दिवसीय भव्य जन्माष्टमी उत्सव की शुरुआत हो रही है। 2 से 5 सितंबर तक चलने वाले इस उत्सव में मंदिर परिसर में 24 घंटे निरंतर हरिनाम संकीर्तन होगा और हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि गूंजती रहेगी। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का 51 प्रकार की वस्तुओं से महाअभिषेक किया जाएगा, जबकि श्रद्धालुओं के बीच शुद्ध देसी घी से तैयार 2 क्विंटल से अधिक हलवे का प्रसाद वितरित होगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में श्रीमद् भगवत कथा, हरिनाम संकीर्तन, भक्ति संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, महाअभिषेक, विशेष श्रृंगार और महाआरती समेत कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। नंदोत्सव के साथ उत्सव का समापन होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को 108 प्रकार के व्यंजनों का महाभोग अर्पित किया जाएगा। जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन इस्कॉन वाराणसी के अध्यक्ष श्रीमान अच्युत मोहन दास के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार जन्माष्टमी उत्सव को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में भव्य बनाने की तैयारी की गई है। 4 दिनों के दौरान मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं से परिचित कराने के लिए उन्हें भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागी होने का अवसर मिलेगा। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार। इसी के साथ अब वक्त हो गया है आज के कार्यक्रम पर विराम लगाने का। मुझे यानी स्तुति को दीजिए अब अनुमति। मिलूंगी आप सभी से फिर एक बार, फिर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए। टाटा बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।
2: तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
3: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
3: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
3: खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।

0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ, कहा नई व्यवस्था से आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा उनका अधिकार। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर H1N1 और सीजनल इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा की, प्रभावित जिलों में निगरानी बढ़ाने और आवश्यक इंतजाम के दिए निर्देश। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक के लिए दी भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आउटसोर्स कर्मियों को उनका अधिकार मिलेगा।
3: अब इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हम इस बात को मानते हैं कि अधिकार अब किसी व्यक्ति की कृपा पर नहीं मिलेंगे बल्कि आपकी मेहनत पे प्राप्त। व्यवस्था अब बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेगी और जानकारी अस्पष्ट नहीं होगी, यानी पूरी जानकारी का एक पोर्टल उपलब्ध होगा, कोई भी कर्मचारी जानना चाहेगा उस पर उपलब्ध होगा। और मैं मानता हूं इसमें हमारा कर्मचारी अब अकेला नहीं होगा, आपके पास आउटसोर्स सेवा निगम आपके साथ होगा।
2: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मी हैं। इस नई व्यवस्था में उन्हें 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, साथ ही आकस्मिक इलाज के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ दिया है।
3: डबल इंजन की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लागू, उसे तकनीक दिया, उसे बाजार दिया और उसे मार्केट के साथ जोड़ने का काम आज परिणाम हमारे सामने है। कारीगर के हाथ में जो कला थी, जब उसे बाजार दिया गया, बाजार मिला तो उसका हुनर प्रदेश में रोजगार बना, रोजगार बढ़ा तो वही कारीगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बने।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में H1N1 और सीजनल इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इन्फ्लुएंजा ए की जांच सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला अस्पतालों CSC PSC और मेडिकल कॉलेजों में जांच, दवा और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने अधिक मामले वाले जिलों में निगरानी बढ़ाने और गंभीर मरीजों के लिए अलग ICU वार्ड तैयार रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 2 सितंबर तक प्रदेश में H1N1 के 685 प्रयोगशाला पुष्ट मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य लक्षण वाले मरीज चिकित्सकीय सलाह के अनुसार घर पर आराम और सेल्फ आइसोलेशन करें, जबकि गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संक्रमण से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने पर भी जोर दिया ताकि अनावश्यक घबराहट न फैले। समाचार कक्ष से अरुण।
2: सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए प्रदेश भर में आज से विशेष HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। यह 17 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान 14 से 15 वर्ष तक की आयु वर्ग की लगभग 10 लाख पात्र बच्चियों को HPV से बचाव का टीका लगाने का लक्ष्य है। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह ने पात्र बच्चियों के टीकाकरण की अपील की।
5: 14 से 15 साल के बीच की बच्चियों को HPV वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। ये जो टीका है उनके CA सर्विक्स या बच्चेदानी के कैंसर का बचाव का एकमात्र तरीका है। HPV वैक्सीन का टीका लगवा के अपनी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रखें।

0: उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्र केंद्र के तौर पर विकसित करने के उद्देश्य से आगामी 8 और 9 सितंबर को लखनऊ में यूपी टैक्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज नोएडा में यूपी टैक्स 2026 का कट एंड रेजर एवं रोड शो आयोजित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए CEO एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद CEO के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। CEO के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी पर्व को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वहां जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा। पर्व को देखते हुए कल वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर से श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा के लिए उपहार सामग्री और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से वहां मंगल सामग्री भेजी गई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा जिले के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री वहां लगभग 1,051 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा तथा तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार की तरफ से बाढ़ राहत को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
2: जहाँ जहाँ बाढ़ का प्रकोप है उसे निपटने के लिए हमारी सरकार ने SDRF, NDRF और जिला प्रशासन को सक्रिय कर रखा है। चित्रकूट मंडल में लगातार मंदाकिनी नदी का प्रवाह बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, वहाँ सतर्क रहने कहा गया है और सभी जो भी जहाँ बाढ़ आई थी सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और बाढ़ राहत कार्यक्रम लगातार चल रहा है।
0: प्रदेश में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए चित्रकूट और चंदौली जिले में कक्षा 12वीं तक, जबकि पीलीभीत और वाराणसी जिले में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। चित्रकूट जिले में भारत कौशल प्रतियोगिता 2026-27 के लिए युवाओं का पंजीकरण शुरू हो गया है। हमारे चित्रकूट प्रतिनिधि ने बताया कि प्रतियोगिता में 63 विभिन्न कौशलों में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण केंद्रों और संस्थानों में पंजीकृत अथवा पास आउट 16 से 23 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी स्किल इंडिया डिजिटल हब पर 15 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से संपर्क किया जा सकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ। कहा, नई व्यवस्था से आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा उनका अधिकार। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर H1N1 और सीजनल इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा की। प्रभावित जिलों में निगरानी बढ़ाने और आवश्यक इंतजाम के दिए निर्देश। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का

0: सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक के लिए दी भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी को। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन, राग है रामकली।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना विदुषी वसुंधरा कोमकली का गायन, राग था रामकली। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है PCOS की समस्या और इसका समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात सुबह 8 बजे, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा प्रसारित होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेबर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. Update.

0: आगे रहें। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
3: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
4: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का यह टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को

0: फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बालियापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिरैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6ठी और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकाकार से सीखने पर जोर दिया। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हम मनसब बार्ट दे वेवर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आबादी में इजाफे और मुस्तकबिल में पानी की जरूरियात समेत शहरकारी से पैदा होने वाले चैलेंजेस के बारे में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों को हसास और बाखबर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर मुनक्किद करने की तजवीज दी। जनाब मोदी ने कल जल शक्ति की वजारत के जेर एहतमाम पानी के मौजू पर मुनक्किदा दो रोजा कौमी महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन की सदारत की। उन्होंने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तौर तरीकों से आगाही फराहम करने के लिए खसूसी नुमाइशों और वर्कशॉप्स के इनेकाद की भी तजवीज पेश की ताकि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और शराकतदार पानी के मुअसर इस्तेमाल के लिए बेहतर हल तैयार करके उन्हें बड़े पैमाने पर नाफिज कर सकें। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि इजलास से सामने आने वाले काबिल अमल और मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाने वाले निकात पर मुसलसल जायजे और सीखने के अमल के जरिए अमल दरामद किया जाना चाहिए। दो रोजा तफसीली बातचीत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास सिर्फ एक मरतबा की सरगर्मी बनकर ना रह जाए बल्कि इसके फैसलों और इकदामात का मुसलसल जायजा लिया जाना चाहिए और इन पर बाकायदगी से अमल दरामद की पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाना चाहिए। जन भागीदारी की अहमियत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने लोगों में पानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने के लिए जल उत्सव को फरोग देने की तजवीज दी। डैमों की हिफाजत के बारे में जनाब मोदी ने हर मानसून से पहले सख्त तैयारी, मुकर्रर एहतियाती तदाबीर पर अमल और स्कूल के तलबा में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस मकसद को मुनासिब तौर पर तालीमी निजाम में भी शामिल किया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने मजबूत आबी डेटा गवर्नेंस पर भी जोर दिया जिसके तहत आबी शोबे से मुतालिक तमाम आदादोशुमार को एक जगह जमा किया जाए, मुनज्जम तरीके से महफूज किया जाए, उनका तजिया किया जाए और मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने यकसां फॉर्मेट के जरिए डेटा जमा करने और इसके तजिये के लिए AI के इस्तेमाल की सिफारिश की। उन्होंने पानी की किल्लत से निपटने के लिए पेशगी और मरबूत मनसूबाबंदी पर भी जोर दिया जिसके तहत साफ किए गए पानी को ज़राअत और सनअती मकासद की खातिर मुनासिब तौर पर इस्तेमाल किया जाए। नई दिल्ली से विष्णु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट दे वेवर आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। बेल्जियम के वजीर आजम कल रात भारत के तीन रोजा दौरे पर राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। वजीर आजम दे वेवर के हमरा बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रेंकिन भी हैं। पिछले साल फरवरी में वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है। मुअज्जज मेहमान कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के एक कारोबारी प्रोग्राम से भी कलीती खिताब करेंगे। ये प्रोग्राम भारत यूरोप यूनियन आजाद तजारती मुआहिदे के तनाजुर में मुनक्किद किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि उनका ये दौरा भारत और बेल्जियम की शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने और तजारत व सरमायाकारी दिफा व सलामती और काबिल तशदीद तवानाई समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तावुन को वसत देने का मौका फराहम करेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत और बेल्जियम के दरमियान तीन सदियों पर मुहित तारीखी ताल्लुकात हैं। बेल्जियम उन अव्वलीन यूरोपीय मुल्कों में शामिल है जिसने सितंबर 1947 में आजाद भारत

0: 17 तारीख तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक खसूसी HPV टीकाकारी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। ये मुहिम रियासत के तमाम 75 अजला में मुनाकिद की जाएगी। 14 साल की उम्र के ग्रुप में शामिल तकरीबन 10 लाख अहल नौ उम्र लड़कियों को इस मुहिम के तहत HPV वैक्सीन लगाने का निशाना रखा गया है। लखनऊ के आला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर NB सिंह ने अहल लड़कियों और उनके वालिदैन से अपील की है कि वो आगे आएं और मुहिम के दौरान वैक्सीन लगवाएं। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक अहम हिफाजती इकदाम है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1250 हो गई है। इमदादी कारकुन बारिश और मलबे का मुकाबला करते हुए उन अफराद को तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में ख्याल है कि वो भोटेकोशी दरिया के रास्ते में मौजूद सुरंगों और नेपाल में जेर जमीन बिजली घरों में फंसे हुए हैं। वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा कि आलमी बिरादरी के सामने इस कुदरती आफत के आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक को भरपूर अंदाज में उठाया जाना चाहिए। इस दौरान पिछले हफ्ते आने वाले सैलाब के बाद लापता मकामी अफराद के अहल खाना ने अलामती तौर पर उनकी आखिरी रसूम अदा की। लापता अफराद में 583 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों जिनमें नेपाल की फौज भी शामिल है की मुश्तरका फोर्सेज ने अब तक हेलीकॉप्टरों और जमीनी रास्तों के जरिए 11,993 अफराद को बचाया है। तलाश और बचाव कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 21,314 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब चीन की जानिब नेपाल की सरहद के करीब तिब्बत के गिरोंग काउंटी में आने वाले सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है जबकि 541 अफराद अब भी लापता हैं। शिमाली ओडिशा में सैलाब का नया खतरा पैदा हो गया है क्योंकि बालासोर जिले में सुबर्ण रेखा नदी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। राजघाट के मकाम पर दरिया का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। झारखंड में वाके गलुडीह बैराज से पानी छोड़े जाने के बायस नदी के निचले हिस्से में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया है। महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। बाज अजला में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। आज मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। जबलपुर रीवा शहडोल और सागर में बारिश हो सकती है। भोपाल ग्वालियर चंबल और नर्मदापुरम डिवीजन के बाज इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। इसके अलावा मंडला में मुसलसल बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। ख्वातीन के क्रिकेट में आज UAE में दुबई बैनुल अक्वामी स्टेडियम में 2020 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप ए के दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगी। मजकूरा मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इतवार के रोज खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड के खिलाफ 94 रन की बड़ी जीत से अपनी मुहिम का आगाज किया था। अगर भारतीय टीम हांगकांग के खिलाफ आज मैच में जीत हासिल करती है तो वो 8 टीमों पर मुश्तमिल मौजूदा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सेशल्स के पार्लियामानी वफद के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बातचीत को नुमाया किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स के ताल्लुकात सिफारतकारी की रवायती सरहदों से बालातर हैं और दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी रिश्ते हैं। इसी अखबार की एक और अहम खबर है, इको टूरिज्म के मौके पर मुनक्किदा इफ्तिताही वर्कशॉप से खिताब करते हुए मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि शेरों के तहफ्फुज को मुकामी बिरादरियों के रोजगार और पायदार समाजी इक्तसादी तरक्की से जोड़ा जाना चाहिए। ब्रिक्स इजलास के हवाले से रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, ब्रिक्स इजलास की तैयारियां तेज, दिल्ली में कारों के काफिले की रिहर्सल, ये इजलास भारत मंडपम में 11 से 13 सितम्बर को होगा।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीक़ाकार से सीखने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हममनसब बार्ट दे वेवर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की सादिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा इस संदेश के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो

सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658
4: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मधुरिमा में। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत फिल्म 72 आवर्स से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मोहित चौहान और प्रियंका नेगी ने। संगीत है संजय बोस का और गीत के बोल हैं सुजाता देवरारी के। फिल्म है 72 आवर्स।

आप सुन रहे थे 72 आवर्स का ये गाना। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमावस से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है जुबीन नौटियाल और पलक मुच्छल ने। संगीत है संजीव दर्शन का और गीत के बोल हैं संदीप नाथ के। फिल्म है अमावस।

आपने सुना फिल्म अमावस से ये गाना। आइए अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काशी से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है सोनू निगम और पलक मुच्छल ने। संगीत है अंकित तिवारी का, गीत के बोल हैं अभेंद्र कुमार के।

काशी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आपके पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म तारीफें से। ये गाना जिसे आवाज दी है अंकित तिवारी ने, गीत के बोल और संगीत हैं संजीव चतुर्वेदी के। फिल्म है तारीफें।

फिल्म तारीफ़ें से अंकित तिवारी की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा। आइए फिल्म अंतिम से जुबिन नौटियाल की आवाज़ है, संगीत है रवि बसरूर का और गीत के बोल हैं शबीर अहमद के।

फिल्म अंतिम का ये गाना आप सुन रहे थे, जुबिन नौटियाल की ये आवाज़ थी। आज के कार्यक्रम में ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अर्जुन पटियाला फिल्म से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है सचेत टंडन ने, संगीत है सचिन जिग्गर का और गीत के बोल हैं प्रिया सरैया के। फिल्म है अर्जुन पटियाला।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं. प्रस्तुत है जिले की हलचल कार्यक्रम. यह कार्यक्रम रिले होगा हमारे लखनऊ केंद्र से.
2: प्रस्तुत है जिले की हलचल.
3: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल. आज सुनिए गाजीपुर और मेरठ जिलों की हलचल. पहले सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल. आलेख और स्वर है श्री राम राय का.
4: जनपद गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने पिछले दिनों गाजीपुर में निर्माणाधीन सहायक संभागीय परिवहन विभाग RTO भवन एवं महिला शरणालय भवन का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि नवंबर माह तक RTO भवन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा. पिछले दिनों तिरंगा

0: यात्रा के दौरान गाजीपुर जनपद में विशेष उत्साह दिखाई दिया। मेरा युवा भारत एवं राज्य महिला पीजी कॉलेज गाजीपुर के संयुक्त तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में विभिन्न इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 150 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आयाम सह संयोजक अवतेश आराध्य राय ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम हजारों विद्यार्थियों को एक साथ राष्ट्र प्रथम का संदेश दे रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में पिछले दिनों गाजीपुर में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत की उपस्थिति में कृषि विभाग के चयनित 78 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसमें 17 महिला अभ्यर्थी भी शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में इतने अधिक मात्रा में प्राविधिक सहायकों की नियुक्ति के बाद जनपद के किसानों की समस्याओं का निराकरण आसानी से संभव हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार मातृशक्ति के उत्कर्ष के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
1: कृषि विज्ञान में ग्रुप सी के चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिया है और गाजीपुर जनपद में भी 78 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिनको विकास भवन में कृषि विज्ञान के सौजन्य से उन्हें सम्मानित करने का, प्रमाण पत्र वितरित करने का कार्य किया गया।
0: इसी कड़ी में पिछले दिनों लखनऊ में कैबिनेट द्वारा पारित लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में किया गया। जिलाधिकारी गाजीपुर अनुपम शुक्ला ने बताया कि जनपद गाजीपुर में भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से ऊपर की मातृशक्ति को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। माता अहिल्याबाई के नाम पर प्रारंभ इस योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं को जनपद में कहीं भी यात्रा करने में सुगमता होगी। एक ओर इस योजना से जहां उन्हें आर्थिक बचत होगी, वहीं यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक भी है।
2: एक बहुत बड़ी सुविधा सरकार द्वारा दी गई है, उसमें स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा और उसके माध्यम से वो अपना मूवमेंट कर सकती है, क्योंकि महिलाओं को रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन भी खुशी है और जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिली है, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, विभिन्न योजनाएं गवर्नमेंट की आती है उसके माध्यम से अभी हम लोगों ने पंचायत सहायकों की भी नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं।
0: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आगामी 12 सितंबर को गाजीपुर जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा नोडल अधिकारी लोक अदालत शक्ति सिंह ने बताया कि आगामी 12 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सभी समनीय आपराधिक मामले, सिविल एवं पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना तथा बैंकिंग से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। सिंह ने कहा कि बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि एनपीए खाता धारकों को मूलधन में भी न्यूनतम 10% की छूट प्रदान की जाए। उन्होंने जनपद गाजीपुर के निवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निपटारा करें। जनपद गाजीपुर में बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा द्वारा बाढ़ प्रभावित विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जमानिया क्षेत्र के पक्का बलुआ घाट का निरीक्षण करने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री एवं बाढ़ से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बाढ़ चौकियां बना ली गई हैं एवं कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित किसानों का तत्काल सर्वे कर मुआवजा के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गाजीपुर के मिशन फ्यूचर के तहत परिवहन विभाग द्वारा निरंतर सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों 12 स्कूली वाहनों को सीज किया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी धनवीर यादव ने बताया कि जनपद गाजीपुर के अभियान के तहत अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की जांच की जा रही है और पिछले दिनों 12 स्कूली वाहन सीज कर दिए गए हैं तथा 40 वाहनों का चालान किया गया है एवं 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालकों को किसी भी स्थिति में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। वाराणसी परिक्षेत्र के DIG वैभव कृष्ण ने पिछले दिनों एक नेक पहल की। जनपद गाजीपुर के एडिशनल SP तथा यातायात भवन कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने एक मजदूर के हाथों कराकर एक मिसाल पेश की। वैभव कृष्ण ने कहा कि आगामी जनता आम जनता के कल्याण के लिए बनाए जा रहे इस कार्यालय का उद्घाटन एवं शिलान्यास आम नागरिक द्वारा किया जाना एक अच्छा संदेश देता है।
3: गाजीपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
4: मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मेरा युवा भारत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़

0: ना उनकी आकांक्षाओं को साझा करना और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के निर्माण के लिए उनके विचारों का योगदान प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों को प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम 2036 ओलंपिक की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस आज से ही खिलाड़ी तैयार करने पर है जो 2036 से अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाइड करेंगे और खेलेंगे।
1: मेरा नाम साक्षी जौहरी है, मैं एक इंटरनेशनल वुशु प्लेयर हूँ, रानी लक्ष्मीबाई अवार्डी हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो खिलाड़ियों को इतना सम्मान दिया जा रहा है उसके लिए हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। प्रधानमंत्री जी हमारे एक मित्र की तरह हमें मेडल आने पे बधाई देते हैं, हमसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, हमसे खेलों के बारे में और रुचि दिखाते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 5 से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया गया है। इसमें बच्चे की किस खेल में रुचि है ये देखने के साथ ही यह भी जानना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है, उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। मेरठ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस लाइन में स्थापित कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर होगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा स्क्रीनिंग सेंटर है जहां कई तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने बताया कि इस सेंटर को सिर्फ पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी प्राथमिक स्वास्थ्य और कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। यह अलग अलग तरह के कैंसर की शुरुआती जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी मरीज के कैंसर के लक्षण या बीमारी की आशंका होती है तो उसे आगे के इलाज की सुविधा जिला अस्पताल और मेरठ मेडिकल कॉलेज में मिलेगी और वहां से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय आयुक्त हथकरघा के अधीन बुनकर सेवा केंद्र द्वारा 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को भव्य आयोजन किया गया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने हथकरघा को भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रतीक बताते हुए बुनकरों से गुणवत्ता, नवाचार और आधुनिक तकनीकों अपनाकर उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने तथा शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में मेरठ की सड़कों पर राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उत्साह और जोश देखने को मिला। हाथों में लहराता तिरंगा, भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी जयघोष से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जागृति विहार स्थित मनसा देवी मंदिर से हुआ। बेगमपुर स्थित भारत माता के चौक पहुंची, जहां राष्ट्रभक्ति के जयघोष के बीच यात्रा का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। हजारों कार्यकर्ताओं का हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल होना राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती का स्वतंत्रता संग्राम से गौरवशाली और ऐतिहासिक संबंध रहा है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल, ये आकाशवाणी का
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और वेब्स ओटीटी पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो चला है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना का। आज के क्रम में पहली सूचना हमें प्राप्त है थाना सिंधोरा कमिश्नरेट वाराणसी से। इस सूचना के अनुसार श्रीमती क्षमता पत्नी मुकेश कुमार निवासी हिरामन

0: थाना सिंधोरा, जिला वाराणसी की हैं, जो दिनांक 9 अगस्त 2026 को हिरामनपुर से लापता हैं। इनकी आयु 32 वर्ष, कद 5 फीट और रंग गोरा बताया गया है। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने क्षेत्रीय थाने या थाना सिंधोरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। थाना राजा तालाब पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार रत्ना यादव पत्नी मंशा यादव निवासी ग्राम लश्करिया थाना राजा तालाब ये दिनांक 4 अगस्त 2022 से अपने घर से लापता हैं। इनकी आयु 24 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। इन्हें आखिरी बार जब देखा गया तो इन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुई थी। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना राजा तालाब पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। इसी क्रम में हमें सूचना प्राप्त हुई है थाना सिंधोरा, जिला वाराणसी से, जो संध्या पुत्री जयराम राजभर निवासी चैनपुरा सिंधोरा जिला वाराणसी की है। आपको बताते चलें कि संध्या दिनांक 15 जून 2026 से लापता हैं। इनकी आयु करीब 30 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल और शरीर दोहरा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना सिंधोरा जिला वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। इसी क्रम में हमें थाना राजा तालाब पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार संध्या यादव पुत्री वीरेंद्र यादव निवासी ग्राम दीपापुर थाना राजा तालाब जिला वाराणसी की है, जो दिनांक 7 अगस्त 2026 ग्राम दीपापुर से लापता हैं। इनकी आयु 20 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने हरे रंग का सूट पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना राजा तालाब पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। इसी क्रम में थाना राजा तालाब जिला वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार उद्देशिता सिंह पुत्री विजय बहादुर सिंह निवासी कृष्णदत्तपुर राजा तालाब की है, जो दिनांक 7 अगस्त 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 21 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने जींस और टी शर्ट पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो आप अपने नज़दीकी थाने या थाना राजा तालाब कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।
1: फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है PCOS की समस्या और इसका समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 3 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम रिले होगा हमारे लखनऊ केंद्र से।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
3: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अदब का वो गहवारा है, जहां पर न जाने कितने अदीबों ने जन्म लिया, न जाने कितने शोरा ने यहां अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ाया है। उन्हीं शोरा में आज हम एक ऐसे शायर का जिक्र करते हैं जिन्हें आज भी दुनिया इरफान लखनवी के नाम से जानती है। आज उन्हीं की खास पेशकश, उन्हीं की गजलें,

0: उन्हीं की नात हम यहाँ पर आप सुनाएंगे। एक शेर उनका है कि वो ख्वाहिशात के लश्कर समेट लेता है, वो ख्वाहिशात के लश्कर समेट लेता है, अजान होते ही बिस्तर समेट लेता है। आइए सुनते हैं उनकी ये खूबसूरत सी एक नात।
1: नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ। एक

में, और यहां से शेर हाजिर करता हूं, अल्फ शहर से अफजल कहता है जिसे कुरान, अल्फ शहर से अफजल, अल्फ शहर

ऐसी शब मदीने में काश मुझको मिल जाए, ऐसी शब मदीने में एक एक पल गुजरे। और ये भी शेर हाजिर है, दिन गुजरते रहते हैं उम्र कट

0: क्या खूबसूरत नात अभी आप सुन रहे थे शायर मोहतरम जनाब इरफान लखनवी, जिनके मुतरन्निम लबो लहजे से न जाने कितने लोग मुस्तफीज होते रहते हैं। सिर्फ नात ही नहीं, आइए उनकी एक गजल भी आपके सामने पेश करते हैं जिससे आप लुत्फ अंदोज हो सकते हैं।
1: आइए सामीन, गजल का मतलब पेश है। दुनिया को हम राह दिखाना भूल गए।

यानी हम खुद अपना रास्ता भूल गए, यानी हम खुद अपना रास्ता भूल गए। और ये मतलब

बस तेरा घर याद है अपना भूल गए, बस तेरा घर याद है अपना भूल गए, बस्ती बस्ती गुलशन गुलशन फिरते हो, बस्ती

गए। और ये भी शेर बतौर खास, तेरे हाथ से बस एक जाम की हसरत में, तेरे हाथ से बस एक जाम

गए। गजल का मतलब हाजिर है। तुम कुछ नहीं हो प्यार की जागीर के बगैर, तुम कुछ नहीं हो प्यार की जागीर।

सारे खतूत आए हैं तहरीर के बगैर, सारे खतूत आए हैं तहरीर के बगैर। उसने लिखा है तेरे बिना यूं है जिंदगी, उस

दुनिया मेरे खुलूस को पहचानती है खूब, दुनिया मेरे खुलूस को पहचान।

जीत लेता हूँ शमशीर के बगैर, मैं जंग जीत लेता हूँ शमशीर के बगैर, मैं जंग जीत लेता हूँ शमशीर के बगैर। महसूस हो रहा है ये तुझसे बिछड़ के आज, महसूस हो रहा है ये तुझसे बिछड़ के आज, महसूस हो रहा है ये तुझसे बिछड़ के आज। जैसे मैं एक चराग हूँ तनवीर के बगैर, जैसे मैं एक चराग हूँ तनवीर के बगैर। कितनी उदास हैं मेरी आँखों की तितलियाँ,

0: इरफान उस गुलाब की तस्वीर के बगैर, इरफान उस गुलाब की तस्वीर के बगैर।
1: सामिन, आप हजरात इरफान लखनवी साहब के खूबसूरत अशार से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कबल इससे कि हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम करें, आइए सुनते हैं एक अहम इत्तला।
2: एक जरूरी सूचना सुनिए। जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा 2026-27 दिनांक 8, 9 और 10 दिसंबर 2026 को संपादित होगी। अर्हता समस्त राजकीय तथा नियमों से स्थानीय निकायों से अधिकारी कर्मचारी। एक, हाई स्कूल स्तर या समकक्ष अथवा उच्च स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के रूप में न लिया गया हो वे ही अभ्यर्थी हाई स्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है। दो, जूनियर हाई स्कूल स्तर या समकक्ष अथवा उच्च स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के रूप में न लिया हो वे ही अभ्यर्थी जूनियर हाई स्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। परीक्षा केंद्र, एक, राजकीय इंटर कॉलेज निषादगंज लखनऊ। दो, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद। तीन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज। चार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सादे आवेदन पत्र एवं नियम आदि उत्तर

प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों के पास प्रेषित किए जा रहे हैं तथा इस कार्यालय की वेबसाइट www.examregularityauthorityup.in, इसे फिर से सुन लीजिए www.examregularityauthorityup.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र जनपद के जिला सूचना अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र उनके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अग्रसारित होकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के

0: xamregulatory.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र जनपद के जिला सूचना अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र उनके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अग्रसारित होकर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्यालय में अनिवार्य रूप से दिनांक 2 नवंबर 2026 तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। हाई स्कूल स्तर के उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्रमशः ₹1400, ₹1000 और ₹800 नगद पुरस्कार तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर के उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को क्रमशः ₹600, ₹400, ₹200 का नगद पुरस्कार तथा साथ में दक्षता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों का यात्रा भत्ता नियमानुसार उनके विभाग कार्यालय से देय होगा। सूचना समाप्त हुई।
1: इस इत्तला के बाद अब इजाजत चाहते हैं, लेकिन रुकिए, आपके तासुरात भी हम जानना चाहते हैं। अपने तासुरात अगर मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com और अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7991778157। एक बार फिर सुने 7991778157। सामईन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेजबान शम्सुल आरिफीन को दें इजाजत। आदाब।
2: उर्दू कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी को। साथियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनेंगे अखिलेश कुमार विश्वकर्मा के गाए कहरवा और दादरा। उससे पहले ये संदेश।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
8: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है PCOS की समस्या और इसका समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 3 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूले। हमारा फोन नंबर है 2221052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गाया ये कहरवा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत में अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गाया कहरवा। आइए अब सुनते हैं अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का ही गाया ये दादरा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गाया कहरवा और दादरा। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म बच्चन पांडे से। इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। संगीत है अमाल मलिक का और गीत के बोल हैं कुमार के।

फिल्म बच्चन पांडे का गीत आपने सुना। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बागी 3 से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है सचेत टंडन ने। संगीत है सचेत परंपरा का और गीत के बोल हैं शब्बीर अहमद के। फिल्म बागी 3।

फिल्म बागी 3 से सचेत टंडन की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म वॉर से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। संगीत है विशाल शेखर का और गीत के बोल हैं कुमार के।

वॉर फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म उरी का ये गाना, जिसे आवाज़ दी है यशीर देसाई ने। संगीत है शाश्वत सचदेव का, गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने। फिल्म है उरी।

फिल्म उरी का गाना आप सुन रहे थे, यशीर देसाई की आवाज़ थी। अगला गाना आपको सुनवाते हैं मंदाकिनी बोरा और अमित मिश्रा की आवाज़ में। पिक्चर है तिश्नगी। इस गीत को गीत के बोल हैं मंजीर बलियावी के और संगीत है गूफी का। फिल्म तिश्नगी।

फिल्म तिश्नकी का गाना मंदाकिनी और अमित मिश्रा की आवाज़ में आपने सुना। अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान से। इस गाने को आवाज़ दी है श्रेया घोषाल, सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान ने। संगीत है अजय अतुल का, गीत के बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के।

फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का गाना आपने सुना। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा है। आइए कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म द स्काई इज पिंक का ये गाना, जिसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह, निखिल डिसूजा और अंतरा मित्रा ने। संगीत है प्रीतम का, गीत के बोल हैं गुलजार के। फिल्म है द स्काई इज पिंक।

फिल्म द स्काई इज पिंक का ये गाना आपने सुना। अगला गीत जो आपको हम सुनवा रहे हैं वो है श्रेया घोषाल की आवाज़ में, फिल्म है द बॉडी। इस गीत को संगीत दिया है शमीर टंडन ने और गीत के बोल हैं कुमार के। फिल्म है द बॉडी।

फिल्म श्रेय द बॉडी से श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपने सुना है ये बेहतरीन सा गाना। अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म तड़प का। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है जुबिन नौटियाल ने, संगीत है प्रीतम का और गीत के बोल हैं इरशाद कामिल के।

तड़प फिल्म का गाना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में फिल्म सुपर 30 का ये गीत, जिसे जिसे बोल दिया है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अजय अतुल का। फिल्म है सुपर 30।

फिल्म सत्यमेव जयते से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं, जिसे बोल हैं मनोज मुंतशिर के और संगीत है रोचक कोहली का।

फिल्म सत्यमेव जयते से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर से, जिसे आवाज़ दी है रबी शेरगिल और शाहिद मालैया ने। संगीत है सोहेल सेन का, गीत के बोल हैं अशोक पंजाबी के। फिल्म है रोमियो अकबर वॉल्टर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज का ये संगीत में सफर आप तय कर रहे हैं चित्रा के साथ। आज है दिन गुरुवार का। आज के दिन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ हम आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का। कार्यक्रम में आपको हम बता दें कि हमारे पहले से भेजे ईमेल्स को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं, जो कि पहले से आप भेजे रहते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारा ईमेल आईडी है aarvnxfgexp@gmail.com। आज के पहला गाना हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म में, गीत गाता चल फिल्म से। जसपाल की आवाज़ है, रविंद्र जैन का गीत और संगीत है। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें संदेश भेजा है उनके नाम बताते चले। जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमनिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। अलावा इसके इस गीत को सुनना चाहा है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार ने।

बिजाना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, डब्बू सम्राट, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना खुराना का ये इसी गीत के लिए ईमेल आया है। गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी का ईमेल है। फजिल्का पंजाब से सुभाष गोदरा, विमल गोदरा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदरा ने हमें ईमेल भेजा है इसी गीत के लिए। रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिसान खान का ये संदेश आया है। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, भानु प्रिया का ये ईमेल है। ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनल विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा का ये संदेश है। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशु विश्वकर्मा का भी ईमेल है यहीं से। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर गीत गाता चल फिल्म से ये खूबसूरत गीत।

अभी आपने सुना गीत गाता चल फिल्म से ये गीत, आवाज थी आरती मुखर्जी की। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म उपकार से। मन्नाडे की आवाज है, इंद्रवर के बोल और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजक रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना मोना, हनी, यस, और उनके मम्मी पापा। इस गीत के लिए आपने बेहद ही खूबसूरत बात लिखी है कि फिल्म जगत के इतिहास के अंतर्गत फिल्म उपकार ने दर्शकों को ये संदेश दिया है कि देश की प्रगति में किसान, सैनिक और मेहनतकश लोगों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी ये फिल्म हिंदी सिनेमा की यादगार देशभक्ति फिल्मों में सम्मान के साथ याद की जाती है। इसी फिल्म को आपने सुनना चाहा है तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, और भी श्रोताओं ने इस गीत के लिए हमें संदेश भेजा है। उनके हम नाम बता दें, हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, इन आपने धन्यवाद लिखा है। आपका भी बहुत धन्यवाद ये संदेश भेजने के लिए। जी टीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिसा, जावेद अख्तर, जैस्मीन, शकीला, सना, समा, हिना, रजिया सुल्ताना, सुराज अंसारी और उनका परिवार, इन्होंने भी ये गीत सुनना चाहा है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, फिल्म उपकार के लिए ईमेल भेजे हैं। अनिल खोले, छाया खोले, प्रिशन खोले ने ये गीत, ये संदेश भेजा है वंजारा लेआउट नागपुर से। गांव कलमंडी खुर्द, जिला झालवाड़, राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपुताना परिवार ने हमें ईमेल भेजा है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का ये संदेश मिला है। बिजाना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान का ईमेल आया है। तालुका निवाला खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपट घट, चंद्रकला पोपट घट और देवीदास पोपल खट का ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवलकर, निर्मला नवलकर, विशाल नवलकर, मलिकापुर महाराष्ट्र से नारायण

इंगले, सोपान तायडे और आशीष मोहरकर का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। परमार अमित भाई, कमलेश भाई, सरसिया गांव, अमरेली जिला, गुजरात, रुस्तम तेरे संग का ये ईमेल है। गुरमीत सिंह नीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमें ईमेल भेज रहे हैं। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी का ईमेल है। धनोरा बिटाली, तहसील नांदुरा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल का ये ईमेल प्राप्त हुआ हमें। मसूर हसन ने हमें ये ईमेल भेजा है कुमारा हैडा सहारनपुर से। साथ में है सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, आदिब, नाजिया, अफाया, इब्राहिम सद्दाम ने ईमेल भेजा है। मलियान सरदाना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवन जैन सरदाना मेरठ से, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन का ये ईमेल है।

सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव का ईमेल प्राप्त हुआ है इसी गीत के लिए। मुबारक पर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा और वकार हैदर का ईमेल हमें मिला है। बदलापुर मुंबई से विनोद कुमार वंडलकर, उमरखेड़ से सरोज खान और शबाना खान का ये ईमेल है। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी, महादेवपारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े का ईमेल है। ग्राम वाधपुड़ा कोम खानुत छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से है गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन का ईमेल मिला है इसी गीत के लिए। मुक्कम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया रुमाणी मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, दिल मुमताज मुलाणी, दिलशाद मुलाणी, नासिर मुलाणी और चाचा चाची और पूरा मुलाणी परिवार, ये हमें ईमेल भेजा है। तो आइए सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म से ये गीत।

अभी आपने सुना उपकार फिल्म से ये गीत मन्ना डे की आवाज में। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आदमी से। आवाज है लता मंगेशकर की। शकील बदायूनी के इस गीत को संगीत से सजाया है नौशाद ने और इसे सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। लिवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्जवल दास मानिकपुरी। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता का ये ईमेल है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का ये संदेश है।

रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। श्रोताओं, आपसे गुजारिश है कि ये संदेश वाले ईमेल्स के जिसमें इसमें आपके फरमाइशी गीत ही आपको इसमें भेजना है, आपकी कोई भी जानकारी हो तो आप हमें PKLD में भेज सकते हैं। आपका जो भी समस्या है वो निवारण वहाँ हो जाएगा। ग्राम लसुड़िया, पता तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन कोमलपुरी, कृतिका, रमेश चंद्र डोंगी का ये ईमेल है। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदर और पांडुरंग कुमार का ये ईमेल है। आपने धन्यवाद लिखा है। आपका भी ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु मिस्कीन, रितिका आरोही वाणी, मिस्कीन परिवार, दयानंद कॉलेज, भवानी पेठ, सोलापुर, महाराष्ट्र से हमें ये ईमेल भेजे हैं। दिलदार नगर गांव, पश्चिम मोहल्ला, जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम शाह का ये ईमेल है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का ये ईमेल है।

मुंबई से अनु बरजातिया, शमशूल खान और अनुराज बैनारा का ये ईमेल है। ये संदेश है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु, अश्विनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा, आपने शुक्रिया लिखा है। आपका भी ईमेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी का ये ईमेल है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का ये ईमेल मिला है।

छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलूफर फातिमा, छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हुसैन रज़ा, गौशिया फातिमा का ये ईमेल हमें मिला है आदमी फिल्म के इस गीत के लिए। उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। जिला पश्चिम सिंहभूमि चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप और लिपि गोप का ये ईमेल हमें मिला है। तंगौरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगौरी, जसवीर कौर, महिक प्रीत कौर और सहिज प्रीत कौर सिंह का ये हमें ईमेल प्राप्त हुआ है। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत नचानी का ये ईमेल मिला। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी का ये संदेश आया है जैन मंदिर वाली कुली गली कुरवाली से। आपने सुनना चाहा है इस गीत को। चंदू कुलकर्णी का ये ईमेल आया है, आपने अपना एड्रेस नहीं लिखा है। थाना रोड बक्सर से जीत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता और आयुषी, आयुष और सानवी गुप्ता का ये हमें ईमेल आया है, तो आइए हम आपको सुनवाते हैं आदमी फिल्म से ये खूबसूरत गीत। आवाज है लता मंगेशकर की।

अभी आपने सुना आदमी फिल्म से ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म शोर से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और सुना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने इस गीत को सुनना चाहा है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल का ये संदेश है। कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया का ये संदेश आया है सरोज चौक से। और साथ में है सईद भाई और सूफिया अनस, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से इन्होंने हमें ये ईमेल भेजा है। चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमार कृष्टि पटवा का ये संदेश है धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से।

बड़ी केवी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द, त्रिभुवननाथ मालवीय एवं समस्त मालवीय परिवार ने हमें ईमेल भेजा है इसी गीत के लिए। गोलघर क्वाद बिहार से बिलाल बम्बैया, मोहम्मद हिलाल खान और इनके सभी दोस्तों ने हमें ये ईमेल भेजा है। जिला खरगोन सिनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मुसा भाई का ये ईमेल है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू का ये ईमेल है। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना खुराना का ये ईमेल है। ग्राम पगबुडवा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम का ये ईमेल है। बसमत रोड परभड़ी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगांवकर, कांचन कारेगांवकर, सृष्टि कारेगांवकर और समरजीत कारेगांवकर का ये ईमेल हमें मिला है इसी गीत के लिए। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का ये संदेश हमें मिला है इसी गीत के लिए। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर और विशाल मनवर और बेबी प्रियांशी का ये ईमेल है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी ने ये ईमेल भेजा है इसी गीत के लिए। कोल सिटी बरका खाना से आफताब ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक का ये ईमेल है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार ने लिखा है कि मैसेज ज़रूर शामिल करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल, आपका हो चुका है ये मैसेज। कृष्ण पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय का ये ईमेल है। रघुनाथपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ। अजीत कासना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कासना लदावली जिला मुरादाबाद से हमें ईमेल भेजे हैं इसी गीत के लिए। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ का ये ईमेल है।

पार्थ रेडियो, छत्रपति संभाजी महाराज से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश और शीतल राजेश का हमें ये ईमेल प्राप्त हुआ है इसी गीत के लिए। गजानन येले, नवदीप येले, विश्वजीत येले और मनीषा येले का ये ईमेल है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से। मंसूरी मुंगीसापुर से ये हमें बाजार रोड से लिख रहे हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबाना, यश मंसूरी और प्यारा नवासा नुमेर मंसूरी का ये ईमेल हमें मिला है। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा आपका हम ईमेल शामिल कर चुके हैं। ये ईमेल है अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से रामराव नितानी, शारदा नितानी का ये ईमेल है इसी गीत के लिए। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनसुईया जाधव और पवन राज जाधव का ये ईमेल है। तो हम आइए सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर शोर फिल्म से ये गीत।

अभी आपने सुना शोर फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला गाना। फिल्म है हम शक्ल से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है राहुल देववर्मन का। और इस गीत को सुनना चाहा है उच्चा भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, सिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी ने। इसके अलावा लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मारावी, प्रमिला मारावी, नेहा मारावी, पुष्पराज मारावी, ऋषभ मारावी ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई ने ये हमें संदेश भेजा है। सुनील सिंह ने ये हमें ईमेल भेजा है पटेल नगर से। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह का ये ईमेल आया है इसी गीत के लिए। पटियाली रोड गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, हम जमील, बेबी अरीबा और हबीबा का ये ईमेल है। गुलगर क्वाथ से बिलाल बम्बैयार, मोहम्मद हिलाल खान का ये ईमेल है। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी का ये ईमेल है। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, अनुराग मोहन का ये संदेश है। गनोरा बिटाली तहसील नांडूरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल और सचिन पाटिल का ये ईमेल आया है। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनिल राजभर, मनीष राजभर, अनीश राजभर और आकाश राजभर का ये ईमेल है। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश जंगई संगई, महेश संगई, प्रवेश संगई, प्रीतेश संगई और पूरा संगई परिवार है। चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, अजिता जोशी और दुर्गा कुमारी का ये ईमेल आया है। जेल रोड दिल्ली से बाबू दीवाना, दिव्या भारती, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आर्यनगर कोहवा भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार का ये ईमेल है। धमदाग्राम सुखारी कला से अजीत जंगेल, शकुल जंगेल और आरुषि जंगेल का। बागा मोड़ कोम खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन का ये ईमेल है। अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौदीन अंसारी और आफिया परवीन का ये ईमेल है। मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जिला जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अंसारी, अरमान इरशाद, नावेद और इरशाद अजरा तबस्सुम का ये ईमेल है। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेग, राबिया शेख और शेख रहीनुसा तानिश और आसिफ शेख का ये ईमेल आया है।

हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू का ये संदेश है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। जीतू प्रसाद का ये संदेश है जिसको हम शामिल एक बार कर चुके हैं।

संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का ये ईमेल है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू का ये ईमेल आया है। हटौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल का ये ईमेल है। जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी का ये संदेश है, फूल चिंचोड़ी तालुका पंढरपुर से।

ये संदेश है हर हर पुर मटकली जिला बरेली से शाहरूर नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरशी, मोइन अंसारी, तहसील अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान का आपने बहुत बहुत शुक्रिया लिखा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये संदेश है ग्राम कुंडावल तारापोस्ट ला रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति, माताजी निर्मला त्रिपाठी। आपने धन्यवाद लिखा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी पसंद पर आइए सुनवाते हैं हमशक्ल फिल्म से ये खूबसूरत गीत।

हमशक्ल फिल्म के इस गीत के बाद कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज में पंडित नागेंद्र शर्मा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कल है जन्माष्टमी और इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम आपको सुनाएंगे ये खूबसूरत गीत, जिस गीत के लिए हमें इन श्रोताओं ने ईमेल भेजा है। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार जिला चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का ये ईमेल है। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउद्दीन मोहम्मद उमर डावर का। पिपरिया जिला कबीरनाथ से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, अडार नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश, दीपेश वर्मा, सदर बाजार मारवाड़ राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौरहान, प्रतीक चौहान, पानी टंकी परेवा जौनपुर से रॉकी, बम बम, माना और रिंकू का ये ईमेल है। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन, मुबारक मलियान, सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, ये ईमेल है। ग्राम पोस्ट बिरकेरा जिला हमीरपुर से मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, इन सब की पसंद पर आइए हम आपको सुनवाते हैं सत्यम शिवम फिल्म से ये खूबसूरत गीत।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देती है मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हें तो जादू डाला है मुझ पे।

सत्यम शिवम फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अब समाप्त करने की दीजिए चित्रा को इजाजत। नमस्कार। कल है जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। अब दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियाँ भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
3: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
3: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
3: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो,

0: जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही। इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
1: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए, और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
1: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
1: जी
0: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
1: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
0: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
1: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
0: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है।
1: जी।
0: इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है।
1: जी।
0: धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
1: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया?
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
1: श्रोताओं, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
1: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
1: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
1: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
1: सही कहा अजीत जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है,
1: जी
0: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
1: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, ना जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओं, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी, और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी, और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी।

0: करती है।
1: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
6: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।
7: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है, ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
5: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
0: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।

0: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
1: और मैं सुचित्रा हूँ।
0: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
1: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
0: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
1: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
0: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
2: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
3: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
2: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
3: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
2: ना जाने क्या होगा इसका।
3: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
2: अरे वो सब तो ठीक है, पर
3: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
1: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
4: ऐसे ऐसे
5: जोर से मारना।
4: सैम है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं। सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
5: हम तो तैयार हैं मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
4: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
6: कैसा प्रयोग?
4: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
5: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
4: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना ये उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
5: अच्छा
4: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुंच जाओ।

0: अच्छा
1: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है।
2: हाँ,
1: उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है।
0: घंटी भी?
1: सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
1: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
3: हाँ हाँ
1: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
3: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
4: अरे वाह, अरे वाह, क्या
3: अरे
4: बात है,
3: वाह, वाह, कोनी, क्या क्या बात है,
4: अरे ये तो जादू की तरह लगता है,
0: वाह,
4: क्या बात है, अरे वाह,
1: सिग्नल मिला?
4: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत, शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
5: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
6: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
5: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूं।
2: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: बट ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: जॉर्ज, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: अरे ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे भागो, भागो, बाहर निकलो, भागो, डेक की ओर भागो।
6: ये क्या हो रहा है? यार पूरी तरह हिल रहा है।
7: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
5: हेड पर कितनी बड़ी खराट पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर
0: गया। जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो, एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेरल्ड।
7: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, एमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प, लाइफ सिग्नल भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
7: जल्दी जल्दी करो,
0: जीवन रक्षक नावों को नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
8: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

0: डायरेक्टर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में

0: मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला। पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
1: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
2: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
3: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
4: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो।
5: विश्वास नहीं
6: होता।
2: मिस्टर मार्कोनी
7: जी,
2: अच्छा ये बताइए,
7: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
2: गुड गुड।
7: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
2: बिल्कुल।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए
8: 0542227658।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें
9: 0542227658।
5: सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं डॉक्टर शुचि उपाध्याय। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये भजन, रचना है मीराबाई की।

तुलसीदास की रचना के साथ ही समाप्त होता है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार थीं डॉक्टर शुचि उपाध्याय। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे का गायन, राग है वृंदावनी सारंग। आपके साथ तबला संगत की है कौस्तुभ सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ज्ञानेश चंद पांडे का गायन। राग था वृंदावनी सारंग। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे कौस्तुभ सिंह। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों में सुनेंगे दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थ्रियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं। रूल्स बेस्ड ग्लोबल
0: ऑर्डर। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों

0: और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमरीका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। श्री रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,588 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। महिला एशिया कप 2023 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 94 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1,242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:05 हो रहे हैं। आइए आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना और आज केंद्र से प्रसारित शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सबसे पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना है। प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू कुमार पुत्र राजेश्वर प्रसाद निवासी भोगवार लोहता थाना मुगलसराय जिला चंदौली उत्तर प्रदेश। सोनू कुमार दिनांक 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार सुबह 10 से अपने घर से कहीं चले गए और लौटकर वापस नहीं आए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र है इनकी 28 वर्ष, कद 5 फिट। लापता होने के समय इन्होंने ब्लू हाफ पैंट और हरा टी शर्ट पहना हुआ था और पैर में इनके हवाई चप्पल था। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या प्रभारी निरीक्षक को 9454403187 पर सूचित करें।

ये जानकारी है पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा। करिश्मा तिवारी हैं, पुत्री हैं नरेंद्र तिवारी, निवासी रेवती उत्तर टोला वार्ड नंबर 10। करिश्मा तिवारी दिनांक 19 जून 2026 को दिन 11 बजे से अपने घर से कहीं चली गई और लौट कर नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बात इस प्रकार है, उम्र है इनकी 13 वर्ष, कद 5 फिट, रंग गोरा। लापता होने के समय इन्होंने हरे रंग का सूट और पैरों में चप्पल पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या पुलिस अधीक्षक बलिया को 9454400255 पर सूचित करें। एक और जानकारी है थाना दुद्धी से, ये है सोनू, पुत्र दरोगा कुशवाहा, निवासी ग्राम तुहान, थाना तुद्दी, जनपद सोनभद्र। सोनू दिनांक 19 मार्च 2025, 4 बजे शाम से ये लापता है। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है, उम्र है 14 वर्ष, कद 4 फिट, रंग गेहुआ। लापता होने के समय इन्होंने खाकी पैंट और नीली शर्ट पहन रखी थी। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना दुद्धी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। और अब आइए एक नजर डालते हैं।

हैं आज के इंद्र से प्रसारित शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भारत बनाम हांगकांग मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण सुनेगा शाम 7:30 से मैच की समाप्ति तक। संदेश टू सोल्जर्स का समय होगा शाम 4 बजे से। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संस्कृत कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे से। रोजाना की तरह किसान भाई सुनेंगे किसानवाणी शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा होगी बातचीत और लोक संगीत में सुनिएगा अखिलेश कुमार विश्वकर्मा के। इनके गाए गीतों को आप दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी सुनेगा शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की बात होगी योग है जरूरी और मानसिक स्वास्थ्य पर। साथ ही होगा मेरी पसंद यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में मुंदेली गीत सुनेगा शाम 5 बजे से। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा सुनेगा दिन में 2:30 से। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया दिन 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा सुनेगा आधुनिक ग्रामीण परिवेश में रोजगार के अवसर विषय पर प्रोफेसर पीवी राजीव से शबनम परवीन की बातचीत और साथ ही साथ कार्यक्रम में होगा गीत संगीत। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: बचाव के लिए आज से रियासत भर में एक खसूसी HPV वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हो रही है। ये 17 सितंबर तक चलेगी। इस मुहिम के दौरान 14 से 15 साल की तकरीबन 10 लाख अहल लड़कियों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर NB सिंह ने अहल लड़कियों को HPV टीके लगाने की अपील की। 14 से 15 साल की उम्र की लड़कियों को वैक्सीनेशन जरूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन बच्चादानी के कैंसर से बचने का वाहिद तरीका है। अपनी बेटियों को HPV वैक्सीन के टीके लगवाकर उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। साबिक एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। यह ऐलान कल ट्रस्ट के सदर महंत नित्य गोपाल दास की सदारत में हुई मीटिंग के बाद किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए CEO एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद CEO के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। CEO के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भगवान कृष्ण के जाय पैदाइश मथुरा में जन्माष्टमी त्यौहार को एक अजीमुशान और इलाही रंग देने के लिए तैयारियां जोरों पर है। पहली बार जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण की पैदाइश और मुख्तलिफ तफरीहात को आसमान पर जिंदा करने के लिए 500 ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। दरियास्ता वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा जिले का दौरा करेंगे। वह तकरीबन 1,051 करोड़ रूपये के 229 तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में 6 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। दरियस्ता बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत की कई नदियां तुगयानी पर हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से ला कई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1,242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:15 हो रहे हैं। आइए बहने सुने अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: अग्नेय कार्यक्रम सुनने वाली बहनी लोगन के नमस्ते। इमरती बहनी तोहरों के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो लाली, नमस्ते लाली। तुहार तो एक बात हमें बड़ी अच्छी लगल है
0: उका
1: कि जब चलल रस्ते में ना, तो ई ना सोचतु कि अब सीधे हम वहीं से मिले कोई आवे के हो। भाई तुहार तो ई आदत हमें बड़ा नीक लगे ना कि जे बहिन मिल जाए, जे बच्चा मिल जाए, जे बुजुर्ग मिल जाए, सबके समझावत चललू, सबके बतावत चललू और कहीं के ज्ञान का बात बतावेलू।
0: सबकर हाल चाल लेवल जरूरी है हो। और सबसे जरूरी चीज तो ये है ना कि गांव घर कुल एक परिवार के जैसन होला। हाँ, खाली अपने परिवार तक ही अपन परिवार नहीं सीमित, पूरा गांव अपन परिवार होला, पूरा समाज अपन परिवार रहेला। और सब केहू स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एकर ध्यान तो हमके तो के रखे की पड़ी ना।
1: अरे भाई कहली है ना कि तू ज्ञानी बहिन बाऊ, और इतना नहीं हो लली। देखा हो आज बड़की भौजी ऐनी है तो रस्ते में कहनी कि है लड़कवा के लेके जात है ला, हमके कहाँ जात हो सवेरे सवेरे लेके। कहे ये बहनी इमिरती जाए के बाद ना लाली भी काली का हमसे कहले हैं कि टीकाकरण चलत हुआ लड़के बच्चे के लगवा दा, जैसे कि जोन हाई जोन काली खांसी होला, पोलियो होला, टिटनेस होला, तरह तरह के रोगवा होला ना लाली, तो ऐसे रहने का बचाव है।
0: बिल्कुल सही बात है। हम तो सबके जागरूक ऐसे भी करते हैं कि 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनावल जाता। और इ पोषण सप्ताह मनावले के पीछे उद्देश्य ही यही है कि सब लोगन के जागरूक कर जाए कि ठीक से खाएं, ठीक से रहें, ठीक से टीकाकरण करवाएं और कौनो तरह का समस्या स्वास्थ्य से जुड़ल उनके न हो।
1: ये लाली
0: हाँ हो।
1: खाली हम ही लोग का बात ना हो, देखा अपन सरकार भी ना एमे बहुत अपन तरह तरह का अभियान चलावत हो, पोषण अभियान चलावत हो, जेकर उद्देश्य ही यह हो कि जैसे गर्भवती महिला हो, बच्चन हुआ, ये लोगन के पोषण मिलत रहे, अच्छा खान पान मिले

0: और साथ में जौन कहली ना कि तरह तरह का जो बीमारी होला
1: वो
0: भी ना हो, जैसे एनीमिया बाय है कुपोषण हो, ऐसे तो खास के बचाव होला। तो कहीं कि जौन भी अभियान सरकार चलावत हो, और लाली एक बात और कहीं कहीं कि जब तू मिल जालू हमसे तो तुहार से इतना बतकही करे के मन करेला, बही लोगन से इतना बतकही, और जो भौजी लोग हैं ना तो भाई अपने तो जौन लइकन बच्चन के खिया दी हैं, बड़ बुजुर्ग के खिला दी हैं, और खास करके भाई मनई हुआ अपन आदमी हुआ तो उन्हों की सोची है कि तरह तरह के व्यंजन बना के खिया दें, और जौन बचल खुचल रही वो हम बाद में खा ले।
2: जबकि वह तो देखा भाभी माता होलिन, भविष्य उनका सुरक्षित रही, स्वास्थ्य उनका सुरक्षित रही, तो घर परिवार में सब मजे में रही, ये करे के न चाहिए। बहुत घरन में यो देखल जाला नहीं मृति बहन कि दाल भात बनाए के रख दी है, अब जब अपने भूख लगी चाहे लइकन के भी चार बेरा भूख लगत है तो दाल भात खियो ले रही है, तो खाली पेट भरले से उनके सब पौष्टिक तत्वन का पूर्ति न हो उनके शरीर में। हाँ भाई, उनके खाना में चाहे अपने खाना में थाली एकदम संतुलित रहे के चाहिए, माने ओमन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन हर तरह का चीज खनिज तत्व जो ना हर चीज के समावेश हुए के चाहिए, हर तरह का भोजन हुए के चाहिए। अब ई नहीं है कि माना कि हम कहते कि हर तरह का समावेश हुए के चाहिए तो बहुत महंग महंग फल खैबू तरकारी खैबू तब भी मौसम के अनुसार जौन भी चीज मिला था अपने प्रकृति में देखा मौसम के अनुसार हर चीज के पूर्ति करे का सामान मिला था तो ओके ओ समय में खाएं, ओके अपने भोजन में शामिल करें, दाल है दूध है दही है गुड़ है चना है ये कुल तो सबके घरे में मिला था ना, तो ई खा पी के मने स्वस्थ रह सकेला और कुपोषण से बचल रह सकेला। आ देखा इमृति बहन गर्भवती बहनी लोगन जेकरे घरे में है उनकर विशेष ध्यान रखे का जरूरत,
0: बिल्कुल
2: जैसे तू रखे लू अपने भौजी का ध्यान की देखी ला की पहले तू उनकर थरिया निहारत रहे लू।
0: ये भाई कहें कि घर परिवार का मतलब ही यह होला कि घरे में अगर मान ला कोई नया मेहमान आ वाला हो, भौजी हो चाची हो कोई भी हो कोनो भी रिश्ता नाता हो, भाई अगर हम लोग घरेला तो हम लोग का उद्देश्य भी यह है कि भाई अपन जो महिला लोग हैं गर्भवती महिला बात करते हो ना तो उस स्वस्थ रही है, तो बच्चा भी जो आ वाला मेहमान हो वो भी स्वस्थ रही और घर परिवार का भी सबका ये सहयोग मिलला तो कहें कि अच्छे से जो है कि उनका देखभाल हो जाला खान पान हो जाला। तो भाई हम ही कहे कहें कि सब बहन लोग का जो है कर्तव्य बना ला कि अपने घर में जौन भी गर्भवती महिला है छोटा बच्चा हुआ उनके प्रति जो है भरपूर ध्यान रखे।
2: बिल्कुल टीकाकरण का बात कहलू है तो उनके टीका लगवालू है कि नहीं भाई, बच्चन के संगे संगे गर्भवती महिला लोगन के बदे भी लगावल जाए।
0: भाई उम्मे हम पीछे ना रहिला, ये कुल काम काज में तो हम सबसे आगे रहिला, सब कहलू ना कि भाई जितना तू ध्यान देलू तो ही से जो है कि हम प्रेरणा पाईला कि अगल बगल मोहल्ला जे भी हो सब कर ध्यान देला।
2: देख ली भाई इमन तू सही बात कोनो कमी नहीं है, सबकर कारण ले लेके गोहरावत रहे लू कि तुहार समय पूरा हो गए भाई टीका लगवाएला अपने बच्चन के, तो यही तरह से जागरूक रहे कि भी चाहिए मृति बहन
0: और कहीं कि कुछ जरूरी संदेश भी सुन लेवल जाए फिर बात कही कह जाए।
2: बिल्कुल।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: इमरती बहन,
6: हाँ
5: देखा हम लोगन पोषण का बात, स्वास्थ्य का बात करत रहली है ना।

0: हाँ हाँ
1: आपन सनेसो में ही है कुल रहा ला कि मोटा अनाज का सेवन करल कितना जरूरी।
0: भाई हम लोग का उद्देश्य ही होला कि जोन भी अपन कार्यक्रम बही लोगों के सुनावल जाए ना, ओमे कुछ न कुछ संदेश जरूर रहेला।
1: अबई बतकही में कौन संदेश है उहो ले आके बहनी लोगन के सुनवाए दे तू ना।
0: अरे कहीं के अब देखा गांव भी मालूम ना, गांव ना रहगल हो, अब गांव में भी तरह तरह के रोजी रोजगार हो गल है, अवसर हो गल हुआ, तो कहीं कि यही पे एक बढ़िया के निके निके बात सुनाओ थी ला, आधुनिक ग्रामीण परिवेश में रोजगार के बढ़ते अवसर, और कहीं कि अरे भाई हम सुनत ना होगा एला ली प्रोफेसर पीवी राजू से बतेवले हुआ सबनम परवीन, तो भैया लोग सुना अल्लाह देखा तू
2: बहनों, आधुनिक ग्रामीण परिवेश में रोजगार के बढ़ते अवसर, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर राजू, आप प्रबंध शास्त्र संस्थान BHU और अटल इंक्यूबेशन सेंटर के निदेशक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे हमारे जो ग्रामीण परिवेश की बहनें हैं वो भी हैं और कुछ अभी शहरी महिलाएं भी हैं, इन सबको अगर रोजगार के बहुत सारे अवसर आज हमारे सामने हैं, कुछ ना कुछ सब करना चाहते हैं, आपके जो संस्थान है BHU में उससे अगर हम कुछ लाभ उठाना चाहें, उसके बारे में हम जानना चाहें, खास करके अपने बहनों के लिए, तो आप अपने संस्थान के बारे में हमें बताइए कुछ।
3: हाँ, हमारा संस्थान अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और पिछले 8 साल से हम इस रोजगार के एरिया में काम कर रहे हैं और ग्रामीण और विमेन एंटरप्रेनर्स के लिए हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम NRLM के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आइडिया जो है वो सिटी से ज़्यादा हमें लगता है कि विलेज से आता है, क्योंकि वहाँ का जो संसाधन है वो कहीं सिटी में आपको नहीं मिलेगा
2: जी।
3: और उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो महिला समूह जो बना है विलेजेस में भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है एक डिसिप्लिन्ड एंटरप्रेनर बनने के लिए। इन सब को साथ लेके हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो कोई भी आइडिया लेके आए उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फाइनल मार्केट में जब तक पहुंचते नहीं है तब तक हम पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। मेंटरशिप का सपोर्ट है, लैब फैसिलिटीज का सपोर्ट है, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में समझाने का सपोर्ट है और बाकी उनके जो एरिया है उनसे रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग हो या टेस्टिंग हो उस पे भी हम सपोर्ट करते हैं जो सब्सिडाइज्ड रेट पे हो सकता है, या मेंटरिंग तो फ्री में करते हैं और जो हम लोगों का स्पेस और ये सब है वो भी इनिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है 6 महीने के लिए, उसके बाद फिर मिनिमम फीस रखा जाता है ताकि वो अपना ऑफिस सेटअप करें और काम शुरू किया जाए।
2: अच्छा, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत फैसिलिटी भी है, बहुत लोग जागरूक भी हैं और महिला समूह बहुत जागरूक है, वो उसके लिए आप सुविधा भी देते हैं, लेकिन जैसे कि एक होता है ना कि हम पहले से अपने दिमाग में एक मैप बना के हम आपके पास पहुंचे कि हमें ये काम करना है, ये हमारी पहले से तैयारी हो किसी का भी, या फिर आपके पास जाने के बाद वो हमको फील्ड दिया जा सकता है कि आप इस पे काम करिए, दोनों दो अलग अलग प्रोसेस है, तो क्या हमें करना चाहिए?
3: दोनों के लिए हम लोग तैयार हैं
2: जी।
3: एक होता है आप आइडिया लेके आए तो हम उस आइडिया को इवैल्यूएट करेंगे कि क्या ये मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा और अगर नहीं है तो क्या चेंजेस ले आना है, अगर होगा तो क्या रास्ता निकालना है, उसके बारे में आपको मदद करेंगे। दूसरा होता है कि कोई भी संस्थान अपना प्रॉब्लम दे देते हैं और बताते हैं कि हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, तो उस केस में प्रॉब्लम पता है तो उसका सोल्यूशन के लिए हम एक अलग अलग कंपटीशन टाइप का करा के उनको मोटिवेट करते हैं कि आप सोल्यूशन लेके आइए और जो सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोगों के यहाँ चलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास आइडिया अच्छा होता है लेकिन वो बिजनेस में उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बिजनेस एक्यूमेन कम रहता है, और किसी के पास बिजनेस एक्यूमेन अच्छा है लेकिन आइडिया नहीं है, तो इंक्यूबेशन सेंटर का ये भी काम है कि इन दोनों को एक पॉइंट पे मिलाएं ताकि जिसके पास आइडिया हो वो उस पे ज्यादा फोकस करके रिसर्च और इन सब पे काम करे और जिसके पास बिजनेस एक्यूमेन

0: हो वो मार्केट में कैसे पहुंचे उसके बारे में काम करे। तो दोनों तरीके के चीज होता है। और हाँ, मुझे लग रहा है कि इनक्यूबेशन सेंटर का मेन फायदा यही होता है कि आपका एक अच्छा सा टीम बिल्डिंग हो जाता है अगर आपके पास टीम नहीं है तो दोनों केस में हम सपोर्ट करते हैं।
1: अच्छा, ये आपके जो संस्थान है इसमें क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या रोजगार के अवसर हैं? जैसे आपने कहा ना कि कुछ तो हमारे पास आइडिया होंगे, कुछ लोग ब्लैंक होंगे, उनके पास टीम होगी, वो कुछ करना चाहते होंगे, उनके पास जोश होगा, सब कुछ है, लेकिन दिशा नहीं है। आप दिशा भी दे रहे हैं, आप उनकी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या हम कर सकते हैं वहां आपके संस्थान से आके, उसके बारे में कुछ बताइए हमें।
0: हमारे संस्थान में हम AI पे फोकस्ड है, क्लीन टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड है, हेल्थ केयर पे फोकस्ड है, साइबर सिक्योरिटी पे फोकस्ड है। तो इस तरीके से हम पांच छह ब्रॉड एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम लोगों के पास अच्छा टीम भी है, अच्छा मेंटरशिप भी है और हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आते हैं तो BHU के स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसपे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं,
1: जी
0: तो उसको भी हम ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे पास आइडियाज आते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब स्टूडेंट लाइफ में ही हो उन्हीं उसी टाइम पे हम टारगेट करें और बच्चों से बोले कि आपका कोई भी आइडिया हो अपने नाम से रजिस्टर कर लें। तो एक डेटा बैंक हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आइडिया बैंक के नाम से हम रजिस्टर करके उन्हीं बच्चों के या उन्हीं के नाम से रजिस्टर कर देंगे और उसको जहां पे पेटेंट हो सकता है उसका मदद भी हम करते हैं क्योंकि हमारा टाई अप NRDC और टाइफेक वगैरह सभी है।
1: जी
0: तो ये जो आइडिया आता है जरूरी नहीं है कि तुरंत वो बिजनेस में कन्वर्ट हो। कुछ ऐसे भी होंगे जो बताते हैं कि हमें 4-5 साल बाद इस आइडिया पे काम करेंगे, तब तक हम नौकरी करेंगे। ठीक है, तो 4 साल आपका आइडिया आप ही के नाम पे रहेगा, उसके बाद आप आके उस पे काम कर सकते हैं। या कुछ होंगे जो बोलते हैं कि ठीक है आइडिया मेरा रहेगा लेकिन हम इसको किसी और को देना चाहते हैं जो बिजनेस में कन्वर्ट करके
1: जी
0: चला सकते हैं। तो उस टाइप से भी उनको भी मिला देते हैं ताकि दोनों का फायदा हो सकता है कि आइडिया भी बाहर जाए और
1: कुछ
0: उसका
1: अर्निंग भी हो जाए।
0: अर्निंग
1: तो
0: भी हो
1: इस
0: जाए।
1: तरह से हम अगर देखें तो कुछ लोग, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ अलग सा कुछ डिफरेंट करना चाह रही है, तो उसके लिए क्या वो जो पैटर्न करा चुके हैं वो तो हम नहीं

0: कुछ अलग सा कुछ डिफरेंट करना चाह रही है, तो उसके लिए क्या वो जो पेटेंट करा चुके हैं वो तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनसे क्या मर्ज हो सकता है?
1: हाँ, उनसे हम बात करके उनका आइडिया को लीज पे ले सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं, जिस पे हम काम कर सकते हैं। जो अभी आपने जो बताया, जो ग्रामीण महिलाएं हैं,
0: जी
1: हम ये देख रहे हैं कि जो समूह के साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और हमने ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी उनको दी, और काफी अच्छे से वो यूज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनल से अच्छा वो यूज कर रहे हैं ड्रोन वगैरह को, पेस्टिसाइड वगैरह और एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी में भी कुछ महिलाएं काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक रास्ता उनको दिखाना है। उनके पास सब कुछ है, हमें
0: जी
1: खाली एक रास्ता दिखाना है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आप भी कर सकते हैं और अच्छे कर भी रहे हैं। क्योंकि समूह में हम देख रहे हैं कि अलग-अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ डिटर्जेंट्स पे फोकस्ड हैं, कुछ पूजा आर्टिकल्स पे फोकस्ड है, इस तरीके से है। और प्रोडक्ट भी अच्छा है क्योंकि उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मार्केटिंग में दिक्कत होती है। तो फिर हमें नए प्रोडक्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, खाली मार्केटिंग पे उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, उसका टेस्टिंग करने की जरूरत है, जो नॉर्मली वो उनको समझ में रहता नहीं है कि ये टेस्टिंग वगैरह भी करके उसका इंग्रेडिएंट्स डालना है। तो ये सब करके उनको मार्केटिंग में भी सपोर्ट करते हैं। दोनों तरीके से हम करते हैं, जहाँ पे एक जो विलेज में महिलाएं हैं उनका टैलेंट को समझ के काम दे देते हैं, या उनके पास कोई अच्छा आइडिया हो जो फ्यूचर में जाके अच्छा हो सकता है, तो उसी हिसाब से भी हम करते हैं। और उनके पास आइडिया नहीं भी होगा
0: तो
1: तो
0: आप
1: भी
0: देते
1: हम
0: हैं।
1: उनको देख के सपोर्ट करते हैं।
0: मैंने आपके अंदर अगर कुछ करने का जोश है, कुछ करना चाहती हैं, तो आपसे मिले, प्रोफेसर डॉक्टर राजीव से, और आप बहुत सारे दिशा आपको दे सकती हैं। साथ में एक बात और दिमाग में आती है कि खास करके जो बहनें हैं उनकी कुछ उम्र पे ध्यान रखना है, उनकी पढ़ाई कितनी हो, या फिर वो किस तरह से अपने को माने कि हाँ हम परफेक्ट हैं, हम कर सकते हैं।
1: हाँ, तो इसमें यह है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई हमारे पास आते हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर में, हम उनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे।
0: जी
1: ये विश्वास के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि आते हैं वो आइडिया के साथ, नहीं भी है आइडिया तब भी हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको दिशा दिखाएंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। और इसके अलावा उम्र और पढ़ाई में कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि अगर बड़े बड़े लोग बिजनेस को देखें तो कोई ना कोई 60 साल में शुरू किया है, किसी ने 20 साल में शुरू किया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि उम्र का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए, और पढ़ाई का भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। हाँ, आपका टीम सही हो, आपके पास वो वाला पढ़ाई नहीं है, तो आपके टीम में कोई हो जो उसको समझ सकते हैं, तो उस हिसाब से बैलेंस्ड एक हमें बनाना होगा, और हम उसको बनाने में आपको सपोर्ट भी कर देंगे कि कौन कौन हो, ताकि आपको फ्यूचर में जाके अकेले जब आप खड़े होंगे तो दिक्कतें ना महसूस करना पड़े।
0: एक सवाल और उठ रहा है दिमाग में कि मान लीजिए कोई महिला है, वो कुछ करना चाहती है लेकिन उसकी टीम नहीं है, क्या ऐसी महिला को आप किसी टीम के अंडर रख करके वो काम कर सकती है?
1: हाँ
0: आप खुद जोड़
1: जरूर,
0: सकते हैं उसको?
1: हाँ जरूर जरूर, वो हम मिला देते हैं पहले कुछ दिनों के लिए, वो आपस में बात करें, अगर वो कंफर्टेबल है तो उस टीम में उनको जोड़ देंगे, नहीं है तो फिर दूसरे टीम से हम मिलवाएंगे। क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर दूसरे के साथ सहयोग करके जा पाए,
0: जी
1: तो उसका भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि अगर टीम में कोई दिक्कतें हो रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो फाइंड कि कहाँ पे वो फिट इन हो सकता है।
0: तो बहनों देखिए, बस इच्छा होनी चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, और अगर आप आज से ही ये कुछ शुरू करना चाह रही हैं तो आप प्रबंध शास्त्र संस्थान BHU जाइए। दिशाएं बहुत सारी हैं, राह बहुत सारी हैं, आपका मार्गदर्शन होगा। और प्रोफेसर डॉक्टर राजीव, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी बहनों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: इवित्ती बहिन, हाँ हो लली देखा अब बहिन लोगन नी

0: के एक बतकही सुनत रहलिन हा कि आधुनिक गांव के परिवेश में रोजगार का कितना अवसर बढ़ल जात हा। यही पर जानकारी देवे बदे आज आयल रहलन हा प्रोफेसर पीवी राजीव और उनसे बतियावत रहलिन हा शबनम परवीन बहिनी।
1: अब बतकही तो हो गल लाली, लेकिन साथ में कहीं कि अब मन मनसायन के बारी होत हो। बहिन लोग इंतजार करे नी कि देखी भाई आज लाली आई मृति कौन सा हम लोगन के गीत सुनावत है।
0: देखा आज हमन का हंसी ठिठोली बहुत हो गई ला माने अगर सावन तक खत्म हो गई ला भादो चढ़ गई ला लेकिन बरखा बुन्नी हो ना तब मन वही तरह रहेला। अकाल देखा काल तक श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव भी मनावल जाई हा। अब ही बरखा बुन्नी के समय चला था काहे ना ओही से जुड़ल एक थे नीके कतो के गीत सुनवा दे। अब बहनी लोगन के भी सुनवा दे।
1: बिल्कुल सुनल जाए, बहन लोग भी सुने के।

0: इमरती बहन कैसन रहलगी?
1: अरे लाली कहीं ना कि भाई यही से देखा ना हमार हंसी जोन रहा तो के देख करके रुकत नहीं। कहे जब तुम मिलल हो ना तो मन हमारे इतना खुश हो जाला तुके देख के कि अपने ऊपर हमार बस ना रह जाला।
0: देखा ऐसने होए के चाहिए ना कि केहू के देख के केहू के मन में खुशी आए, मुस्कान रहे हाँ होठ पर। तो ई कुल तो चीज ठीक है, लेकिन देखा ना अपने पिटारी में भी कुछ ले के हमन बहनी लोगन बड़े जानकारी के चीज ले आए, वो बता दी हल जाए।
1: भाई काहे बता देवल जा, और देखा चलत हुआ इस समय बारिश का महीना है, बरसात होता हुआ, तो बहन लोग जो है कि अपने प्रति भी थोड़ा सचेत रहे, अपने खान पान का तो बात हम लोग कहबे कहीं नहीं है, और साथ में कहीं ना कि अपन त्वचा हो बाल हो अगर उकरे प्रति भी सचेत रहे और सुंदर लगे देखे में, तो भाई ओकर देखभाल करिए तो सुंदर तो लगबे करिए ना ली।
0: बिल्कुल आ जाना। तो बाल तो सबसे जरूरी चीज बहनी लोगन के लगेला कि अगर उमन तनी दिक्कत आवे ले ना तो बहुत परेशान हो जाए। लेकिन आजकल अगर बाल गीला हो जाता ना तो गीला बाल बहुत जल्दी टूटेला। हाँ
1: बिल्कुल
0: तो ओके बढ़िया से सुखा के रखें और गंदगी न रहे बाल में। गंदा बाल के कंघी से अगर झड़िए साफ करिए तो उसे भी दिक्कत हुई टूटी बाल।
1: अल्लाह एक बात और कही ना, जैसे कुछ बहन लोग देखा बाल धुल लेन और धुलने के बाद क्या करानी कि तुरंत तक कंघी लेके लगी है खपर खपर झाड़ है, हाँ ऐसे में का होला ना कि देखा बाल का जो जड़ हुआ उसमें जो ना उसमें मजबूती ना रह जाला, बाल झड़ लगाना, तो कोशिश ये करे के चाहिए कि बहन लोग बढ़िया से जब अपन बाल सूख जाए और तब ओके कंघी लेके धीरे धीरे जो ना कि आहिस्ता आहिस्ता बालन के सुलझावे झाड़े, तो इससे आपका बाल सुरक्षित भी रही है मजबूत भी रही है।
0: बिल्कुल। एकरे संगे संगे अगर बाल में दही का लगावे का सेवन करे, दही लगावे बाल में, तो ओसे भी बाल का जड़ जो ना वो मजबूत होला। बहुत बेनी लोगन के देखेला ना कि हल्का गुनगुना पानी में अगर बाल के धो के ऊपर तौलिया लपेट ली है तो कहेलिन कि ओसे भी बाल का जड़ मजबूत होला।
1: और एक बात लाली हम और कहे चाहत,
0: का
1: देखा हो हम लोग बात तक करत हिला कि भाई ये तरह का सुरक्षित या सावधानी बरसे हैं, लेकिन एकरे साथ ही साथ आप बहन लोग अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें, काहे से ना कि हम लोग का चाहे त्वचा हो चाहे बाल हो चाहे आंख हो, एकर हम लोग के खान पान से सीधा संबंध होला, तो ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार लें, हरी साग सब्जी दूध मेवा ये कुल अपने खान पान में अगर शामिल करी हैं तो हम लोगों के जो पोषण मिला उसे भी हम लोगों के बालन के बहुत सारी जो है ऊर्जा मिलल है।
0: बिल्कुल सही बात कहलू हो। पानी भी मजे का पिए के चाहिए, पानी पिए में भी कोताही न करे के चाहिए। बाल हो चाहे शरीर का त्वचा हो अगर उस स्वस्थ रखे के है तो अपने खान पान में संतुलन बनावल बहुत जरूरी है। एकरे साथे साथे जो बहुत जरूरी बात है वो ई है कि सफाई। भाई अगर सफाई न रही तो कितनो बढ़िया चीज खा कितनो बढ़िया से रहा कुल बेकार।
1: बेकार के बात कह लो तो यो कहीं हम कि भाई इस समय जो है ना भाई मौसम चाहे गर्मी का हो चाहे सर्दी का हो चाहे बरसात का हो के, लेकिन जो सफाई की बात हो ई के हमेशा में ध्यान में रखे के चाहिए, काहे से कि सफाई से सीधा हम लोग का स्वास्थ्य से संबंध रहेला।
0: बिल्कुल रहेला। और ये चीज जितना हम लोगन गोरा गोरा बहनी लोगन के बतावत ही ऊपर ध्यान दी है, अपने साथे साथे लड़कन बच्चन का भी ध्यान दी है कि भाई ऊ तो आजकल देखा हिला किच्चा होता ना तो ही में जाकर वो लोगन कूदे लगत हुवन पानी में, गंदे गंदे पानी में। तो जब ऊ आवे कहीं से बरखा की बुन्नी के पानी में से तो उनका हाथ पैर बढ़िया से धोवावे, लेकिन देखा बतियावे लगा तो घड़ी के ओर भी ध्यान नहीं जाले। ध्यान देवे के हुई कि अब समय होता समाप्त, तो बहनी लोगन से विदा लेवे के हुई तो चला चला कहल जाए
1: नमस्ते।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं अखिलेश कुमार विश्वकर्मा। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं कहरवा।

निर्गुण के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार थे अखिलेश कुमार विश्वकर्मा। इनके गाए किसानी गीत आप किसान वाणी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुन सकेंगे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। सुनेंगे मिड डे न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: lightning over Bihar, East Rajasthan, Sabhimalayan, West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, Kidambi Srikanth stunned world number 9, Vitalai of Canada, in straight games to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters Super 750 badminton tournament in Shenzhen today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Belgium agree to double bilateral trade in next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart in New Delhi. Agreements signed in areas of renewable energy, cybercrime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence data centers and global capability centers. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Vitalai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टरलाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है
2: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी
2: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे
1: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में

0: द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
1: The world is witnessing a time of crisis.
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर 1 ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
5: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

0: वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
1: ग्रोथ इन एक्सपोर्ट इज 24%।
2: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश माली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
5: रांची में गेतलसू डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्ण रेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुनरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक लियू से होगा। उधर

0: महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.5000 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशां। प्रस्तुति है स्तुति मिश्रा की।

कहकशां कार्यक्रम में मैं स्तुति आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल धड़कता है तेरी यादों के साए में, हर खुशी मिलती है तेरे ही फसाने में, जाने कैसी तासीर है तेरे नाम में, सुकून मिलता है बस तुझे चाहने में।

तेरी यादों का क्या कहूँ, वो तो आदत बन गई। तेरे बिना जीने की सजा मुझे राहत बन गई। हर लम्हा तुझसे जुड़ा है किसी न किसी बहाने, कभी खुशबू कभी आहट बन गई।

कभी बेवजह मुस्कुराना, कभी देर तक खामोश रहना, तेरे आसपास ही है जैसे अब खुद को महसूस करना। ये जो हालत है, न सुकून है न कोई शिकायत है, बस तेरा नाम आए और दीवानगी बढ़ जाए।

रफ्ता रफ्ता तू मेरे जीने का सहारा बन गया, हर सांस हर ख्वाब का इशारा बन गया। पहले तो तन्हा थे हम अपनी राहों में, अब तेरा नाम ही हर रास्ता बन गया।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशां। मीडी वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बज रहे हैं, संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं संदेश।

नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स की आज के संग में मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हर बार की तरह हमारा आज का ये कार्यक्रम आत्मिक होने वाला है, क्यों कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही एक मेहमान जिन्होंने 40 वर्षों तक सेनाओं के जरिए सेना में अपनी सर्विसेज देने के बाद आज सेवानिवृत्त होने पर भी अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्म से उन्होंने अपने लिए एक नए आयाम ढूंढे हैं। उनके नए आयाम क्या हैं ये बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर

0: जनरल अशोक कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये एक्स डायरेक्टर जनरल वर्क्स इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक ऐसे ऑफिसर हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी सेना को सशक्त किया है। अक्सर हम यही कहते हैं कि सेना का अर्थ है हमारे तमाम वो फौजी जो मैदान जंग में जाकर लड़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ये फौजी सेना को सशक्त करते हैं, अपने साथियों को सशक्त करते हैं? अब आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे कि हमारे आज के जो गेस्ट है, मेहमान है, ये एक सोल्जर होने के साथ साथ एक मिलिट्री इंजीनियर भी हैं और इन्होंने सेना में रहते हुए असीम योगदान दिए हैं। तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। अशोक जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
0: जी, जब भी हमारे इस कार्यक्रम में आप जैसी हस्तियां शिरकत करती हैं, पहुंचती हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरी ओर से यही रहता है कि वो कौन सी कैसी बात थी, कौन सी कैसी चाह थी जो आपको भारतीय सेनाओं की तरफ ले गई, क्या वो बात थी जिसने आपको आकर्षित किया कि अगर जाना है तो बस सेना में ही जाना है और सेना के माध्यम से ही अपने देश प्रेम को स्थापित करना है?
1: सो गीतिका, वो दौर ऐसा था जब हमारे पास विकल्प कुछ थे भी और कुछ नहीं भी थे, पर उन सब में जो परम विकल्प था वो फौज ज्वाइन करना था। और वह इसलिए भी था कि हमारे पिताजी स्वयं फौज में थे, वो इंडियन नेवी में थे और उनके साथ में हम कई वर्षों तक रहे, अलग अलग जगहों पर हमने गए और दिल में एक ऐसी उम्मीद थी कि हम भी उनके पद्म चिन्हों पर चलेंगे और फौज में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब हुआ।
0: वाह क्या बात है। अक्सर ये देखा जाता है जब वो बच्चे जिनकी परवरिश फौजी माहौल में होती है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में जिंदगी जीते हैं, तो क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था जो बचपन से ही आपको रास आया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी हमें बचपन से ही उन्होंने जो सिखलाई करी, वो चाहते थे कि जैसा वो अपने नियमित रूप में करते हैं वैसा ही हम सब करें। हमने कोशिश की कि हम उनके पदचिन्हों पर चल पड़ें और उनके जैसे काफ़ी चीज़ें सीखें। कुछ हमने सीखा, कुछ आज भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वाह क्या बात है, तो सीखने सिखाने का सिलसिला बरकरार है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि भले ही घर में माहौल स्ट्रिक्ट रहा हो, तो इसके बीच शैतानियां ना हुई हो ऐसा भी मुमकिन नहीं?
1: स्ट्रिक्ट माहौल, आई थिंक उन दिनों में जो तरीके थे काम करने के वो इस तरह के थे कि जब तक बच्चे को एक एक खुराक ना मिल जाती तो वो आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन आज का ज़माना शायद बदल चुका है, लेकिन हम उन चीज़ों से यूज़ टू हो चुके थे और हम अपने तरीके से, हम अपने दोस्तों के साथ में शैतानियाँ भी करते थे, खेलकूद भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और अपने काम में कोशिश की कि हम वो अचीव कर पाएँ जो हम चाहते थे। और फौज का जो हमारा एक लक्ष्य था वो हमने उन सब चीज़ों में रहते हुए हासिल किया।
0: जी, ऐसा भी दौर आता होगा कि पिताजी लंबे समय तक कहीं बाहर रहते हों, टूर्स पे रहते हों, अपने मिशन्स पर रहते हों, तो उस बीच उनके साथ संपर्क ना हो पाता हो, तो ऐसे में किसको अपनी बात कहते और कैसे घर का सामंजस्य माताजी बनाती?
1: ये सब चीज़ें आई थिंक फौज में जब आप रहते हैं, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, सो आप इन सब चीज़ों से वाकिफ हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम जिंदगी का एक रूप जो है वो अपने आप में एक तरीके से ढलने लग जाता है। जब आपको मालूम होता है कि आपके पिताजी जब आपके साथ में नहीं हैं तो आपने क्या क्या कार्य करने हैं, मदर के साथ में कैसे डील करना है, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में कैसे करना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे रखना है। उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन के ज़रिए चिट्ठियों के द्वारा हुए थे, तो उनका एक अलग खुशी थी उसमें, एक अलग तरीका था और हमें मालूम होता था कि कब पिताजी आएंगे और कब हमारी खिंचाई होगी। लेकिन साथ ही साथ हम अपना काम करते रहते थे और वो सारी जिम्मेवारियां भी निभाते थे जो आज कम देखने को मिलती हैं।
0: एक बच्चे के लिए उसके पिता उसके रोल मॉडल होते हैं, तो जब कभी आपने अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखा उस वक्त क्या फीलिंग आई, उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: सो यूनिफॉर्म में तो जब से हम पैदा हुए और हमारी हम एक उस स्टेज में आए जब, तो हमने अपने पिताजी को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा और अच्छा लगता था। वो यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग की होती थी और वो नेवी में कार्यरत थे, सो काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने पोस्टिंग करी, तो हमारा भी इरादा था कि हम भी फौज में जाएं। हम चाहते थे कि

0: हम एयरफोर्स में जा पाएँ, लेकिन हम फाइनली आर्मी में गए और आज हमें कोई शक नहीं है कि जो भी हमने आर्मी से सीखा वो काबिले तारीफ है और हमारे जीवन की जो कार्यशैली है वो उससे हमने बहुत कुछ सीख कर आज हम एक सशक्त इंसान बने हैं। इसका मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को जो आज हमारे बीच में नहीं है, पिताजी हैं, तो उन सबको देता हूँ जिनके वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
1: जी, निश्चित रूप से। वो पल कौन सा पल था, कैसा पल था और कब घटित हुआ जब आपने आर्मी का एग्जाम क्लियर किया? क्या थी वो पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप एक ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में?
0: उन दिनों में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और अमूमन फौजी बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते थे और उनका काफ़ी नाम हुआ करता था और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। तो हमारी ये जिद्दोजहद थी कि हम पहला हमारा जो लक्ष्य होगा वो फौज का होगा। सो पहला जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उन दिनों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको हम NDA कहते हैं, उसके एग्ज़ाम हुआ करते थे। वो उन दिनों में 11वीं के बाद होते थे और मुझे याद है कि हम ग्रुप बना के सारे दोस्त एक साथ पढ़ा लिखा करते थे और कोशिश करते थे कि हम उसको निकल पाएँ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने अपना जो इम्तिहान था वो पहली दफ़ा में क्लियर कर लिया था, लेकिन NDA के दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज आए कि हम ज्वाइन नहीं कर पाए। वो कसक जो है दिल में लगी रही और ये रहा कि हमें फ़ौज में ही जाना है। तो हमने 3 साल और मशक्क़त की, ग्रेजुएशन की, बम्बई यूनिवर्सिटी से BSc में उत्तीर्ण हुए और फिर दोबारा से हमने उसी सेंटर में उसी उम्मीद के साथ फिर एक बार जूझे और फिर पहली दफ़ा में हमने एग्ज़ाम क्लियर किया। और एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो थी लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हम आर्मी में आ गए।
1: जी
0: सो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई ऐसी शिकायत या गिला नहीं है, लेकिन जो सफ़र रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, हमने ज़िंदगी के कई दायरे कई पहलू ऐसे सीखे जो आज तक हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं।
1: जी तो सन 1986 में आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया,
0: हाँ
1: CDS
0: जी
1: एग्जाम,
0: जी हाँ
1: और फिर 1987 में आप कमीशन्ड हुए इंडियन आर्मी में।
0: हाँ जी
1: जी, तो फिर पहली पोस्टिंग कहाँ मिली, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन किया आपने?
0: जब हमने ट्रेनिंग के दौरान IMS से निकले तो कुछ दिनों के लिए हम रुड़की में एक छोटा ट्रेनिंग कैप्सूल होता है जिसको करने के बाद में हमारी पहली पोस्टिंग सिक्किम में आई, जो कि आपने सुना होगा नथुला पोस्ट है
1: जी
0: जो चाइना के अक्रॉस है। सो हमारी यूनिट की एक टुकड़ी वहाँ पर तैनात थी और हम जैसे ही यूनिट पहुँचे कुछ दिन कैलिमपोंग एक जगह है जहाँ पर रहने के बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमको वहाँ भेज दिया गया और ऑलमोस्ट 2 साल हम वहाँ पर रहे और जो कुछ वो सीखने को मिला उस दौरान में वो काफ़ी काबिले तारीफ था। हमने अपने अपने आप भी काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जो हमारे सरदार साहिबान और हमारे जवान और हमारे जो अफसरान थे उनके ज़रिए हमने काफ़ी कुछ सीख ली जो आज तक हमारे साथ में बरकरार है।
1: वाह, क्या बात है। एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे। वैसे तो भारतीय जो सेना है, जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है, टफेस्ट ट्रेनिंग्स कहा जाता है वर्ल्ड में, लेकिन ट्रेनिंग्स के बाद भी जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं, आप पर कार्यभार दिया जाता है, आपको डिसीजंस लेने होते हैं, कमांड सुनने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, तो वो मंजर कैसा था? क्या आपकी कल्पनाओं से एकदम अलग था या जो आप सोच के गए थे बिल्कुल वैसा था?
0: आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी एक अपनी यू नो तरतीब होती है कि आप सोचते हैं कि ज़िंदगी की यू नो चीज़ें इस तरह से चलेंगी, लेकिन जब आप ज़मीन पर हकीकत में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, कई चीज़ें उसके विपरीत भी होती हैं और आप देखते हैं कि ज़िंदगी के मायने कुछ और भी हैं। और उसमें जो सीखने सिखाने वाले लोग हैं, आपके जो सीनियर अफसरान हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो आपकी टुकड़ी के जवान हैं, जो JCOs हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनके ज़रिए आप बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकली शायद नहीं सिखाया जाता है। वो जब आप ज़मीनी हकीकत के साथ जुड़ते हैं तो आप वो एक अलग ही सीख होती है और वो आपके साथ ज़िंदगी भर बरकरार रहती है। तो उसके लिए मैं अपने जवानों का और अपने जो सरदार थे उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और उनके साथ में मैं आज भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम उनसे मिलते हैं।
1: जी, यही खास बात है हमारी भारतीय सेना की कि वो हर मंजर के लिए हमेशा तैयार रहती है और अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, ऑफिसर्स को इसी तरह से तैयार करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए।

0: हालात कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हें डटे रहना है, टिके रहना है और हर जंग में फतह हासिल करनी है।
1: कांधे पे सूरज

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल, और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। हम कहते हैं ये कि हम में वो जज्बा है, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम हर जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं, पर सच मानिए ये जज्बा भी हमें हमारे सिपाहियों, हमारे सोल्जर्स, हमारी भारतीय सेना से मिलता है, और जिसकी जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल अशोक कुमार। जी अशोक जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, खासतौर पर जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की, उससे पहले ट्रेनिंग थी, और ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर नियुक्त किया गया, आपको पोस्टिंग दी गई, लेकिन इंजीनियरिंग, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियर आप रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ही इस विभाग को ही आपने चुना या फोर्सेज ने आपके लिए इस विभाग को चुना, किस तरह थी ये प्रक्रिया?
1: So,

0: ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको मौका दिया जाता है कि आप किस संस्था में या इन्फेंट्री में, आर्टिलरी में या इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप जो तकनीकी ब्रांचेस हैं जिसमें इंजीनियर्स, EME, सिग्नल्स आते हैं, इनमें आप जा सकते हैं। बकायदा कि आपने BSc बैकग्राउंड किया हो और आपके पास वो डिग्री हासिल हो। सो हमारे पास में विकल्प था कि हम इंजीनियर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उन दिनों में इसमें काफ़ी कंपटीशन था, लोग काफ़ी जाना चाहते थे, तो हमारे कोर्स के दौरान हमारे 28 वैकेंसियां थी और हम तकरीबन 200 लोग थे जिन्होंने इंजीनियर्स में ऑप्ट किया था। तो आपकी मेहनत के अलावा आपकी किस्मत भी थी, वो बैचेस में बनाते थे और हर बैच में 2 से 3 वैकेंसीज आती थी। सो आई वॉज लकी कि हमें जो मुझे ज़रूरत चाहिए था वो मिला, एंड खुशी का माहौल था जब आपने एक वॉर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया। ये एक ऐसा कोर है जिसमें आप लड़ाई के दौरान में सबसे पहले दुश्मन लड़ाई में जाते हैं और लड़ाई ख़त्म होने के बाद में सबसे आखिर में आप पूरा कार्य करके बाहर निकलते हैं।
1: जी
0: सो दिस इज़ एन एडवांटेज, एंड इसमें आपको पढ़ाई लिखाई काफ़ी करनी पड़ती है, जो कि एक आम धारणा है कि फ़ौज में जब बंदा जाता है तो इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बट एज इंजीनियर्स हमें ज़रूरत है कि हम इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करें, और अगर आपकी चेष्टा है तो आप आगे उसको फर्दर एग्ज़ाम दे के आप अपने मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। सो कहना कि फ़ौज में जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई काफ़ी है, और आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनका उपयोग लड़ाई के दौरान भी आता है।
1: जी पढ़ाई का सिलसिला तो मुझे लगता है आपका बरकरार रहा। जैसे आपने खुद कहा, आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद एमटेक भी किया, एमफिल किया आपने मैनेजमेंट स्टडीज
0: जी
1: में।
0: हाँ,
1: ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा।
0: ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा। कई फौज आपको अपॉर्चुनिटीज देती है, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपने जद्दोजहद करके और अपने आप को उत्तीर्ण हासिल करना होता है। सबको मौका जरूर मिलता है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो आई वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस हु कुड मैनेज टू डू दीज कोर्सेज, एंड पढ़ाई भी कर पाए, और जिससे हमारे को अच्छी ख्याति हासिल हुई और हमारे प्रमोशंस में भी इसके काफ़ी काम आए।
1: बहुत खूब। अब बात की जाए मिलिट्री इंजीनियर की, मिलिट्री इंजीनियरिंग की, अक्सर हम यही सोचते हैं कि फौज का अर्थ है हमारे वो सेनानी, हमारे वीर, हमारे सैनिक जो मैदानी जंग में जाते हैं, जंग लड़ते हैं और हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब भारतीय फौज की बात आती है और जब हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स हमारी सेनाओं को कैसे सशक्त करता है, क्या भूमिका रहती है इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर्स की?
0: आज का दौर आपने देखा होगा, जब प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी लड़ाइयाँ देश के बाहर में हो रही हैं और जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, तो तकनीकी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे फोर्सेस में भी इंजीनियरिंग का होना बहुत ही अहमियत रखता है, और कहते हैं कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मायने हैं कि जब आप लड़ाई के दौरान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने फोर्सेस को मोबिलिटी प्रदान करते हैं और दुश्मन को मोबिलिटी डिनाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो अचीवेबल टारगेट है वो अचीव हो और दुश्मन को आपने टारगेट को अचीव करने में आप बाधा बने। सो आपने चाहे सुरंगें बिछानी हैं, चाहे आपने ब्रिजेस बनाने हैं, चाहे आपने नौका के जरिए नदी को पार करवाना है, उसमें बड़ा बड़ा जो असला है, सामान है, टैंक्स हैं, ये सब पार कराने और लाने और ले जाने की जिम्मेवारी कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी जाती है। साथ ही साथ जब दुश्मन दूसरी तरफ से हमला करता है तो उसमें माइने या सुरंग लगाने का कार्य भी इंजीनियर्स को दिया जाता है, जो कि हम अपनी सूझबूझ और हमारे सिखलाई के तरीके से करते हैं। इसी प्रकार जब दुश्मन की जो मोर्चा है उसको हम हासिल कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम रिकूप करके दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करते हैं और जो हमारी टुकड़ियाँ हैं पीछे, उनको सामने लाके फिर लड़ाई को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब लड़ाई लगती है तो हम एयरफोर्स के साथ में भी मदद करते हैं, जब हमारे हवाई अड्डे होते हैं उनको बनाने में, या कोई नुकसान हो गया है उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने का काम भी हमारा है। सिमिलरली नेवी के जहाज़ों के लिए जो युद्ध पोत वगैरह हैं उसमें जो चीज़ें बनती हैं या कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको भी ठीक करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लाने का और लड़ाई के लिए सशक्त बनाने का कार्य भी

0: लोगों का होता है। सो काफ़ी काम होते हैं जो कि तभी हासिल हो सकते हैं जब आपने पीस दौरान में अच्छी पढ़ाई की हो, उसको अमल में लाए हों और देश के सुरक्षा कार्यों में उसकी आपने एक नीति बनाई है जिसके कारण हम यू नो वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव।
1: जी, तो ना केवल भारतीय सेना को सशक्त करती है मिलिट्री इंजीनियर्स, बल्कि आम जनमानस के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही सार्थक साबित होती है। यू आर हेल्पफुल टू द एंटायर नेशन इन डिफरेंट वेज। तो किन किन तरीकों से हमारे मिलिट्री इंजीनियर्स जो हैं देश के लिए,
0: जब कहीं देश पर आपदा आती है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं लैंडस्लाइड्स आ गए, तो उसमें जब रेस्क्यू मिशन होते हैं तो उसमें भी हमारे इंजीनियर्स का काफी काम होता है। जब हमें दुर्गम इलाकों में हम जाते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल्स में उनको लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हम भारत की जनता के प्रति या बाहर के देशों में हम जो भी फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें वो टाइम से दें, ताकि इंसान को इंसान की जो ज़रूरत महसूस होनी चाहिए उसमें हम एक भागीदार बन सकें।
1: जी, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा हमारे ऑफिसर्स के लिए कि वो निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है इंजीनियर्स को इंजीनियर्स बनाने में। ऐसे में मिलिट्री इंजीनियर्स भी उनकी लगातार अपने सर्विस दौरान ट्रेनिंग चलती होंगी, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनकर वो अपने आप को सशक्त करते हैं कहीं ना कहीं कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नया किया जा सकता है। तो आपके साथ भी लगातार ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रहा,
0: ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है, क्योंकि देश में इतने विकल्प हैं कि आप सोचते हैं कि आप ही कर रहे हैं। आपने लड़ाई है अपने एक दुश्मन से जीतनी है और वो भी अपने तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी तकनीक के द्वारा कोशिश में रहता है कि आपसे अच्छा आ सके। जब तक आप उसकी सोच को विफल नहीं कर पाएंगे, और वो होगा जब तकनीक में आप बकाया आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और उससे बेटर हासिल करेंगे, तभी आप जंग को जीत पाएंगे। सो आने वाले समय का जो दौर है वो एक फिजिकल लड़ाई है और एक है जो तकनीक के द्वारा जीते जाने वाली लड़ाई है, और हम देख रहे हैं कि आज बाहर के देशों में, चाहे वो ईरान की लड़ाई चल रही हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, उसमें छोटे छोटे देश भी अपनी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए कितनी बहादुरी से और दिमाग से लड़ने की कोशिश जारी है। तो वो शायद चीज़ें हमें भी हासिल करने की ज़रूरत है, हम इससे अलग नहीं रह सकते।
1: जी, तो 100 बातों की एक बात कि एक सोल्जर को मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ता है अगर उसे जीत हासिल करनी है, चाहे वो मैदान की जंग में हो या फिर हमारे सिविलियंस की जिंदगियों की बात क्यों ना हो। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा मुस्तैद हैं हमारे लिए। एक बात और यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने खुद बताया था कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत खुश हैं कि आपने इंडियन आर्मी के जरिए अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने ये भी कहा कि किस तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग की जब बात होती है तो आप एयरफोर्स, नेवी सबके लिए काम करते हैं, आपने भी ऐसा किया है, सभी फोर्सेस के लिए आपने काम किया, उस वक्त खुशी तो बहुत हुई होगी। कहते हैं कि जीवन ना एक चक्र की तरह है, कभी कभी जहाँ छूटता है वही जिंदगी को ले आता है।
0: बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिकॉज यू नो एक व्हेन यू आर यंग आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं जाना चाहें जहां पर आपकी यू नो आप जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार भगवान के तरीके अलग होते हैं, तो शायद वो यू नो मुझे पायलट बनाने से किसी तरह से वंचित किया। लेकिन मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ खूब जमकर काम किया और एक ऐसी फीलिंग आई कि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं, चाहे हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई कार्य हो या कहीं भी हो, तो एयरफोर्स की सुविधाएं हमें मिलती थी और अच्छा लगता था जब हम उनके जहाज़ों में बैठकर दूर दराज के क्षेत्रों में देखते थे कि भाई कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है इंजीनियरिंग की, जिससे उनको सहूलियत मिलेगी और हमारे जो देश के सिपाही हैं उनके कार्यशैली में एक क्षमता बढ़ेगी जिसका हमें काफ़ी गर्व है। तो हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े रनवे बनवाए, टैक्सी ट्रैक्स बनवाए, एयरपोर्ट्स हवाई जहाज की जो सुविधाएँ हैं वो काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाई, जिनकी वजह से आज हमारी सेनाएं वो सब हासिल कर पा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है।
1: एक बात और, क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, लेकिन एक मिलिट्री पर्सन के लिए, एक इंजीनियर के लिए, खासतौर मिलिट्री इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो सशक्त कर रहा है फोर्सेस को, उसके लिए अनफोर्सीन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कुछ नया इजाद करना कितना महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत दुरुस्त आपने सवाल किया और ये चीज़ें बहुत ही कारगर हासिल होती हैं जब आप अपनी इंजीनियरिंग

0: ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ का एहतियात करते हैं जिससे हमारे पूरे फोर्सेस को एक अच्छा मौका मिलता है, और जो कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो कभी हमने सोचे नहीं थे, हमें जब ऐसे टास्क मिले तो क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की नॉलेज और हमारे जो लोगों ने हमें सिखाया वो इतनी कामयाब हुई कि हमें खुद सोचकर अच्छा लगा कि हमने सही किया, जो चीज़ें हमने सीखी और हम अपने देश के काम आ सके।
1: जी, सबसे बड़ा जज्बा तो एक फौजी के लिए यही होता है कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है, अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपने देश प्रेम से, और शायद इस सुख से बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जीवन के 40 वर्ष आपने भारतीय सेना को दिए हैं, तो जब पीछे अतीत के पन्ने पलट कर देखते होंगे, बहुत सारी बातों को याद करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक सुखद सांस उसको आप रोज भरते होंगे, और अपने कार्यकाल को जो आपने जिया है उसे जरूर याद करते होंगे।
0: नहीं, अच्छा लगता है, बिकॉज़ जो आपकी बचपन की उम्मीदें थीं और आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना
1: करना
0: चाहता
1: चाहते हैं।
0: है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौज में हो या ना हो, हर इंसान, एक हर नागरिक इस देश का अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है। लेकिन हमें एक सौभाग्य मिला कि हम काफ़ी नज़दीकी से अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ कर पाए, काफ़ी वर्क इन प्रोग्रेस है जो आने वाली जनरेशन से वो करेंगी, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारी सिखलाई है, जो हमें बताया जाता है कि देश के लिए तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो हैं नाम, नमक और निशान।
1: वाह, क्या बात
0: नाम
1: है।
0: है आपकी अपनी पलटन का, आपके अपने जिस यूनिट में आप काम करते हैं, रेजिमेंट हैं, और उसको आप कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। एक सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है कि उसके किसी भी कृत्य से उस गौरवशाली नाम पर कोई आँच ना आ जाए। फिर वो नमक की बात करता है, जब जहाँ पर वफादारी और कर्तव्य निष्ठता काम आती है, और जिस चीज़ जो नमक आप खाते हो उसका यह विश्वास का वह बंधन है जो सैनिक को वर्दी, कमान और अपने साथियों से कभी विश्वासघात ना करने की प्रेरणा देता है। निशान हमारे झंडे की बात होती है, यहाँ राष्ट्रीय तिरंगे, रेजिमेंट के अपने झंडे और उसके इंसिग्निया का प्रतिनिधित्व करता है। निशान को हमेशा ऊंचा रखना देश के लिए एक संप्रभुता और रेजिमेंट के युद्ध समान, जो जिसको हम बैटल ऑनर्स बोलते हैं, कि रक्षा का एक संकल्प है जो कि हमारे रग रग में भर दिया जाता है। और यह एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके काम आती है, चाहे वो पीस स्टेशन हो, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो। तो तीन चीज़ें हमेशा याद करें, नाम, नमक और निशान।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 इस नंबर पर। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया है आपके योगदान के लिए, और जिस तरह से आपने 40 वर्षों तक अपना योगदान दिया, आपके लिए सुखद पल बहुत सारे अपने आपने अर्जित किए, और आप भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से आप अलंकृत हैं, और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार, आपसे जानना चाहते हैं कि हम जीवन में, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा चाहता है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आप भी सेना में रहते हुए अलग अलग पोजीशंस पर आगे बढ़ते गए, और कहते हैं कि जब आप ओहदे में आगे बढ़ते रहते हैं, आपको हाईएस्ट पोजीशंस मिलती हैं, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे आपने कार्य किए, लेकिन इन सब पोजीशंस में काम करने के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज थी जो हमेशा एक जैसी रही और साथ चली 40 वर्षों, क्या वो एक ऐसी फीलिंग थी, क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा? भले ही ओहदा बढ़ता गया, जिम्मेदारी बढ़ती गई, लेकिन वो फीलिंग जब ज्वाइन किया था फोर्सेस तब भी वैसी थी, और जब फोर्सेस छोड़ी तो आज भी वो बात जिंदा है, आपके दिल में पेवस्त है।
1: जब आप किसी भी महकमे में जाते हैं, करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एहसास है वो, खासकर जो फौज का महकमा है, वो एक आपको ऐसी उम्मीद देता है कि ये आप इसी को बिलोंग करते हो और इसी में आप बसते हो, और वो जो चीज़ है वो आज भी ऐसा लगता है कि आप आज भी फौज में हैं। भले ही वर्दी नहीं पहनी है, लेकिन एक एक एक एहसास होता है कि मैं इसी में जिया हूँ और मैं इसी में मरना चाहता हूँ। दूसरा जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें लगता है फौज से, एटलीस्ट मुझे सीखने को मिला है, कि आप जब से फौज में आते हैं और जाते हैं, हमेशा ये सीखने को मिला कि आप अपने जो, जिनकी वजह से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अधिक के अधिकारी हैं, बट जो जवान हैं, जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो आपकी तरफ देखता है कि ये हमारा साहब है, और बिना कुछ कहे आपस में हम

0: एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो एक ऐसी उम्मीद रखता है जिसमें आप बिना बताए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो चाहे अदरवाइज हो, आप उनकी उम्मीदों पे अगर खरे उतरेंगे तो आप वास्तविकता में आपने अपने जीवन को कुछ कर दिखाया है। और वो उम्मीद बिना बताए बिना बोले हुए अगर आप कर पाते हैं और उसको साथ में लेकर चल सकते हैं, तो वो एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। कई बारी आपके जवान आपके लिए इतना कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो शायद आप उसे भूल ना पाएं, एक ऐसा कुछ उसकी उम्मीदों पे खरे उतरें, तो वो आपको जिंदगी भर याद करता है। और आज भी हमारे जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए, उनसे जब बातचीत होती है तो हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा और उन्होंने हमें क्या सीख दी। एक छोटा सा उदाहरण था, जब मैं फौज में गया तो पहाड़ों के इलाके में थे, हमारे पास गाड़ियाँ थी, तो हमने गाड़ी चलानी अपने एक सिपाही से सीखी। उसने हमें कोशिश की कि जो ट्रेनिंग है वो दे पाए, और गाड़ी चलते समय पहाड़ के स्लोप पर रुक गई, तो उसका नाम मुझे याद है आज भी, सिपाही ओम प्रकाश हुआ करता था। और वो गाड़ी रुकने के बाद में वो बाहर निकला, और उन दिनों में हैंडल मार के गाड़ी को स्टार्ट करते थे, वो गाड़ी इतनी जोर से हैंडल लगा कि गाड़ी उछल के और नीचे रोल होनी शुरू हो गई। तो हमने एक नाले के साइड में गाड़ी उल्टी होके चारों पहिए ऊपर और गाड़ी पलट गई। तो ओम प्रकाश का पहला वाक्य था कि लेफ्टिनेंट साहब आप घबराइए ना, हम ये जिम्मा अपने सर पर लेंगे। हमने कहा ओम प्रकाश ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी हमारी वजह से गिरी है तो हम जिम्मेवार हैं, तुम बस ये करो कि वहाँ से जाके कोई हेल्प लेके आओ। तो वो हादसा एक ऐसा हादसा था जहाँ पर आपका सिपाही आपके लिए आपको आँच नहीं आने देता है और कोशिश करता है कि मेरा जो साहब है वो हमेशा सर्वोपरि रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखते हो कि यदि आपने ऐसे दौरान में आप उनके साथ में खड़े हो, जिंदगी भर उन चीज़ों को याद रखता है। और आज भी जब हम पुरानी चीज़ें बातें याद करते हैं तो बताते हैं कि साहब आपने हमारे लिए ऐसे किया था। भले ही वो कुछ अपना प्रमोशन नहीं मांगता है या अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांगता है, लेकिन जो उसकी सच्चाई है और उसका जो काम करने का तरीका है, वो उसके साथ में आप ज़िंदगी कुछ ऐसे उसूल सीखते हैं जो आपके दिल को हमेशा छू जाते हैं। और आप समझते हैं कि एक सबसे बड़ा जो आदर है वो एक इंसान का इंसान के प्रति प्यार और उसकी एक ऐसी गरिमा है जिसको अगर आप बरकरार रखें तो वो ज़िंदगी भर आपके शायद काम आती है। भले ही उस मोमेंट में आप शायद कुछ मिस कर जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें आपको सोच के अच्छा लगता है। एंड उन्हीं उम्मीदों के साथ में हम जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन्स को भी ऐसा ही कुछ सिखा पाएं।
1: जी फौज की एक ख़ास बात मुझे ये लगी कि जब जब भी हम इस प्रोग्राम में संदेश टू सोल्जर्स में आप जैसे ऑफिसर से बात करते हैं कि फौज में कोई अकेला नहीं है, हमेशा किसी हर किसी के साथ हर कोई है, ऐसा नहीं एक है, हर किसी के साथ हर कोई है। और ऐसे में जब अपने परिवार से दूर है तो आपको लगता है कि मेरा कौन सा ऐसा काम था जो मुझे पता नहीं लगा, वो हो भी गया, तो
0: बिल्कुल
1: शायद एक
0: हाँ,
1: बड़ी खूबसूरत बात है फौज
0: खूबसूरत
1: की।
0: चीज़ है। और आप जब आप आगे सरहद पर अकेले रहते हैं, अकेले मतलब आप अपने फैमिली से परिवार से दूर होते हैं, आपके जो जवान हैं वो आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं जब आपको महसूस नहीं होते, और ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ में बकाया हैं, वो आपका उतना ध्यान रखता है, शायद आपका परिवार भी उस मंजर में शायद इतना ध्यान ना रखे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब बिन बनकर आप एक साथ सोचते हैं तो वाकई एक परिवार का एहसास होता है। और एक फ़ौज में जो सबसे अच्छी सिखलाई है कि आप लास्ट मैन, यू हैव टू टच ग्राउंड विद द लास्ट मैन ऑन ऑन ऑन द फील्ड, यू कांट लीव एनीवन बिहाइंड। लड़ाई के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, आपका जवान क्षतिग्रस्त होता है, जब तक हम उसको निकाल कर सुरक्षित जगह पर नहीं लाते हैं, हम अपना कार्य का शैली को सफल नहीं समझते हैं। और कई हमारे ऐसे कोर्सेज और ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जहाँ हमने एक टुकड़ी के साथ में एक जीत हासिल करनी है, अगर उसमें आप समय से पहले आ गए लेकिन एक बंदा आपका अभी तक पीछे है, जब तक वो शामिल नहीं होगा आपकी जीत जीत नहीं मानी जाएगी। सो ये एक ऐसी मंजर है जिसको हम सीखते हैं। उसके अलावा जब कोई हमें कलेक्टिव टास्क मिलता है और हम में से कोई बंदा नहीं कर पाता है, तो उसको भी जब तक हम साथ में लेकर उस जीत को हासिल ना करें, वो जीत जीत नहीं मानी जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ना केवल कृतज्ञता हम फौज से सीखते हैं, हम टीम स्पिरिट एकता

भी हम फौज से ही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे युवा ये कहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी माता पिता हैं वो गर्व से उनका सीना पहले ही चौड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा फौज में जाना चाहता है। और यही फौज की खूबसूरत बात है कि वो सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और हर युवा यही चाहता है कि मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना प्रेम सेनाओं में भर्ती होकर दिखाऊं। तो ये जग आपके लिए है, सेनाएं आपके लिए हैं। अब आप उसे कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।

संदेश टू सोल्जर्स आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। एक सिपाही के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, लेकिन जब उसके कार्य को, उसकी जिम्मेदारियों को, उसकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया जाता है तो उसके लिए सबसे सुखद पल होता है। आपके लिए भी बहुत सुखद रहा होगा, ये भी कह सकते हैं कि आपने जिस चीज का इंतजार किया वो आपके आपके शोल्डर्स पर थी, आपकी ड्रेस पर थी, आपकी यूनिफॉर्म पर थी, अति विशिष्ट सेवा मेडल जिससे

0: आपको नवाजा गया आपके सर्विसेज के लिए, आपके योगदान के लिए, तो उस वक्त वो जो पल होता है, वो पल आपको क्या क्या याद दिलाता है? क्या आप अतीत में चले जाते हैं या सिर्फ याद करते हैं कि आज ये जो पल है, ये पल इस वजह से आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने बस अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा था, इसलिए हुआ।
1: इंसान की एक फितरत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो वो एक अवार्ड और रिवॉर्ड सोचता है। कई बारी वो अवार्ड शायद उसे तब नहीं मिलता जब वो मोस्ट हम्बली उसको डिज़र्व करता है। कई बारी अवार्ड जो हैं वो ऐसे वक्त पर मिलते हैं जब आपके अंतिम चरण में आप इतना कुछ काम करके गवर्नमेंट आपके रिकग्नाइज करती है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। इंसान इस दुनिया

0: इंसान की एक फितरत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो वो एक अवार्ड और रिवॉर्ड सोचता है। कई बारी वो अवार्ड शायद उसे तब नहीं मिलता जब वो मोस्ट हम्बली उसको डिजर्व करता है। कई बारी अवार्ड जो हैं वो ऐसे वक्त पर मिलते हैं जब आपके अंतिम चरण में आप इतना कुछ काम करके गवर्नमेंट आपके रिकग्नाइज करती है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। इंसान इस दुनिया में जीता है कुछ कारणों से, जिनमें से वो उम्मीद करता है कि उसके काम किए गए कार्यों का एक उसको शाबाशी दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, लेकिन जब मिलती है तो एक अच्छा एहसास होता है। और मोर देन आपके अपने लिए वो एक एहसास आपके बच्चे जो आपके साथ में आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिनका गौरव रहा है, आपके पिताजी, आपके माता जो जिन्होंने आपको बड़े होते हुए देखा और उम्मीद करते हैं कि उनका उनके बेटे को कुछ ऐसा अवार्ड मिला जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, तो एक काफ़ी गौरव और गर्व की बात होती है। सो जैसे हम कहते हैं कि रिसीविंग द मेडल वॉज अ डीपली हम्बलिंग रिकॉग्निशन, एन ऑनर इज नेवर अ रेस्टिंग पॉइंट, इट इज़ अ रीअफर्मेशन ऑफ द ट्रस्ट दैट पीपल हैव इन यू। चाहे वो आपके जवान हों, चाहे आपके बच्चे हों, आपके माता पिता हों, आपके रिश्तेदार हों, सबको एक उम्मीद रहती है। और इट सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द डेडिकेटेड सोल्जर्स एंड द टीम्स हुज कलेक्टिव एफर्ट मेड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। तो सभी का इसमें एक विश्वास था, एक ऐसी कोशिश थी कि सब ने मिलकर आपको उस पैगाम तक पहुंचाया जिसका आप खुद जिम्मेवार तो थे, लेकिन आपके पीछे जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका मैं शुक्रगुजार हूं। एंड द अवार्ड रीइन्फोर्स्ड माय कमिटमेंट टू कंटिन्यूस ड्यूटी इंश्योरिंग दैट एवरी सब्सिक्वेंट डिसीजन प्लान एंड मेंटरशिप एफर्ट रिफ्लेक्टेड द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ द अवार्ड दैट आई गॉट। सो माय सिंसियर थैंक्स टू एवरीवन हु ओवर द इयर्स वाज देयर विद मी इन गेटिंग एंड अचीविंग व्हाट आई फाइनली अचीव्ड।
1: जी बहुत खूब बहुत खूब। ग्रैटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी जीने का सलीका इस बात से पता लगता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं। और आपकी कृतज्ञता फोर्सेस की तरफ, अपने अवार्ड्स की तरफ, और आपने जितने भी कार्य किए हैं आज तक उनकी तरफ आज इस शो के माध्यम से हमें सुनाई दी, और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिली। एक व्यक्ति जिसका जिक्र ना हमने अभी तक नहीं किया, या बेटर हाफ, शायद उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। क्योंकि कहते हैं कि एक ऑफिसर को ऑफिसर एक माता पिता बनाते हैं, उसके अंदर वो संस्कार उसमें जीवंत रखते हैं, हमेशा उनके साथ भी उनके बाद भी हमेशा रहते हैं, लेकिन स्पाउस उन्हीं संस्कारों को आगे लेकर चलती है। आपके पीछे बहुत बार उन्होंने घर को संभाला होगा, कंप्लेन भी नहीं की होगी, लेकिन इससे पहले ये मुझे बताइए कि आप उनसे मिले कैसे थे।
0: आपने एक अच्छा सवाल पूछा। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ वूमन, एंड अनडाउटेडली इट हैज़ बीन माई वाइफ हुज़ नेम इज़ प्रीति। और जो गुड पार्ट है वो ये है कि हमारे जो दोनों के पेरेंट्स थे वो फौज में कोस्टमेट्स थे जो नेवी में साथ में आए, और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। और भाग्यशाली रहे कि हम आपस में हमारी शादी हुई और हमने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जिया, और जो भी मैंने हासिल किया उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरी बेटर हाफ प्रीति का था। एंड शी इज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर वॉट एवर आई एम टुडे, एंड माई चिल्ड्रन हु निहारिका एंड आर्यन हु बीन वंडरफुल एंड दे स्टूड लाइक रॉक बिहाइंड मी इन एवरी गुड और बैड पैटर्न्स ऑफ लाइफ, एंड इन द एंड इट वॉज एन अचीवमेंट विच आई कांट थैंक लेस टू दीज पीपल। And Preeti is now remains my biggest critic, but the kind of lessons that she's given me is something which is which I won't have done on my own. And मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भगवान ने अच्छी बच्चे दिए, अच्छी पत्नी दी, माँ बाप पेरेंट्स ने जो हौसला दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो हर माँ बाप अपने बच्चे में देखता है, हर वाइफ हर हर हस्बैंड अपनी वाइफ में देखता है, और अपने बच्चों को आँख में आँख मिलाकर उम्मीद करता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज यहाँ तक पहुँच पाए।
1: बहुत खूब। और एक ग्रैटिट्यूड हमारी तरफ से तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं और आपको सल्यूट कर रहे हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जय हिंद यहाँ पर लिखकर भेजा है। बीके दत्त कॉलोनी से शबनम ने, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: से प्यार देते हैं हमारे फौजियों को, काबिल तारीफ है। संदेश यहाँ पर भेजा है नुसरत अली ने, और संदेश हमें हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भी आया है जोया का, और ये आपके करेज को सलाम कर रही हैं, सलाम कर रहे हैं यहाँ पे आहिल अली बीकानेर से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। यश शिंदे ने हमें संदेश भेजा है मुंबई से, और संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं। ये हैं धारा शिव महाराष्ट्र से, यशवंत इनका नाम है। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद इद्रिस ने संदेश भेजा है, और संदेश भेजने वाले बहुत से दोस्त हैं। कुछ दोस्त भी पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम अलग सेशन आपके लिए ज़रूर आयोजित करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश से अजय का हमारे पास संदेश आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। मैं बस एक बात कहूँगी, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, बट वंस अ मिलिट्री इंजीनियर इज ऑल्सो अ मिलिट्री इंजीनियर फॉर एवर। ये बात सच है ना?
1: बिल्कुल दुरुस्त है,
0: और इसीलिए इन्होंने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और ये कहेंगे कि इनकी इंजीनियरिंग आज तक कायम है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कहां कैसे इन्होंने आपके लिए आपका कोई सपना साकार कर दिया। अगर मन में ये बात आए तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो फौजी हैं, फौज में रहकर भी और फौज के बाद भी आपके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। अब ये एक नगमा एफएम रेनबो की तरफ से, हम एफएम रेनबो का क्रेडिट ले रहे हैं, हम प्रीति मैम को ये डेडिकेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद,
0: जय हिंद।

मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं बुंदेली गीत। कलाकार हैं राम कुमार प्रजापति।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती की गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं बुंदेली गीत। कलाकार हैं राम कुमार प्रजापति।

धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राम कुमार प्रजापति और साथियों का गायक गीत। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का प्रोग्राम युवावाणी।

0: आगाज इन पंक्तियों से करना चाहूंगी दोस्तों कि सेहत को अपनी ताकत बनाओ, हर दिन खुद को और बेहतर बनाओ, सफलता मिलेगी जरूर, खुद पर विश्वास करके अपनी पहचान बनाओ।
1: स्वागत करती हूँ दोस्तों आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में। आज के कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपकी ये दो रेडियो साथी, मैं शिवांगी
0: और मैं जयशालिनी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
6: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए
9: 0542227658।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें
10: 0542227658।
11: शिवांगी, पता नहीं तुम नोटिस करती हो या नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ कि आजकल पढ़ाई, जॉब, कंपटीशन, फैमिली और सोशल मीडिया की भाग दौड़ के बीच ना हम भूल जाते हैं कि हमें अपना भी ध्यान रखना है और खुद को हेल्दी भी रखना है।
12: हाँ जयशाली, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, और सच कहूँ तो मैं खुद भी अपने खाने पीने पर और अपने हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं पाती। आज के समय में फिट रहना और मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम किसी काम को लेकर या किसी बात को सोचकर ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, उसका सीधा इफेक्ट हमारे बॉडी, हमारे हेल्थ और हमारे माइंड पर पड़ता है।
11: बिल्कुल सही कहा तुमने दोस्तों, हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा मन तनाव में है तो उसका असर हमारी नींद, पढ़ाई, काम करने की क्षमता और हमारे व्यवहार पर भी दिखाई देता है। इसलिए जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें समय देना चाहिए।
12: और इसीलिए दोस्तों, योग हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। लेकिन कई लोग योग को सिर्फ व्यायाम समझते हैं, लेकिन योग आखिर है क्या, उसे समझ क्यों नहीं पाते। तो जयशाली, तुम इसके बारे में एक्चुअल में पता है क्या होता है योग?
11: हाँ बिल्कुल शिवांगी, योग सिर्फ शरीर को मोड़ने या अलग अलग आसन करने का नाम नहीं है। योग में शरीर, श्वास और मन के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान दिया जाता है। आसन, प्राणायाम और ध्यान जैसी गतिविधियाँ हमारे शरीर को चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाती हैं।
12: तुम्हारी इसी बात को सुनकर मुझे अपने स्कूल की याद आ गई, जब हम स्कूल जाते थे, PT करते थे, जिससे कि सुबह सुबह हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती थी। लेकिन उम्र के साथ साथ हमारे डेली रूटीन में कितने सारे चेंजेस होने लगे, जिसपे हम अपने ना हेल्थ पे ध्यान दे पाते हैं और ना ही अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे पाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम कुछ भी करें लेकिन वो नियमित रूप से करें और उसे अपने दिनचर्या में शामिल करें।
11: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही तुमने। लेकिन आजकल युवाओं की जिंदगी में ना एक बहुत बड़ी समस्या है तनाव। फिर चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, परीक्षा का हो, या फिर नौकरी और भविष्य को लेकर कोई चिंता हो, ऐसे में योग किस तरह से हमारी मदद कर सकता है, जरा बताओगी शिवांगी?
12: मैं बताती हूँ ना, योग विशेष रूप से नियंत्रित श्वास और ध्यान यानी मेडिटेशन जैसी गतिविधियां व्यक्ति को कुछ समय के लिए अपने विचारों और शरीर पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती हैं। इससे मन को शांति मिल सकती है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि योग हर मानसिक समस्या का इलाज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बहुत ज़्यादा तनाव

0: उदासी या परेशानी महसूस हो रही है तो उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए।
1: ये तो तुमने सही बात बताई। कई बार ना हम अपनी परेशानी किसी को बता ही नहीं पाते हैं दोस्तों, और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या भी होती है। हमें ये समझना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे स्वास्थ्य का ही हिस्सा है। जैसे शरीर में परेशानी होने पर हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, वैसे ही मन से जुड़ी परेशानी होने पर हमें मानसिक चिकित्सक से सलाह लेना बिल्कुल सामान्य बात होनी चाहिए।
0: और दोस्तों, जैसा होता है ना कि सुबह हम उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, पूरे दिन मोबाइल या कंप्यूटर पे काम करते हैं, पढ़ाई या नौकरी करते हैं, और रात में देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो क्या ये दिनचर्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है जयशाली?
1: बिल्कुल डालती है शिवांगी। और दोस्तों, लगातार स्क्रीन पर रहना, पर्याप्त नींद न लेना, शारीरिक गतिविधि कम करना और हर समय सोशल मीडिया से जुड़े रहना हमारे आराम और ध्यान पर असर डाल सकता है। इसलिए दिन में थोड़ा समय मोबाइल से दूर रहिए, खुली हवा में टहलिए, पर्याप्त नींद लीजिए और अपने पसंद का कोई भी एक काम यानी अपनी हॉबी को जरूर करिए।
0: बिल्कुल, यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए सिर्फ योग ही नहीं बल्कि हमें अपने डेली शेड्यूल को भी बैलेंस रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि योग एक अच्छा माध्यम इसके लिए हो सकता है, लेकिन इसके साथ अच्छी नींद, संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत और अपने लिए भी थोड़ा सा पर्सनल यानी जिसे हम मी टाइम कहते हैं वो भी निकालना जरूरी है।
0: बहुत सही कहा तुमने जयशालिनी। अब अगर कोई व्यक्ति योग करना चाहता है लेकिन उसे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो उसके लिए तुम कुछ बता पाओगी?
1: बिल्कुल बताऊंगी। सबसे पहले तो उसे आसन और सुरक्षित तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। योग किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से सीखना अच्छा रहेगा दोस्तों, खासकर अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो। शुरुआत में सरल आसन, हल्की स्ट्रेचिंग, सामान्य श्वास अभ्यास और थोड़े समय का ध्यान किया जा सकता है। शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालना भी जरूरी नहीं है।
0: अच्छा, तो जयशालिनी, क्या योग करने के लिए कोई निश्चित समय होता है या फिर हम किसी भी टाइम योग को कर सकते हैं?
1: शिवांगी, वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई एक समय फिक्स नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि हम सुबह या शाम में ही करें, बट अगर हम सुबह का समय किसी के लिए सुविधाजनक लगता है तो वो सुबह कर सकता है, और अगर किसी को शाम में बेहतर लगता है तो वो समय अभ्यास कर सकता है। असल बात यह है ना कि नियमितता यानी कंटिन्यूटी और सही तरीका बहुत जरूरी है।
0: अच्छा जयशालिनी, तुमने एक शब्द पे बहुत फोकस किया जो है नियमितता, क्योंकि हम अक्सर कोई काम करने की आदत शुरू करते हैं तो कुछ दिन उसे फॉलो करके फिर भूल जाते हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही बात कही, और ये हम युवाओं की ना सबसे ही मतलब कह सकते हैं खराब आदत है कि हर काम को शुरुआत में तो हम लोग बड़ी ही एनर्जी के साथ करते हैं कि अरे अरे बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर जहाँ 3-4 दिन बीतता है वो काम ऐसे स्लो पड़ता है, अरे चलो कर लेंगे ना। इसलिए दोस्तों, ज्यादा देर समय न लेकर रोज केवल 10 से 15 मिनट का समय निकालिए योग और ध्यान के लिए, और धीरे धीरे जब ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए ना तो हम इसके कंटिन्यू करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।
0: हाँ, ये भी है, लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है।
1: ओहो, तुम तो सवालों की पुड़िया हो।
0: क्या करूँ, योग की बातें हो रही ना तो मुझे और भी जानना है इसके
1: अच्छा
0: बारे
1: चलो
0: में।
1: पूछो फिर।
0: अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है और उसे लगता है कि वो अपनी समस्या अकेले संभाल नहीं पा रहा, तो उसे क्या करना चाहिए?
1: तो सुनो, और दोस्तों आप भी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उसे अकेले सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है, वह अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बातें कह सकता है। अगर परेशानी बनी रहती है तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेना जरूरी है।
0: बिल्कुल, और हमें अपने आसपास के लोगों की भी बात सुननी चाहिए, है ना? कई बार कोई व्यक्ति सिर्फ इतना चाहता है कि बस उसे कोई सुन ले, उसे कोई जज ना करे।
1: ये तो सही कहा। कभी-कभी ना अगर हम दोस्तों किसी की बात सुनकर भी उनकी बिना बोले बिना कहे बहुत ही मदद करवाते हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। किसी की परेशानी का मजाक नहीं बनाना चाहिए और नहीं यह कहना चाहिए कि इतनी सी बात है भाई, भूल जाओ इसे। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं दोस्तों।
0: ये तो बिल्कुल जेन्युइन बात कही है तुमने जयशाली। हर इंसान को कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसे सुने, उसकी परिस्थितियों को समझ कर उसका साथ दे। दोस्तों, जयशाली की बात को सुनकर मुझे तो समझ आ गया कि योग केवल शरीर को सक्रिय रखने का नहीं बल्कि अपने मन और शरीर के साथ जुड़ने का एक तरीका भी हो सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना रोज की छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है, जैसे समय पर सोना, थोड़ा चलना फिरना, योग और ध्यान करना, परिवार और दोस्तों से बात करना।

0: अपने लिए समय निकालना और जरूरत पड़ने पर मदद भी लेना, हिचकिचाना नहीं।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों आज से हम अपने लिए एक छोटी कोशिश तो कर ही सकते हैं, ताकि
0: बिल्कुल
1: हम फिट एंड फाइन रहें और रोज कुछ समय अपने शरीर और मन के लिए निकालकर योगा करें, और साथ ही अपने परेशानियों को मन में दबाकर रखने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके उस समस्या का समाधान ढूंढें।
0: और इसके साथ ही एक और बात है शिवांगी, अपने आप में हमको अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जैसे सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी कहानी नहीं होती दोस्तों, अपनी गति से आगे बढ़ना भी सफलता का ही एक हिस्सा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर लाइन कही है तुमने। तो दोस्तों, स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन भी हमारी जिम्मेदारी है। योग अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों के लिए भी संवेदनशील बने। और याद रखिए, खुद का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरत है।
0: अब दोस्तों, इन सारी जानकारियों को बातों को ध्यान में रखते हुए अब आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, अब बारी आ गई है हमारे शब्दों के भंडार में से आज के शब्द को जानने की। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का शब्द, जो कि है अभ्यर्थना, जिसका अर्थ होता है निवेदन, प्रार्थना या अनुरोध करना। और इसे वाक्य में हम कुछ यूं कह सकते हैं, मैं आपसे अभ्यर्थना करता हूं कि कार्यक्रम में समय पर उपस्थित हो। या फिर कुछ यूं भी कह सकते हैं कि हम सभी को स्वच्छता बनाए रखने की अभ्यर्थना करते हैं।
1: और दोस्तों, साथ ही हमारा आज का इंग्लिश का वर्ड है सरकमस्पेक्ट, जिसकी स्पेलिंग है CIRCUMSPECT, जिसका अर्थ होता है सावधानी बरतना, सतर्क रहना या सोच समझ कर निर्णय लेना। और इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड थ्रू एन एग्जाम्पल। वी शुड बी सरकमस्पेक्ट वाइल शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। या फिर द मैनेजर वॉज सरकमस्पेक्ट अबाउट मेकिंग प्रॉमिस टू द क्लाइंट। या फिर कुछ यूं, शी गेव अ सरकमस्पेक्ट आंसर टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन।
0: तो शिवांगी, एक बात बताओ मुझे कि क्या तुम्हें घूमना फिरना पसंद है?
1: अरे बिल्कुल जयशाली, ये भी कोई पूछने वाली बात है। घूमना फिरना किसे नहीं पसंद है। मुझे तो नई जगह पर जाना, नए नए ड्रेसेस ट्राई करना, नई जगह एक्सप्लोर करना और मेमोरीज क्रिएट करना, बिल्कुल बहुत पसंद है ये तो।
0: अब घूमना पसंद है तो ये बताओ कि तुम अपने सफर में समय कैसे बिताती हो, उसके लिए क्या क्या करती हो समय बिताने के लिए?
1: सुनो, उसके लिए तो मैं मोबाइल चलाती हूँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ और कब हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं पता भी नहीं चलता। वैसे तुम बताओ, तुम सफर में समय बिताने के लिए क्या-क्या करती हो?
0: मैं तो भाई गाने सुनती हूँ। और तुम्हें पता है, सफर के लिए ना मेरी एक स्पेशल गानों की लिस्ट है।
1: अच्छा, तो जरा हमें भी तो पता चले कि आप कौन-कौन से गाने सुनती हैं जयशालिनी।
0: बताऊंगी नहीं, सुनवाऊंगी। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं सफर की प्लेलिस्ट से मेरी पसंद का ये ट्रैक।

0: तो दोस्तों, सैर सपाटे के बाद हमें पता है कि अब आप किस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कल का सवाल और उसका सही जवाब देकर विनर्स कौन कौन बने। तो हमने कल आपसे सवाल किया था, हाल ही में हिमालयी क्षेत्र में आई बाढ़ की आपदा किस देश में हुई है? जिसका सही जवाब है नेपाल में, जहां हिम नदी या बाढ़ से भारी जान माल का नुकसान हुआ है। और इसका सही जवाब देकर जो विनर्स बने हैं उनका नाम है प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, रवि मौर्य ग्राम सिमरौल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अंकेश कुमार सिंह ग्राम नखरा चुनार मिर्जापुर से, इसी के साथ हैं जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, और रिंग रोड नर्मदा नगर से हैं सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, और प्रेमलाल वर्मा और ममताबाई वर्मा ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से।
1: तो दोस्तों, अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज का हमारा आपसे सवाल है कि हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की किस महिला वेटलिफ्टर ने सिल्वर मेडल हासिल किया है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों। हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की किस महिला वेटलिफ्टर ने सिल्वर मेडल हासिल किया है?
1: तो फटाफट इसका जवाब हमारे इंस्टा आईडी youth वाराणसी या फिर हमारे ईमेल आईडी youth@vns@gmail.com पर भेजकर बन जाइए विनर और सुनिए अपना नाम रेडियो पर।
0: तो दोस्तों, अब बारी है वापस अपने इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने की और जानने की कि क्या कुछ घटित हुआ था आज के दिन और किन-किन वजहों से क्यों खास बना आज का दिन।
1: 3 सितंबर यानी आज के दिन 1767 को चंगामा की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का सामना निजाम और हैदर अली की संयुक्त सेना ने से हुआ। यह संघर्ष प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था।
0: इसी के साथ दोस्तों, सन 1833 में बेंजामिन एच डे ने अमेरिका में न्यूयॉर्क सन अखबार शुरू किया था और इसे अमेरिकी पेनी प्रेस के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: 1886 में मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध हिंदी कवि का जन्म हुआ। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें खड़ी बोली का प्रथम महत्वपूर्ण कवि माना जाता है और साहित्य जगत में उन्हें आदर से ददा की उपाधि भी दी जाती है।
0: इसी के

0: साथ दोस्तों, कमलापति त्रिपाठी का जन्म 3 सितंबर यानी आज के दिन 1905 को हुआ था। कमलापति त्रिपाठी एक भारतीय राजनेता, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे संविधान सभा के सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और साथ ही में भारत के रेल मंत्री भी थे।
1: और 1923 में पंडित किशन महाराज विश्व प्रख्यात तबला वादक थे। इनकी गिनती तबले के बनारस घराने के अग्रणी कलाकारों में से की जाती है।
0: वर्ष 1976 में नासा का विकिंग 2 लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर आज ही के दिन उतरा था। यह मंगल ग्रह के अध्ययन के इतिहास में महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में से एक था। और अब बारी हमारी आज की रोजगार सूचना की, जो कि आई है भारतीय डाक विभाग से, जिन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS ऑनलाइन भर्ती अनुसूची द्वितीय जुलाई 2026 पदों पर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें कुल पदों की संख्या 23,757 है।
1: और इसी के साथ इसके ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं और इनकी अंतिम तिथि 19 सितंबर 2026 है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि आपको मैथ्स और इंग्लिश विषय के साथ कक्षा 10 यानी हाई स्कूल पास की सर्टिफिकेट यानी रिजल्ट को अपने स्थानीय लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। बाकी इससे जुड़ी जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट इंडियन पोस्ट GDSonline.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: वेबसाइट एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in। तो आइए अब इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देना है।
1: और दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के अवसर बढ़ाने, रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने, गरीब और जरूरतमंद लोगों तक विकास योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है। और इसी योजना के अंतर्गत आता है नई रोशनी योजना। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, नई रोशनी योजना, जिसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक महिलाओं के जीवन में जागरूकता और आत्मविश्वास की नई रोशनी लाना। इस योजना में महिलाओं के नेतृत्व, विकास, आत्मविश्वास, सरकारी योजनाओं की जानकारी और उद्यमिता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया गया।
0: हाँ, जैसे महिलाओं को सरकारी व्यवस्था, बैंक और अन्य संस्थाओं से जुड़ने, अपने अधिकारों को समझने तथा स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण और सहयोग देने की परिकल्पना की गई है। यानी नई रोशनी का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि महिलाओं को इतना सक्षम और आत्मविश्वासी बनाना भी था कि वे अपने परिवार और समुदाय के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
1: और दोस्तों, यह एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी है कि नई रोशनी सहित 5 पुरानी योजनाओं जैसे सीखो और कमाओ, USTTAD, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को अब PM विकास यानी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना में एकीकृत किया गया है।
0: दोस्तों, PM विकास के अंतर्गत कौशल विकास, शिक्षा, परंपरा, कला और एवं शिल्प के संरक्षण के साथ साथ अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व और उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो दोस्तों, इन योजनाओं का उद्देश्य है शिक्षा में सशक्तिकरण, कौशल से रोजगार और जागरूकता से आत्मनिर्भरता, क्योंकि जब हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तभी देश का विकास वास्तव में समावेशी बनता है।
1: जय शालिनी, घड़ी की तरफ भी देखो जरा, हमारा समय हो चुका है आपसे विदा लेने का दोस्तों। लेकिन जाते जाते हम आपसे एक जरूरी बात कहना चाहेंगे कि ऐसे छोटे कदम की जरूरत है जिसे हमारे पृथ्वी पर बहुत गहरा असर पड़े, और वो है पौधे लगाना।
0: और दोस्तों, आपको पता है कि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें छाया देते हैं, हमारी जैव विविधता को सहारा देते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाने में मदद भी करते हैं। इसलिए पौधा लगाना केवल एक दिन का काम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।
1: लेकिन दोस्तों, सिर्फ पौधा लगाना ही काफी नहीं है, उस पौधे की देखभाल भी करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। उन्हें नियमित पानी देना, उन्हें खाद देना, सुरक्षा और उचित देखभाल भी करना चाहिए। एक पौधा आज लगाएंगे, कल हरियाली पाएंगे, प्रकृति का रखेंगे ध्यान, तभी बनेगा सुंदर हिंदुस्तान।
0: इसी के साथ दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों दीजिए अपने रेडियो साथी मैं यानी शिवांगी और
1: जय शालिनी को
0: इजाजत।
1: इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युववाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने वहां के वाराणसी
1: के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य लक्षण वाले मरीज चिकित्सकीय सलाह के अनुसार घर पर आराम और सेल्फ आइसोलेशन करें, जबकि गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाए। समाचार कक्ष से अरुण।
0: भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी का त्योहार बिहने धूमधाम से मनावल जायी। ओझा जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके कई गो लीला के जीवंत कैल जायी। ईशो बिहने रात करीब 9 बजे से शुरू हुई। यह बिच्चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा जिला के दौरा पर पहुंचलें। ओजा वहां के करीब 1051 करोड़ रुपया को 229 विकास परियोजनन के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेने हमारे मथुरा प्रतिनिधि।

0: बतौने कि जन्माष्टमी त्योहार के देखत ओजा प्रशासन सुरक्षा का पुरहर इंतजाम कैले हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को पहला मुख्य कार्यपालक अधिकारी आ पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा आज अयोध्या पहुंचले। ओजा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अपने स्वागत के बाद मीडिया से बतियावत वहां के चयन समिति के धन्यवाद देनी।
1: ये चयन समिति का धन्यवाद है, ट्रस्ट का धन्यवाद है और प्रभु श्री राम की कृपा है। माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड आई कंसिडर माई सेल्फ द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन टूडे टू हैव बीन गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्वाइस इन माई लाइफ। एक बार राष्ट्र सेवा के लिए और अभी श्री राम के मंदिर की और श्री राम भक्तों के लिए मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के।
0: चित्रकूट जिला के करवी थाना क्षेत्र के बराज गांव में काल रात पहाड़ी के नीचे मकान के दीवार गिर गईले से ओकरे मलबा में दब के दुई गो लइकन के लेके तीन जने के मौत हो गई। हमरे चित्रकूट प्रतिनिधि बतौलन कि लगातार हो रहल बरखा के बीच भइल ए हादसा में घायल महिला और ओकरे बच्ची के इलाज बदे अस्पताल में भर्ती करा दिया गई बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज शाम 7:30 पर महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भारत बनाम हांगकांग क्रिकेट मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं विषय पर डॉ ऋषभ कुमार मौर्य और रामकृष्ण मिश्रा की बातचीत के अलावा सुनिएगा अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गाया लोकगीत। शाम 7:00 संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ महेश झा की वार्ता का प्रसारण होगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें, कल यानी 4 सितंबर सन 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात 11:10 पर श्री द्वारकाधीश मंदिर और श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सजीव प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में बैंगन की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत आप सुन सकते हैं प्रातः 6:10 पर कार्यक्रम आराधना के अंतर्गत। प्रातः 6:25 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम में बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ की 145वीं कड़ी का प्रसारण होगा। वाचन और प्रस्तुति अरुण पांडे की होगी। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर और दिन में 12:45 पर सुनिएगा वी अनंत रमन का वायलिन वादन और रात 10:30 पर आप सुन सकते हैं अमरनाथ मिश्रा का सितार वादन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12:00। दिन में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम के कलाकार होंगे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और रात 8:00 आप सुन सकते हैं आशा भोसले की गायक गजलें। दिन में 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में काव्य रस में कृष्ण भक्ति विषय पर प्रोफेसर माधवी तिवारी की वार्ता के अलावा सुनिएगा गीत संगीत। युवा साथियों का प्रोग्राम युवा वाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर।

0: शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों के अलावा सुनेगा जन्माष्टमी पर्व का आध्यात्मिक महत्व विषय पर डॉक्टर शरद कुमार पांडेय की वार्ता। खेल चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 10 बजे। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटी से अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 0542227658।
1: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म गुमराह से। आवाज आशा भोसले और महेंद्र कपूर की है। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत रवि का है।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारत बेल्जियम देशयोः व्यापारो द्विगुणी भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना बेल्जियम मन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यनेन सह नवदेहल्यां विहिता शिखर वार्ता। रक्षा क्षेत्रे नवीकरणीय ऊर्जायां च हस्ताक्षरंगताः प्रमुखाः सन्धयः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन बेल्जियम मन्त्रिणा थियो फ्रेडकन इत्यनेन सह क्षमता निर्माणाय कृता मन्त्रणा। न्यूयॉर्क नगरे समायोजितायां गोष्ठ्यां वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितम्। तया कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रे सूचना संग्रह केन्द्रेषु च भारते विद्यमानानां संभावनानां विवरणं प्रस्तुतम्। अपि च किदाम्बी श्रीकान्तः चीन मास्टर्स बैडमिंटन स्पर्धाया अन्तिमाष्ट चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत बेल्जियम देशाभ्याम् अद्य रक्षा सहयोग विषयकेन आशय

0: पत्रेण साकं नवीकरणीय ऊर्जा अन्ताराष्ट्रिय अपराध दमनम् राजनयिक प्रशिक्षणम् चेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यमुना सह द्वैपाक्षिकीं मन्त्रणाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र पक्षैः सह परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयानां विशदतया समीक्षां विहितवन्तौ। स्वकीये वक्तव्ये प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् सम्पूर्णं विश्वं महतः विप्लवस्य संघर्षस्थितेश्च कालखण्डेन गच्छदस्ति। खाद्य इन्धन आपूर्ति श्रृंखलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु अनिश्चिततायाः प्रभावो दृश्यते, किन्तु एतादृशे काठिन्यमये वातावरणे अपि भारतस्य अर्थव्यवस्था स्वकीयां गतिशीलतां रक्षयति। विगत त्रैमासिके भारतेन 7.8% आर्थिक वृद्धिः समंकिता। सः न्यागादीत् यत् भारतस्य विकास यात्रा अद्य विश्वस्य कृते विश्वासस्य नूतनावसराणां च स्रोतभूतो विद्यते।
1: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
0: सेमीकंडक्टर क्षेत्रे बेल्जियम देशस्य विशेषज्ञता अथ च भारतस्य विपुल विस्तारः परस्परं पूरकौ स्तः। अस्मिन् सन्दर्भे बेल्जियम देशस्य आईमेक संस्थानं भारतस्य सेमीकंडक्टर परिवेशेन सह संयोजयितुं कार्यं करिष्यति। अपरत्र बेल्जियम प्रधानमन्त्री बार्ट डी वेबर भारतं विश्वस्य बृहत्तम लोकतांत्रिक देशत्वेन तीव्रतम प्रवर्धमान अर्थव्यवस्था रूपेण च श्लाघमानः प्रमुख वैश्विक महाशक्तित्वेन च अभिहितवान्। इतः प्राग् अद्यैव रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः स्वसमकक्षेन बेल्जियम रक्षामन्त्रिणा थियो फ्रेडकेन इत्यमुना सह शिष्टमण्डल स्तरीय वार्ताम् अकरोत्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः न्यूयॉर्क नगरे वैश्विकानां उद्योगपतीनां गोष्ठ्यां भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितवती। सा अवोचत् यत् प्रथमे त्रैमासे 7.8% विकासेन भारतमद्य अपि विश्वस्य द्रुततम वर्धमाना अर्थव्यवस्था अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मार्गदर्शने कृताः आर्थिक परिष्काराः व्यापार सुगमतां वर्धितवन्तः। वित्तमन्त्रिणा वैश्विक अनिश्चिततासु अपि भारतस्य वित्तीय अनुशासनस्य प्रतिबद्धता दृढीकृता। वाराणसी संसदीय क्षेत्रे वर्धमान जलौघं विलोक्य प्रधानमन्त्री मोदी मण्डलाधिकारिणं दूरभाषेण आहूय सकलां स्थितिं पप्रच्छ। तेन आपद उद्धार कार्याणि त्वरितुम् आदेशो निर्गतः। अन्यत्र उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रिणा योगिना फरुखाबाद मण्डले आप्लाव विभीषिकां समीक्षितुम् आकाशीय यात्रा विहिता। पीड़ित जनेभ्यः च भोजन वैद्यकीय सहायता प्रदानाय निर्देशो दत्तः। केन्द्रीय गृह सचिवः गोविंद मोहनः अद्य हिमालयीय राज्यानां अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनं कृतवान्। तेन हिमसरोवराणां विस्फोटेन सम्भाव्यमान जलाप्लावनस्य हिमस्खलनस्य च विपद सम्मुखीकरणाय सतत सतर्कता पालनाय निर्देशो दत्तः। सचिवेन संसूचितं यत् आपद प्रबन्धन दलैः संकटग्रस्त क्षेत्रेषु 24 होराः तीव्र दृष्टिः स्थापनीया। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com.

0: www.jiovi.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः श्वः नवदेहल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चस्य आयोजनं विधास्यति। अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स देशानां तथा सहयोगी राष्ट्रानां मुख्य न्यायाधीशाः सहभागिनो भविष्यन्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटन दिवसे रूस चीन इजिप्ट इंडोनेशिया देशानां न्यायिक नेतृभिः सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। अस्याः गोष्ठ्याः मुख्यम् उद्देश्यं न्यायवितरणे प्रौद्योगिकी उपयोगं तथा अन्ताराष्ट्रिय विवाद निवारणं प्रति सहकार्यं वर्धयितुम् अस्ति। पाटलिपुत्रे गंगा नद्याः जलौघः विपद सूचक रेखाम् अतिचक्राम। अनेन राज्यस्य नूतनेषु भागेषु आप्लाव संकटः आपतितः। देशस्य विभिन्नेषु राज्येषु ऋतु विज्ञानेन वृष्टि परा संचेतना प्रख्यापिता। पूर्व मध्य प्रदेशे श्वः अतिवृष्टेः संभावनाम् अधिकृत्य ऑरेंज अलर्ट इति संचेतना च निर्गता। सहैव तावत् बिहार उत्तराखंड समेत्य सप्त राज्येषु मेघगर्जनैः वज्रपातैः च सह अतिवृष्टिः भविष्यतीति पूर्वानुमानं प्रकटितम्। केन्द्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् भारतीय रेलवे विभागेन वहन क्षमता वृद्ध्यै संकेतन प्रणाल्याः उन्नयनाय अथ च स्वयंचालित द्वार सौविध्य युक्तानां उपनगरीय रेलयानानां प्रचालनार्थं सुव्यवस्थितं कार्यं विधीयते। सः अवोचत् यत् मुंबई नगरे संप्रति 18,000 कोटि रूप्यकाणां रेलवे परियोजनानां कार्यं प्रगतिपथि वर्तते। श्री वैष्णवः अद्य नवदेहल्याः आभासीय माध्यमेन मुंबईतः सिंधुदुर्ग पर्यन्तं गच्छतः द्रुतगामी रेलयानस्य हरित पताका प्रदर्शन समारोहं संबोधयन् आसीत्। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् पूर्व पश्चिमयोः समर्पित वस्तु वाहन मार्गौ जवाहरलाल नेहरू पत्तनात् देशस्य अन्य भागेषु वस्तु परिवहनं सौविध्ययुतं विधाय महाराष्ट्रस्य औद्योगिक विकासं भृशं सुदृढयिष्यति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय बैडमिंटन क्रीडकेन किदाम्बी श्रीकांतेन चीन मास्टर्स स्पर्धायां विजय पताका उच्छ्रिता। तेन विश्व वरीयं विक्टर लाई इत्यमुं पराजित्य चतुर्थांश अंतिम चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

0: बोला
1: हेलो
0: भैया,
1: भैया
0: जय
1: जवान,
0: जवान
1: जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान।
1: और नंदू भैया,
0: बुझाओन भैया, कुल ठीक बा? अपन बताओ भैया।
1: भैया अपनो ठीक है बा? खेती बाड़ी के काम तो धीरे धीरे निपटते बा। और
0: और देखा हो का कि खेती किसानी अपन एक तरह से देखल जा भैया संकल्प हो। ये संकल्प के हमहन के पूरा करे के होला, चाहे कौनो भी समय आ जाए, चाहे खरीफ कर रहे, चाहे रबी कर रहे, चाहे जायद कर रहे भैया।
1: संकल्प के बात कैला हा नंदू भैया ना, चाहे खेती किसानी के काम हो, चाहे पशुपालन के काम हो, चाहे और कोनो काम हो, बिना संकल्प के नहीं पूरा
0: ना
1: होला।
0: होके। हाँ अब भैया देखा, खेती किसानी अपन तो भाई मांगेला मेहनत,
1: बिल्कुल
0: आ मेहनत के साथे साथे आज समय

0: जमाना बदलल ह। तो आज के घड़ी में देखल जाए तो बड़ा विज्ञान प्रगति के लिए भैया आ विशेषज्ञ लोग तमाम तरह का कुल तरीका बतावत हुआ कि कौने तरीके से जौन है खेती किसानी अपन फायदे का सौदा हो सकत
1: अच्छा, एक चीज और है नंदू भैया,
0: उका भी।
1: देखा तोहरे पास चाहे हमारे पास चाहे किसान भाइयन के पास कितनों ज्ञान हो जाए, और जितना ज्ञान है वो ज्ञान के अगर बटिहे ना तो दूसरे के फायदा नहीं मिली। अब वैसे
0: बिल्कुल
1: हमारे कृषि वैज्ञानिक भैया लोग बड़े तरह तरह का विकसित चीज बनावत बना, जैसे अब दवाई भेल, जैसे संकर बीज भेल, तो वो व्यवस्था के, वो बीज के, वो दवाई के जब तक अपने किसान भाइयन तक ना पहुंची तब तक कोनो मतलब नहीं भाई।
0: बिल्कुल भैया, वो रखले से का होई, रखल रखल खराब हो जाई एक दिन, आ इस्तेमाल में ना आई तो ओकर लाभ ना हा।
1: अच्छा, यही व्यवस्था के सोच करके अपन भारत सरकार जवन है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मिल करके
0: अच्छा।
1: जानत हुआ विकसित कृषि संकल्प अभियान चलौलस, जौने में कि गांव गांव किसान भाइयन के साथ चौपाल लगा करके कृषि के जो नई नई तकनीकी या नवाचार बा वो कि किसान तक पहुंचावत बाड़ा।
0: ए भैया हो देखा, खेती किसानी में ही चौपाल का काम बड़ा महत्वपूर्ण बा भैया।
1: अच्छा
0: जब चार लोग जुटना, आपन बात एक दूसरे से कही ना कि भाई हम अपने खेती में का चीज़ इस्तेमाल करत है, हम कौन
1: बिल्कुल
0: नया तकनीक लगावत है,
1: बिल्कुल
0: या हम कौने विशेषज्ञ से संपर्क कैली जो हमें खेती किसानी में का का नई चीज आ गए ओकरे बारे में बताऊना। तो ऐसे ही धीरे धीरे जानकारी भैया सबके हो जाला जे जे ओमा शामिल होई।
1: अच्छा, एक चीज और है,
0: वो कहा
1: ये जो विकसित संकल्प अभियान चलल है भैया ना, एकर एक मुख्य उद्देश्य यो रहा कि प्रयोगशाला में जौन भी हमारे कृषि वैज्ञानिक या कृषि विशेषज्ञ भैया तैयार करत हुए
0: हाँ।
1: ओके खेत तक पहुँचावे का पूरा जिम्मेदारी उठौना,
0: अच्छा, ये भैया हो देखा
1: तो बाय ना
0: असली
1: बढ़िया चीज ही।
0: बहुत बढ़िया चीज़ बा भैया। आ देखा असली काम तो ओकर खेते में हुई,
1: बिल्कुल हुई,
0: जब जैसे प्रयोगशाला में रखले से ना हुई, जब ओकर असली प्रयोग अपने खेत में हुई कि ओकर इस्तेमाल कैले से फसल पर का असर पड़त है, आ उत्पादन में का असर पड़त है, लाभ कितना किसान के होत है, ई मायने रखत है
1: अच्छा,
0: भैया।
1: एक चीज और होला,
0: वो कहा
1: जो
0: भैया।
1: गांव में ये विकसित कृषि संकल्प अभियान के जो चौपाल लगेला भैया ना जानत हुआ, तो ओमन किसान भाइयन से और कृषि विशेषज्ञ और कृषि वैज्ञानिकन से सीधा संवाद होला, मतलब फसल में माटी में कोनो प्रकार के समस्या बा तो ओकर सीधे अपने कृषि विशेषज्ञ भैया से लोग पूछेला, एकर निदान भी मिलेला,
0: ए
1: तो बढ़िया
0: भैया
1: बा कि ना बा।
0: बहुत बढ़िया चीज़ बा भैया, और ऐसन अभियान तो हमेशा चलत रहे के चाहिए, आ किसान भाई लोगन के भी जागरूक होए के चाहिए कि भाई ऐसन अभियान के बारे में जानकारी एक दूसरे से लेवत रहें आ ओकर लाभ लें।
1: बिल्कुल। अच्छा ये भैया, हमन का बात बतकही तो होत रही, और आज तनी मौसम का भी बतकही हो जाए, तो आज
0: ओ
1: का मौसम का तनी जानकारी बताए दे।
0: तो मौसम के जानकारी में बुझावन भैया ये हो कि भाई अपने बनारस का जो अधिकतम तापमान रहल है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहल है, और भैया न्यूनतम जोन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहल। आ एकरे साथ ही जोन है चंदौली का भी 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम जोन है 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहल।
1: तो हम कुछ हम हूँ बताए दही
0: बताओ भैया।
1: भैया, गाजीपुर का 31 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही मिर्जापुर के भैया 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, आई करे साथ ही साथ भैया जौनपुर को जानते हो भैया
0: का
1: तीस
0: भैया।
1: डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
0: आ देखा बुझावन भैया, अपने एक किसान बाड़ी में जोन है आगे बहुत जरूरी बत कही अपन किसान भाई लोग सुनी है, लेकिन है जोन संदेश हो ना ए संदेश के अपने किसान भाई लोगन के सुनवा देवल जाए, तब बत कही सुनल जाए।
1: बिल्कुल सुनवा दें भैया।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं।

0: 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: सनेसा तो होगल हो नंदू भैया,
3: होगल। अब जो है ना, अपने किसान भाई लोगन के जोन जरूरी बताई रहल कि भाई का लाभकारी योजना किसान लोगन बदे चलत है, तो ये विषय पे डॉक्टर ऋषभ कुमार से बतिया ले थे, तो एक जोन है अपन किसान भाई लोग सुने।
2: बिल्कुल सुनवा दे भैया।
3: किसान भाई लोग, आज अपने किसान वाणी कार्यक्रम में आयल हुआ डॉक्टर ऋषभ कुमार, आप सहायक प्राध्यापक हुआ कृषि प्रसार में। तो डॉक्टर साहब, आज ये जानल चाहब कि भाई जो अपन किसान भाई खेती किसानी करत हुआ, तो उनके सरकार की तरफ से कौन कौन योजना है जेकर लाभ मुख्य रूप से मिलत हो, कुछ योजना जोन बाड़ी ओकरे बारे में आप तनी सी बतावें।
4: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और रेडियो के माध्यम से जितने भी हमारे किसान भाई माताएं बहनें सुन रही, उन सभी को नमस्कार। चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, लगातार किसानों के लिए तमाम योजनाएं समय समय पर ला रही है, और हम एक एक करके जो उनके लिए अनुकूल योजनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे अभी जो आधार कार्ड के तर्ज पर जिस तरीके से किसानों की एक आइडेंटिटी कार्ड बनाने पर काम चल रही है, उस पे हम चर्चा करेंगे। जिसे हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के नाम से एक योजना चल रही है
3: जी। तो ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन योजना जो आप कहते हो, तो ये क्या चीज है, एक बारे में तनी सी बताऊं।
4: सबसे पहला बात तो ये बहुत क्रांतिकारी योजना कहल जाए तो गलत ना हो, क्योंकि जैसे पहली चीज तो हम सब आधार कार्ड के बारे में जानते हैं, और वही तर्ज पर किसानन का भी एक कार्ड बने। उनमें कह रही कि जैसे किसान का जितनी जानकारी हो सकला, अब जानकारी का हुई, सबसे पहले उनके बैंक का डिटेल, आधार कार्ड का डिटेल, और खसरा खतौनी इस सब का जानकारी एक जगह। अब जब इतनी जानकारी एक जगह रही, तो इसे फायदा का हुई कि जो भी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उससे होने वाले जो लाभ हैं वो सीधे किसानों तक पहुंचेंगे।
3: अच्छा
4: जी।
3: तो का एक तरह से किसान आईडी की तरह ही रही?
4: हाँ, किसान 11 अंक जैसे आईडी मिली उनके, और ऐसे सीधे ओके हम एग्री स्टैक के तौर पे जान सकेला, तो पूरे देश में ही चलावल जाए, और ये बहुत क्रांतिकारी योजना है।
3: अच्छा, एक योजना है जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मतलब एकदम सबके किसान लोगों के घरे घरे ये योजना का लाभ हमें लगेला मिलत हुई, तो एक बारे में बताऊं मैं।
4: जैसे कि आप कहना कि गांव में बहुत प्रचलित बा, और हम सब जानते हैं कि समय चौन चलत बा, सितंबर का महीना चलत बा, और खरीफ और रबी दोनों फसल के बीच का जो समय कहा जाता है ये है, क्योंकि इस टाइम कुछ समय बाद अब किसान अपने फसलों को काटने के लिए तैयार हो जाएगा, और उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि भाई आने वाले जो रबी के महीने में कौन सी फसल उन्हें लेनी है, तो अब भाई इस टाइम पे उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है कि खाद है, बीज है, उसमें ये जो स्कीम है इसके तहत भारत सरकार हर किसानों को 6,000 रूपए सालाना देती है।
3: अच्छा।
4: और 3 किश्तों में, 2,000 रूपए के 3 किश्तों में ये किसानों तक पहुंचता है, और ऐसे समय में जैसा कि अभी कुछ टाइम बाद जब वो पहुंचेगा किसानों के पास, तो वरदान से कम नहीं है ये।
3: जी जी जी। तो अच्छा, पात्र एकरे बदे कौन किसान हो सकत है?
4: कोई भी किसान।
3: अच्छा।
4: हाँ, बस किसान का कुछ चीज उनके ध्यान देवे के चाहिए कि उनका केवाईसी रहे, बैंक से जो केवाईसी लिंक आजकल हो ऊपर उनके ध्यान देवे के चाहिए।
3: अच्छा, ये कुल चीज
4: डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचे।
3: एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो तो ये का है?
4: किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे कि अब हम सब आजकल तो बड़ा चलल बा कि क्रेडिट कार्ड का फैशन चाहे शहरों में भी खूब चलल बा, तो वैसे ही अब गांव में भी ये चलल बा कि होला क्या कि अब जैसे अब बतौली आपके कि रबी का महीना आवत हो, मान लगे किसान के बीज में खर्च तनी ज्यादा हो गए, खाद में कुछ ज्यादा पैसा की जरूरत पड़त बा, तो वो टाइम किसान किसी साहूकार के पास जाने के बजाय जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी के साथ
3: बैंक से जोड़े के पड़ी कि ऐसे ही हो जाए?
4: नहीं, बैंक से ही जोड़े के पड़ी। अच्छा। और खास बात एकर कहो कि जैसे 4% तक पर ब्याज दर रहला, आमतौर पर आप सुनिए कि 7% 8% तक भी रहला, लेकिन अगर कोई किसान अपन सही समय पर पैसा ब्याज वगैरह लौटा देवत बा, तो

0: मान के चले कि 4% वार्षिक ब्याज पड़ेगा और
1: अच्छा।
0: लगभग 1.6 लाख यानी 1,60,000 तक की लोन भी इस पे किसान ले सकते
1: तो माने एक तरह से इतना का क्रेडिट मिल जाए किसान को
0: आराम से,
1: उनके
0: आराम से।
1: जितना भी चाहिए खाद पानी जुताई का व्यवस्था ये कुल चीज बीज का व्यवस्था ये कुल कर सकत हुआ ऐसे।
0: एमन आपके एक चीज हम और बतावे चाहिए
1: जी
0: कि पहले तो ही किसानन बदे नहीं रहल, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से चाहे वो पशुपालन करत हुआ चाहे वो मछली पालन करत हुआ उसके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अब चालू हो गई
1: अच्छा, तो
0: है।
1: माने एक दायरा जो है बढ़ गया
0: जी
1: था।
0: अब एक दायरा बढ़ गया था।
1: माने ज्यादा से ज्यादा लोग इसे लाभ ले अब ले पाइए।
0: हाँ
1: किसान क्रेडिट कार्ड बा एक ठेक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना तो ऐसे लाभ कैसे मिला था किसान लोग के।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जोन बा अब सबसे बड़ा चिंता एक किसान के ही हो कि भाई पूरी जिंदगी आपन वो खपा देत बा लोगन का पेट भरे खातिर।
1: अन्नदाता के रूप
0: हाँ
1: में।
0: अब ओकरे बुढ़ापे का सहारा का यही जोन स्कीम बा एमन जैसे 18 साल से 40 साल कुछ पैसा 55 रुपया से शुरू होला। अब हर महीने आप 55 रुपया देते हुआ अब 60 साल बाद जितना भी पैसा जमा हुई ओकर दुगना सरकार आपके पेंशन के रूप में हर महीना 3,000 आपकी मिली।
1: अच्छा, तो माने ये एक निश्चित धनराशि मिली।
0: हाँ निश्चित मान के 36,000 रुपया सालाना आपके निश्चित। अब आजकल 55 रुपया में चाय पानी का खर्चा हो अब उतना आप दें आपके 3,000 कम से कम हर महीना दवा और जरूरी जो आवश्यकता है।
1: ये माने मिली 60 साल के बाद से शुरू
0: हाँ
1: हुई।
0: जी, 60 साल के बाद
1: तो ये हो किसान मानधन
0: मानधन
1: योजना।
0: योजना।
1: आ फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री के तरफ से चलावल गए हो का।
0: फसल बीमा योजना के अगर बात करल जाए तो हम सब जानते हैं कि नाम से ही समझ में आवत हो कि एमन फसल का इंश्योरेंस अगर हम एक सरल भाषा में समझी तो एक तरीके से सुरक्षा गार्ड हो। ठीक हो अभी आप देखते हो सितंबर का महीना चलत हो पिछले कुछ दिन से लगातार बारिश होता हो मान ला धान के लिए तो बेहतर है ही हो
1: जी
0: लेकिन बहुत अधिक बारिश भी हो जाए तो
1: वो
0: हाँ
1: नुकसान।
0: जाहिर सी बात हो नुकसान हो। और न सिर्फ बारिश अभी ठंड आई तो ओला का समस्या।
1: धान में मान ले अगर बाल लगल बा तब अगर होई तब तारू नुकसान हो जाए लौट
0: हाँ
1: जाए
0: और
1: कुल।
0: हाँ ये तो हुआ मक्का का धान का यह सब का सीजन बा तो एमन कहो कि सरकार द्वारा ही एक योजना चलाया गया कि भाई खरीफ का जोन फसल हो
1: जी
0: खरीफ के फसल बदिन महज 2% का प्रीमियम रबी बदिन 1.5% का प्रीमियम और जैसे आपका बागबानी का अगर आप खेती करते हैं तो करीबन 5% का प्रीमियम आप दें हैं और सरकार आपके एवज में 1 लाख रुपए तक अगर एक ऐसे समझे कि मान लो अगर आप 1 लाख रुपए के लोन सरकार आपकी मदद करे करी तो आपके महज 2,000 रुपया देवे एक तरीके आपकी सिक्योरिटी कवर सरकार
1: अच्छा,
0: देवेला
1: माने
0: बीमा।
1: जितना का बीमा ले ही ओकर 2% कुछ फसल पर दे
0: हाँ बस एक बार ओके
1: एक
0: देवेला।
1: बार
0: हाँ
1: आ कुछ बदे 1.5% माने 1,500 हो गल अगर 1 लाख ले था तो।
0: हाँ हाँ ये मौसम के हिसाब से इसे मान लें आप खरीफ हो तो खरीफ का हम बता दिली रबी हो तो रबी बदिन हम बता दिली।
1: रबी में तनी कम लगी।
0: हाँ रबी में
1: तो
0: और
1: माने ऐसे फसल का बीमा हो
0: हाँ
1: जाए
0: लेकिन एकरे बदिन एक चीज बहुत ध्यान देवे के जरूरत बा
1: का
0: किसान
1: चीज़।
0: भाइयन के कि 75 घंटा का नियम कहल जाला हम किसानन से लगातार बताइल अभी कि भाई 75 घंटा के अंदर आपके जो नुकसान भेल हो ओके संज्ञान में लेवे के हो खुद भी संज्ञान में लेवे के हो और बैंक हो चाहे आपका एक इनकर पोर्टल होला वेबसाइट होला या एप्लीकेशन होला फोन पे भी ऊपर आप फोटो के अपलोड कर देवल जाए तब ओके आपका जो संबंधित संस्था हो संज्ञान मिली और एकर आपके सुविधा मिली।
1: माने समय से जो ना एकर जानकारी संबंधित विभाग के दे देवे के बा
0: हाँ एकदम
1: ताकि उन्हें सूचना हो जाए कि भाई फला किसान का जो ना नुकसानी भेल
0: हाँ
1: है। तब जो ना एकर लाभ मिली बीमा योजना का।
0: और एमन भी डीबीटी के ही माध्यम से लाभ किसान तक पहुंच जाए। इसके अलावा एकरे अलावा भी हम सब देखते हैं कि अभी किसान बदिन एक योजना चलत बा एक जो आजकल यूथ हो जवान जे बीएससी एजी की पढ़ाई करते हुए लोग तो उनके बदिन एक बहुत खूबसूरत से योजना 2003-05 में हमारे ख्याल से तब से चलत हो एसी एबीसी।
1: अच्छा, वो का चीज है।
0: ओमन कहा हो कि जैसे जो

0: ग्रेजुएट्स होंगे उनके सब्सिडी भारत सरकार 33% के आसपास, अगर वो कुछ खुद से रोजगार करे चाहता हुआ तो ओकर बढ़ावा भी देता हो। तो सरकार लगातार कृषि के सशक्त करे में अपन पूरी कोशिश करत।
1: कृषि सिंचाई योजना जो चलावल जात है भारत सरकार की तरफ से, तो वो का चीज है?
0: कृषि सिंचाई योजना, जैसे कि हम लगातार अगर आप अभी भी खेतन में जाए तो आप देखें कि पानी जो देवे का माध्यम हो वो मेड़ से नाली से जाता है ना। तो इमन का हो तो कि पानी का भी नुकसान होता हो, पानी चलत बात तो बिजली का नुकसान होता हो और खाद भी लगातार नुकसान होता हो। तो ई चीज के बचावे खातिर अंग्रेजी में एक शब्द कहल जाला कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि एक बूंद पानी से भी जितना हो सके उतना हम उसको
1: ज्यादा से ज्यादा
0: यूटिलाइज
1: लाभ
0: करें।
1: ले।
0: तो ड्रिप इरिगेशन एक माध्यम हो, स्प्रिंकलर माध्यम हो, ई माध्यम से ए पर जोर देवल जाता हो सरकार द्वारा। अब जोर देवे का मतलब कि भारत सरकार चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो सब्सिडी देता हो।
1: अच्छा।
0: लगभग 45 से 55% तक का सब्सिडी मिलत बा, और कुछ कुछ राज्यों में तो लगभग 85-80% तक
1: अच्छा,
0: सब्सिडी पर मिलता
1: अपने
0: है,
1: उत्तर प्रदेश में कितना होगा?
0: लगभग 45 से 55% के बीच।
1: और कोनो योजना?
0: हाँ, अभी जैसे अब हम एक चीज बहुत लोगन के कही ला कि कहे हमेशा आप हम सब किसान भाइया नहीं कहना, जबकि आप खेत में जाइए तो सवेरे अगर फूल की खेती होती तो महिलाएं आपके दिखाई सवेरे फूल तोड़िया माला बनिया। हाँ, तो जरूरी हो कि किसान भाई माता बहन सब सब किसान है। तो भारत सरकार एकरे बदिन भी बहुत काम करत बा, जैसे एक नमो दीदी ड्रोन दीदी करके एक योजना हो। उमन का हो कि जैसे हम ड्रोन के बारे में कैसे चलावल जाला, ओकर ट्रेनिंग मिलेला और मुफ्त में ड्रोन मिलता और उस सिखावल जाला, और सीख के जो महिलाएं हैं किसान वो बढ़िया मुनाफा कमा रही हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ वर्षों से एक शब्द बहुत प्रचलन में चला है जिसका नाम है नैनो यूरिया। और नैनो यूरिया पहले तो हम पूरे बोरे के बोरे खाद लाते थे, अब छोटी सी बोतल में आपकी नैनो यूरिया आ रही है और ड्रोन के माध्यम से महज 7 से 8 मिनट में आपका जो काम पहले 4 घंटे 5 घंटे लगते थे उसमें आप पूरे खेत में आप यूरिया का छिड़काव कर दे रहे हैं
1: मन टॉप ड्रेसिंग के रूप
0: एकदम
1: में।
0: एकदम। और इसमें महिलाएं जिन्हें ड्रोन का संचालन करने बेहतर आता है वो बढ़िया कमा रही हैं, 15,000 20,000 बहुत सम्मान पूर्वक।
1: और योजना कौन डॉक्टर साहब?
0: हाँ, बहुत सारी योजना है। अब एक योजना आजकल बहुत चलत बा पीएम कुसुम योजना। हम सब जानते हैं कि ये टाइम सोलर पैनल का कितना क्रेज बा, तो वही से रिलेटेड एक पीएम कुसुम योजना है हो। जैसे कि मुफ्त में जोन नलकूप हो ओकरे बारे में ये योजना चलल हो। मेन एकर काम हो कि जो सोलर पंप हो ऊपर सब्सिडी हो, और ओकरे अलावा जैसे गांव में कई किसान के पास बंजर जमीन हो तो ऊपर अपन ये सोलर पूरा पैनल लगा दें, और सोलर पैनल लगा दें फिर ओकरे बाद का हो कि वहां से जो बिजली उत्पादन हो रहा है वो आप ग्रिड पर भेज देते हैं और उससे भी बढ़िया आय हो रही है। वर्ष में तो कई सारे ऐसे किसान हैं जो लाखों निकाल रहे हैं इससे।
1: अच्छा, ये सोलर वाले से तो वो कौन ही तरह से निकल जाते
0: प्रधानमंत्री
1: हैं?
0: कुसुम योजना, इसमें करना यह है कि जो आपने सोलर प्लांट लगाया है इससे आप जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो आप विद्युत केंद्रों पर भेज रहे हैं। हम सुनते हैं ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड ना, तो ये हम ग्रिड पर भेज रहे हैं बिजली।
1: तो ओकर पैसा मिल जाते हैं?
0: हाँ, पैसा मिलेगा।
1: माने ये तरह से बहुत सारी योजना जो नहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तरफ से किसान लोगन के मिलत हैं।
0: हाँ
1: जरूरत ये चीज कहो कि किसान जागरूक हों और ये योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेवे का प्रयास
0: जी
1: करें।
0: जी
1: तो आप अपने बीच में आईना, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देना डॉक्टर साहब, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत
2: भैया, किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं, डॉक्टर ऋषभ कुमार से भैया बड़ा फरिज फरिज बत कही बतियोला है, और डॉक्टरों साहब बड़ी निक निक जानकारी देना है। और एक चीज़ ये जो भाई, भारत सरकार की तरफ से चाहे प्रदेश सरकार की तरफ से तरह तरह के जितना योजना बा किसानों बदे, भैया
1: बहुत
2: बहुत
1: बहुत
2: बढ़िया
1: योजना
2: बात।
1: है बुझावन भैया, लेकिन बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ावे का।
2: बिल्कुल भैया,
1: अब जौन है ना, तनी अपने किसान भाई लोगन के आज का जौन बाजार भाव है ना
2: हाँ भैया,
1: ओके बतावल जाए बुझावन भाई।

0: तो भैया आज वाराणसी स्थानीय पहाड़िया मंडी में आज के जो बाजार भाव बा, सफ़ेद आलू 600 से 700 रुपया प्रति कुंटल,
1: अच्छा।
0: लाल आलू 1000 से 1100 रुपया प्रति कुंटल, प्याज 4000 से लेकर के 4500 रुपया प्रति कुंटल। और
1: अच्छा
0: भैया नंदू भैया तनिक तुहु
1: देखा
0: बताएगा।
1: परोरा का हम बुझावन भैया बता देते, यह 2400 रुपया से लेके 2500 रुपया प्रति कुंटल।

0: रुपया प्रति कुंटल, प्याज 4,000 से लेकर के 4,500 रुपया प्रति कुंटल। और
1: अच्छा
0: भैया नंदू भैया तनि तुहु बताई
1: देखा
0: दो।
1: परोरा का हम बुझावन भैया बता देते, यह 2400 रुपया से लेके 2500 रुपया प्रति कुंटल। अब मरचा जौन है 3500 रुपया प्रति कुंटल का बिकल है भैया। आ कोहरा के साथे साथे बता दें कि ये 1500 रुपया प्रति कुंटल गयल है।
0: और भैया जो लौकी रहल रहे वो 1800 रुपया से लेकर के 1850 रुपया प्रति कुंटल, खीरा 2400 रुपया प्रति कुंटल,
1: अच्छा
0: अदरक 4,000 से लेकर के 4,500 रुपया प्रति कुंटल, सूरन भैया 3,000 से लेकर के 3,500 रुपया प्रति कुंटल, और साथ में भैया मक्का जो रहा 1,800 रुपया प्रति कुंटल। इस तरह भैया राजस्थानी पहाड़िया मंडी का बाजार भाव रहा।
1: तो भाई देखा ये कुल बाजार भाव से बुझावन भैया बड़ा जोन है हमन के फायदा ये हो जाला कि का रेट जोन है इसमें चलत है बाजार में,
0: बिल्कुल
1: तो
0: भैया,
1: केहू जोन है दबा के रेट ना ले सकत है। तो ये बदे बाजार भाव के बारे में जानकारी रखे के चाहिए हमन देत रहिला जा अपने कार्यक्रम के माध्यम से। अब जोन है ना तनी सी अपने ये कार्यक्रम में जोन है किसान बाड़ी में मन मनसायन हुई आ एकरे बदे हमहन सुनल जी अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का गौ नहीं, लेकिन है जोन सनेस है ना एके किसान भाई लोगन के पहले सुनवावल जाओ।
0: बिल्कुल सुनवा दे भैया।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: देखे नंदू भैया, अखिलेश कुमार विश्वकर्मा का ये किसानी गीत कितना बढ़िया लगल हाँ।
1: एक
0: और
1: किसानी
0: किसान
1: गीत
0: भैया भी सुन ले हाँ, और तुहु
1: बिल्कुल
0: सुन रहा है और बहुत खुश होत रहा है।
1: हाँ आई गीत गौनई हो गल। आ अब जौन है ना देखा अगली किसान वाणी अपन हुई भाई 5 सितंबर 2026 दिन शनिवार के संझा के 6:30 पर।
0: जी मैं भैया, एफपीओ किसान उत्पादक संगठन के बारे में डॉक्टर राजीव रंजन से रामकृष्ण मिश्रा का बात कही हो भैया।
1: तो देखा आज कुल चर्चा हो गल, बत कही हो गई आ कुल जानकारी भी अपने किसान भाई लोगन के मिल गल। तो चलल जाए, जय जवान
0: जय
1: जय
0: किसान।
1: किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं डॉक्टर महेश झा की वार्ता।
1: काश्चन गजल गीतया प्रथमं तावत् नमो हर्निशम्।

निशम पातकात् पातु मां राघवो हरनिशम वैभवे नावलिप्तांशुभार्जानपि वैभवे।

प्रभूतोन्मदो मदिहृदन्तर्गतो रावणो हरनिशम्।

जलपतो हरनिशम जीवनम जातु मे, जलपतो हरनिशम जानकी जानये श्यान नमो हरनिशम पातकात् पातु मां राघवो हरनिशम। अपरम तावत् तस्य हेतो,

कस्य हेतु सखे हर निशं धावनं कस्य हेतु। पुनः अग्रे वासंत वातः

तां शनैस्तां स्पृशं शनैस्तां स्पृशं याति वासन्तवातः।

मुदातेस्पृशं भाति बासंत बातः मुदातेस्पृशं

0: समन्मोदयन् याति बासन्तबातः।
1: संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश झा की वार्ता। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार प्रियंका वर्मा पुत्री शिव प्रताप। प्रियंका वर्मा 11 मार्च सन 2025 से लापता हैं। प्रियंका वर्मा वार्ड नंबर 5 धोबिया टंकी न्यू मार्केट तुर्रा थाना पीपरी जिला सोनभद्र की निवासिनी हैं। प्रियंका वर्मा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 20 वर्ष, लंबाई 4 फीट 8 इंच, रंग गेहुआ है, शरीर सामान्य है, गोल चेहरा है, ये हिंदी भाषा बोल लेती हैं। प्रियंका वर्मा के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने पर या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है और ये सूचना भी हमें कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र से प्राप्त हुई है। बसंती पत्नी दयाराम। बसंती 13 मार्च सन 2025 से लापता हैं। बसंती के बारे में बसंती ग्राम बबनी देवाटोला थाना बबनी जिला सोनभद्र की निवासिनी हैं। बसंती के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 28 वर्ष, लंबाई 5 फीट 8 इंच, रंग सांवला है, शरीर सामान्य है, चेहरा गोल है, ये नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई हैं। बसंती के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो

वे अपने नजदीकी थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र को सूचित करें। कोई भी व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल, जिलाधिकारी को प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ित परिवारों को प्रदान की राहत सामग्री और भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री ने आज मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ ने आज बैठक में लिया हिस्सा, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों की ली जानकारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति का हाल जाना। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने काशी में नदियों के जलस्तर और राहत शिविरों में किए जा रहे इंतजामों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी से भी फोन पर बाढ़ की स्थिति का फीडबैक लिया। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि बाढ़ राहत कार्यों की निरंतर निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान की

0: जय
1: माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जो यहाँ की बाढ़ की स्थिति है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है और यह निर्देश दिया गया है कि जो बाढ़ राहत बचाव का कार्य है वो युद्ध स्तर पर चलाया जाए, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए ये सुनिश्चित करें। जो वर्तमान में वाराणसी में गंगा जी का जलस्तर है वो 70.6 मीटर पे चल रहा है, जो वार्निंग लेवल होता है, चेतावनी बिंदु है हमारा, उससे करीब 30 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है। इसमें करीब 17 बाढ़ राहत शिविर हमारे संचालित किए जा रहे हैं और उसमें करीब 1800 लोग हैं जो आज की डेट में वर्तमान में बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। श्री योगी ने बाढ़ से प्रभावित लगभग 1000 परिवारों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान उन्होंने बाढ़ में आश्रयहीन हुए परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार बाढ़ की आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे की रिपोर्ट आते ही अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे DBT के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर जरूरत का ध्यान रखते हुए सरकार उन तक हर संभव मदद और राहत पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।
2: बाढ़ राहत कार्य के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियां, राहत शिविर और जिन गांवों में बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस चुका है वहां पर उन सभी प्रभावित परिवारों के लिए शासन ने जो सुविधा उपलब्ध करवाई है, उनके रहने के लिए, भोजन के लिए और जो लोग अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घर पे, उन तक राहत सामग्री की किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ का स्थायी समाधान निकालना चाहती है, इसके लिए ड्रेजिंग के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। इसमें जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उन्हें उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी। भारी बारिश के कारण आज जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में स्कूलों में छुट्टी रही। उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर और बढ़ने के बाद प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। लखीमपुर खीरी में शारदा, अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा और बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी जनपदों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में करीब 1051 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि और प्रमाण पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार मथुरा समेत सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ आर्थिकी पर भी सरकार ध्यान दे रही है।
3: विरासत केवल किसी भौतिक वस्तु में नहीं होती और इसीलिए डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया आयाम जोड़ा है कि विरासत भी और विकास भी, आस्था भी और आर्थिकी भी, यानी अर्थव्यवस्था भी, परंपरा भी और परंपरा के साथ साथ परिवर्तन भी।
0: मुख्यमंत्री कल सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पूजन भी करेंगे। वहीं कल शाम गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के आयोजन में शामिल होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर ब्रजनगरी मथुरा पूरी तरह सजकर तैयार है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि जन्मोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मथुरा में कल जन्माष्टमी पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत किया जाएगा।

0: देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर पूरे मथुरा शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा के जन्म स्थान की सुरक्षा में कमांडो के साथ साथ सिविल पुलिस, पीएसी, एलआईयू, सीआईएसएफ, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की तैनाती की गई है। शहर की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार मंदिर परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि यातायात, भीड़ नियंत्रण और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। शहर के सभी होटलों और गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में निरंतर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ एयर मार्शल रिटायर्ड जितेंद्र मिश्रा ने आज अयोध्या पहुंचकर ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने भरोसा जताया कि अपने अनुभव और कार्यशैली के साथ वो इस पद की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। श्री मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझने के बाद ही वो औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे।
2: पहली बैठक जो थी वो इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जहाँ पर हमने एक दूसरे के विषय में जाना और एक दूसरे के कार्य करने के विषय में जाना। अब अगले 2-3-4-5 दिन जहाँ तक बस चाहेगा मैं उनके साथ बैठ के करूंगा और अपने काम को भली भांति से समझ लूंगा। जब मैं इसको भली भांति से समझ लूंगा तब मैं सीईओ के रूप में टेक ओवर करूंगा।
0: भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के विधिक माप विज्ञान विभाग ने आज लखनऊ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में हुए रिफॉर्म्स को सभी हितधारकों तक पहुँचाना है।
3: जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में डीक्रिमिनलाइजेशन के माध्यम से जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनको हम अपने लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स तक पहुंचाएं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बताएं, हमारे जो ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशंस हैं उनको बताएं, ताकि हम इसका सरलीकृत कर सकें, ताकि न केवल उपभोक्ताओं का हितों के संरक्षण की भी बात हो बल्कि हमारे देश में जो ट्रेड और कॉमर्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जाना हाल, जिलाधिकारी को प्रभावितों को तत्काल राहत प्रदान करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, पीड़ित परिवारों को प्रदान की राहत सामग्री और भूमि आवंटन प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री ने आज मथुरा में करीब 1,051 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ ने आज ट्रस्ट की बैठक में लिया हिस्सा, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों की ली जानकारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
3: प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।
4: हमारी संस्कृति हमारे संस्कार विश्व वैदिक सनातन न्यास द्वारा सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम संस्कृति संवाद डॉक्टर संतोष सिंह के साथ प्रत्येक शुक्रवार शाम 6:30 बजे विविध भारती वाराणसी पर।

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में उमराव जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
5: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
6: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

एमजी शिव कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल से। संगीतकार ए आर रहमान थे। इसी गाने के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक तांबे से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि सहायक पुलिस निरीक्षक साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे। बहुत बहुत स्वागत विवेक जी।
2: थैंक यू सर। थैंक यू
1: विवेक जी। आपका जो पूरा काम है साइबर क्राइम के बारे में, हम उस पर बहुत तफसील से बात करेंगे, लेकिन किस तरह से आप विजिलेंस का काम भी करते हैं?
2: सर, विजिलेंस का काम ऐसा जो हमारा रेगुलर पुलिसिंग है, रेगुलर पेट्रोलिंग हमारा होता है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स आजकल ज्यादा हो रहे हैं, स्नैचिंग होता है, थेफ्ट होता है, तो स्ट्रीट पेट्रोलिंग हम बढ़ाते हैं। हमारे जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है वो सारे जगह जगह पे जाके चेकिंग्स करती है, जिससे स्ट्रीट क्राइम रोकने का हमारा ज्यादा फोकस होता है। फिक्स पॉइंट्स होते हैं हमारी व्हीकल्स घूमती है, एंड हमारा कोशिश रहता है कि स्ट्रीट क्राइम कोई भी ना हो और पब्लिक

0: में एक ऐसी फीलिंग रहे कि हम सेफ एंड सिक्योर है।
1: सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, साइबर क्राइम का निशाना लोग किस तरह से बनते हैं, उस बारे में आखिर वो कौन सी चीज है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए?
0: इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइबर क्राइम के विक्टिम कोई भी होता है, उसको या तो कोई कॉल आता है साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल का, या तो कोई मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक हो या कोई मैसेज हो। तो पहले तो हमें ये वेरीफाई करना जरूरी है कि हमें जो भी कॉल या जो भी मैसेज आया है वो जेन्युइन है क्या। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, उनके पास आधी अधूरी जानकारी आपकी हो सकती है। कोई आपको बोल रहा है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, कोई आपको बोल रहा है कि आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, कोई आपको बोल रहा है कि आपका मोबाइल का केवाईसी अपडेट कर दो नहीं तो आपका मोबाइल नंबर आज के आज बंद हो जाएगा, कोई कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं आप पैसे भरो नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा,
1: कोई
0: कॉल
1: कुरियर वाला
0: कुरियर वाला आपको कॉल करके बोल रहा है कि आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। तो आने वाला कॉल या आने वाला मैसेज ये जेन्युइन है या नहीं, ये वेरीफाई करना सबसे पहला जरूरी
1: ये
0: है।
1: चलते हुए फोन कॉल के बीच इसको कैसे वेरीफाई करें या इससे कैसे बचें?
0: देखिए, कोई कॉल करना ये उस सामने वाले के हाथ में, कॉल रिसीव करना उस पर कितनी बात करना ये हमारे हाथ में। अगर कोई भी बैंक का एम्प्लॉय बोल के आपको कॉल कर रहा है तो आप डिस्कनेक्ट कीजिए। आपके पास मोबाइल में बैंकिंग ऐप है, आपके पास बैंक का वेबसाइट है, आप जिस बैंक में अकाउंट खोले उसके बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर का आपके पास नंबर होता है, आप उनको कॉल करके ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं। आजकल ये जो कंसेप्ट है ना डिजिटल अरेस्ट टाइप का, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे साइबर क्रिमिनल जो इंडिया के बाहर बैठे हुए हैं, वो किसी तरीके से बाहर इंडियंस जो जॉब के लिए गए हुए हैं उनको रिक्रूट कर लेते हैं, बाय प्रेशर बाय हुक और क्रूक कर लेते हैं, एंड उसके थ्रू उनको इस साइबर क्राइम में डाल देते हैं। अब साइबर क्राइम करने वाले लोग क्या करेंगे कि जो भी विक्टिम है उसको कॉल करने के बाद कोशिश ये उनकी रहेगी कि वो किसी और से कनेक्ट नहीं हो, ये वो किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से कोई भी ओपिनियन ना ले, इस वजह से उसको डिजिटली अरेस्ट कर दे कि नहीं आपको अभी इमीडिएटली ये वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे क्रिमिनल जो ऐसे वो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के भी बैठते हैं एंड सिर्फ एक ग्लिम्स देते हैं आपको कि हाँ नहीं हम जेन्यून है, वो बस यही प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा कॉल हमारा SMS और ये जो चल रहा है वो जेन्यून है, ये फेक नहीं है। आदमी डर जाता है और वो उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। उनको ऐसा बोला जाता है कि आपने जो कुरियर किया हुआ है उसके अंदर ड्रग्स है तो आपको इमीडिएटली नार्कोटिक डिपार्टमेंट से हम बात करें और आपको इतना इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। लोग डर के मारे वो जो अकाउंट देंगे उसमें पैसे दे देते हैं। उस वक्त उस आदमी को ये लगता है कि कैसे भी करके मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है। बट ये जिस टाइप का फ्रॉड है अगर इसको काउंटर करना है तो लोगों को ये भी तो समझना चाहिए कि अगर हमने कुछ किया ही नहीं है हमारे ऊपर एलिगेशन क्यों लग रहे हैं। अगर हमने कोई कुरियर भेजा ही नहीं है तो हमारे ऊपर इस तरीके, आपको पहले तो वो कॉल डिस्कनेक्ट करके आपके लोकल पुलिस स्टेशन के नंबर पे कॉल करना चाहिए। जैसे अगर आप मुंबई में हैं तो आप 100 नंबर है, आप अदर कमिश्नरेट्स में 112 है कहीं पे, तो आप जो टोल फ्री नंबर्स है हेल्पलाइन नंबर्स है उन पे कॉन्टेक्ट करके वेरीफाई कीजिए कि ये जेन्यून है या नहीं है।
1: मान लीजिए किसी का कॉल आया, हमको संशय हुआ, हमने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, या मान लीजिए साइबर क्राइम हो गया है और तब हमने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, क्या सचमुच वहां मदद मिलती है और किस तरह की ये मदद होती है?
0: सर पर्टिकुलरली साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 1930।
1: जी
0: कोई भी विक्टिम जिसके साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको सबसे पहली चीज करनी चाहिए उसने 1930 पे कॉल करना चाहिए और
1: वन
0: रिपोर्ट
1: नाइन
0: कर,
1: थ्री जीरो
0: 1930 ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है ऑल ओवर इंडिया में। और अगर वो नंबर बिजी आ रहा है तो आप cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। द मोमेंट आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है और उसके ऊपर काम इंस्टेंट शुरू हो जाता है,
1: तुरंत
0: तुरंत शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रेगुलर हेल्पलाइन नंबर होता है हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी में, जैसे मुंबई में मुंबई पुलिस का 100 नंबर है, वैसे हमारे नेबरिंग सिटी जो है मीरा भाईंदर कमिश्नरेट उसमें 112 है, काफी जगहों पे 112 या 100 ही है। तो जैसे आप उस पे कांटेक्ट करते हो वहां से भी आपको हेल्प मिलता है, आप ये चीज के लिए श्योर हो जाते हो कि ये जेन्युइन है या फेक है। तो वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपके साथ सच में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, जो इंडिविजुअल आपसे बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर बन के वो सच में है या फेक है, ये वेरीफाई करना जरूरी है और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलता है इन दो हेल्पलाइन नंबर्स के ऊपर।
1: अच्छा, आजकल एक चीज और बहुत देखी जा रही है विवेक जी, के सब लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और अमूमन हम जानते हैं कि +91 से शुरू होने वाले कॉल तो हमारे देश के भीतर से आ रहे हैं, लेकिन बहुत अनजान कोड से नंबर आते हैं। जैसे पड़ोसी देश का नंबर है +92 जो कंट्री कोड है, उसके अलावा भी बहुत अनजान कंट्री कोड से आते हैं। और जब हम गूगल करके

0: देखते हैं तो कोई अफ्रीकन कंट्री मिलती है, कोई यूरोपियन कंट्री, अमेरिका भी मिलता है कई बार। ऐसे कॉल से क्या नुकसान हो सकता है हमने उठा लिया, या मैसेजेस से या व्हाट्सएप कॉल से या व्हाट्सएप मैसेजेस से हमारा क्या बिगड़ सकता है?
1: जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो प्रिकॉशन लेते हैं कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सके, वो ट्रेस ना किया जा सके इसके लिए वीओआईपी कॉल का सहारा लेते हैं। अब ये वीओआईपी कॉल्स करने के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो ये फैसिलिटीज देती है कि आप बस उनको एक नॉमिनल अमाउंट पे करो, वो आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर से आप व्हाट्सएप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉल्स 100% कॉल्स बाहर कंट्री से ही आ रही, वो इंडिया से भी ओरिजिनेट होती है काफी कॉल्स, एंड काफी कॉल्स राउट होके इंडिया में आती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका नुकसान ये, नुकसान तो कुछ होना नहीं है, वो आपके ऊपर साइबर क्राइम करने के लिए ट्रैप सेट करने का कोशिश करेगा उस कॉल को।

0: नहीं है, वो आपके ऊपर साइबर क्राइम करने के लिए ट्रैप सेट करने का कोशिश करेगा उस कॉल को करके या उस मैसेज को करके। वो बस इसके लिए प्रिकॉशन ले रहा है कि उस तक पहुंचना आसान नहीं हो, इस वजह से वो इस तरीके के नंबर्स यूज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि +92 यूज कर रहे, +44 यूज कर रहे, ये कर रहे वो। अब यहां तक ऐसा है कि आपको VIP कॉल नॉर्मल नंबर से भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी आपको +92 +44 या अदर नंबर से आना है। वो जब आपको कॉल आ रही है, यही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको वेरीफाई करें कि ये कॉल जो इंडिविजुअल कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। अब ये फ्रॉडस्टर ये अलग अलग नंबर से जो कॉल कर उठाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपको उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने। आपको वो नंबर भी आप जो 1930 पे रिपोर्ट कर सकते कि इस तरीके मुझे मैसेज आ रहे हैं, ताकि उनके ऊपर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है हमारा I4C करके सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सेंटर है दिल्ली में, जो इसके ऊपर काम करता है, जो ये डेटा कलेक्ट करता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं कि किस तरीके के मैटर जो है हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं।
1: अगर हमारे पास किसी इस तरह के नंबर से कॉल आता है तो क्या हम मैसेज करके ये सूचना दे सकते हैं किसी एजेंसी को कि भाई हमारे पास यहां से कॉल आ रहे हैं?
0: जैसे मैंने कहा कि 1930 पे कॉल करके आप पोर्टल पे वो आए हुए जो मैसेजेस है उनके स्क्रीनशॉट तक अपलोड कर सकते हैं। उसी पे हमारा चक्षु करके एक पोर्टल है जहां पे स्पेसिफिकली आप नंबर्स को भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये नंबर से हमें कॉल आई है।
1: जिससे पोर्टल का एड्रेस दीजिए,
0: वही सेम जो हमारा cybercrime.gov.in पोर्टल है उसी से वो लिंक्ड है, उसके ऊपर एक पेज है जहां पे आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट डालिए। एंड काफी ट्राई ने अब जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें स्ट्रिक्ट कर दिए है, जिस वजह से जो ये स्पैम मैसेजेस भेजे जाते थे उसके ऊपर भी काफी हद तक रोक लगी है अभी।
1: जी विवेक जी, मुझे ये बताइए कि और क्या क्या रूप हैं साइबर क्राइम के? जैसे हमने ये देखा कि एक कुरियर फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल, वो क्या है?
0: सर, कुरियर फ्रॉड ऐसा है कि जैसे आजकल हर किसी का कोई ना कोई पार्सल कोई तो भेजता है या कोई तो आना ही होता है। तो मान लीजिए आपको कॉल आ गया कि हम नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं एंड आपके जो भी पार्सल है कुरियर आपने जो भेजा उसमें ड्रग्स मिले, तो आदमी डर जाता है एंड वो आपको बोलते कि इमीडिएटली आप जो है हमें लाइव वीडियो कॉल पे आइए, आपको इतना इतना अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इमीडिएटली अकाउंट में भरना पड़ेगा। लोग एक्चुअल में यूनिफॉर्म में भी बैठते हैं डराने के लिए, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई किया जाएगा, आपको अरेस्ट हो सकता है। देन वो इमीडिएटली कुछ ऐसे फॉर्म आप बना देंगे, ड्राफ्ट कर देंगे, आपका नाम डाल के सेट फॉर्मेट होते हैं, फिर आपको व्हाट्सएप करना शुरू करते हैं कि आपके अगेंस्ट ये केस रजिस्टर हो चुका है, आपके अगेंस्ट ये वारंट है। तो डरा के लोगों से पैसा निकालना ये ऑब्जेक्टिव है। ये इस तरीके से भी करते हैं कि आपका ये जो नंबर है आपके नाम से कुछ सिम कार्ड मिले हैं, ऐसे ऐसे कोई बड़ी केस हुई है जिसमें आपके नाम से जो सिम कार्ड यूज हुए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉलिंग के लिए यूज किए गए हैं, जिसमें साइफनिंग ऑफ मनी हुआ है, इसमें बहुत सी, और वो कुछ एक्चुअल जो केसेस होते हैं उनके न्यूज उनको भेज देते हैं रेफरेंस के लिए, और डरा के उनसे भी इस तरीके से पैसे निकाला जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्कैम ऑलरेडी चल रहा है जिसको हम लोन ऐप स्कैम कहते हैं, कि लोग मोबाइल पे लोन एप्स जो रहते हैं उनके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं एंड लोन लेते हैं छोटे मोटे अमाउंट के। अब जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं तो उसके अंदर स्पाई एप्स होते हैं जिससे आपका कॉन्टैक्ट फोटोग्राफ सारी चीजें सामने वाले के पास चली जाती है, फिर वही चीजें वायरल करेंगे ये डरा के आपसे और पैसे निकाले जाते हैं। अगर आपने 5,000 का लोन लिया तो आपसे 10,000 मांगे जाते हैं, और ये तब तक चलता है जब तक आपसे जितना पैसा निकाला जा सकता है निकाले एंड बाद में आपको वो ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा और एक फ्रॉड ऐसा चल रहा है जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बोलते हैं, कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आपको कुछ रिव्यूज देने हैं, आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा अमाउंट, जैसे शेयर मार्केट की तरीके ऐसे इस तरीके से आपको मैसेज करते हैं, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाइवर्ट किया जाता है जहां पे आपको एक्चुअल में कोई ऐप इंस्टॉल करवाते हैं जिसमें आपको दिखता है कि आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपको प्रॉफिट हो रहा है। इनिशियली वो आपको थोड़ा पैसा रिक्वेस्ट देके निकालने को भी देते हैं, जैसे 5,000 इन्वेस्ट किए तो 10,000 आपने निकाले आप खुश हो जाते हो, फिर वो अमाउंट 2 लाख 5 लाख 10,000 तक लेके जाते हैं, फिर सडनली वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो लोगों के साथ ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी हो रहा है, 5-5, 10-10 लोगों ने 50-50 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे डाले हुए, तो लोग थोड़ा सा ग्रीड के चक्कर में विक्टिम बन जाते हैं। तो ये ग्रीड जो है वो मेन फोकस होता है साइबर क्रिमिनल्स का, कि थोड़ा सा कोई ल्यूक्रेटिव ऐसा ऑफर दो कि सामने वाले को लगे कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, यहां पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस वजह से साइबर फ्रॉड ज्यादा होता है। तो ये ग्रीड को कहीं पे रोकना जरूरी है।
1: जी बहुत जरूरी बातें आप बता रहे हैं विवेक जी, और यहाँ एक गाने की जगह बनती है, तो बताइए कि अब आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं अपने सुनने वालों के लिए?
0: अभी लेटेस्ट जो है ओ सजनी रे, लापता लेडीज का सॉन्ग है।
1: जरूर सुनते हैं लापता लेडीज फिल्म का ये गाना।

ये था साइबर क्राइम विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक तांबे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: पहल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका शराफत, निर्देशिका अचला नागर।
1: ये क्या हो रहा है? क्यों बे, बोलता क्यों नहीं? चल खड़ा हो जा।
2: पैंट पैंट फट गई है साहब।
1: टांग तो नहीं टूटी? चल खड़ा हो। अरे ये क्या खून निकल रहा है नाक से?
2: बहुत मारा पब्लिक लोग ने।
1: मारते नहीं तो क्या पूजा करते तेरी? किधर है पाके? निकाल। ये रहा। किसका है भाई ये बटुआ?
3: मेरा है साहब, मेरा है, मेरा है साहब।
1: आपका? क्यों भाई छोकरे, इन्हीं साहब का पाकिट मारा था?
2: साहब पहली बार ही किया ऐसा धंधा।
1: बंद लीजिए साहब, बटुआ लीजिए अपना।
2: सही बोलता हूँ साहब, सच्ची बोलता हूँ।
1: चौप एकदम चौप। हाँ मिस्टर, बटुआ खोल कर देख लीजिए, सब ठीक है ना?
4: ठीक ही होगा साहब, इसको बाहर निकालने का मौका ही कहाँ दिया लोगों ने?
5: आज ये बताओ, मैंने देख लिया और वही पकड़ लिया कमीने को रंगे हाथों।
4: ससुरा भागने लगा था हाथ छुड़ा के, वो तो मैंने एक दिया घुमा के।
1: ओके ओके ओके मिस्टर, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा।
4: पुलिस स्टेशन जाने दो साहब, मेरे को मेरा बटुआ मिल गया, अब बेकार लफड़ा करने से क्या फायदा?
1: क्यों रिपोर्ट नहीं लिखवानी तुम्हें?
4: नहीं बाबा, अपने को पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं, काम धंधे को पहले ही बहुत खोटी हो गया।
1: चलो चलो जाओ, हटो, चलो जाओ,
6: मैं भी जाऊं साहब।
1: ए तू किधर जाता है? चल थाने।
6: माफ कर दो साहब, पहले ही बहुत मार लिया पब्लिक ने, ये देखो सारी कमीज में खूरी खूर है साहब।
1: सुन तो बेटा, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरा, लोगों की जेबों को अपना बैंक समझ रखा है।
6: साहब साहब, पहली बार ही किसी की जेब को हाथ लगाया था साहब।
1: पहली बार किसी की जेब को हाथ लगाया कि पहली बार पकड़ा गया?
6: सच्ची बोलता हूँ साहब, माफ कसम, पहले कभी ऐसा धंधा नहीं किया साहब।
1: आपकी झूठी कसम खाता है। नाम क्या तेरा?

0: मुझे रतन
1: बाप का नाम
0: जी रामचरण दास
1: रहता किधर है
0: वो रेलवे लाइन के बाजू में जो नाला है उधर
1: वो मजदूर बस्ती में
0: साहब
1: मजदूर बस्ती में क्या नाम बताया बाप का
0: जी रामचरण दास
1: ये वो तो नहीं जिनका एक पैर कटा हुआ है
0: हाँ साहब दो साल पहले मिल की मशीन में आके कट गया था साहब
1: मालूम है मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बाप को वही ना जो बस्ती में भजन गाते हैं भगत जी
0: हाँ साहब कोई कोई भगत जी भी बोलते हैं
1: कोई कोई नहीं सारे लोग भगत जी कहते हैं और तू भगत जी जैसे शरीफ आदमी का बेटा और जेब कतरा चल मेरे साथ
0: किधर को साहब
1: अबे चल चल बैठ जाओ उधर
0: साहब ये तो
1: ले पानी पी
0: जी साहब
1: हाँ हाँ पानी पी और मुंह भी धो ले साथ में
0: साहब ये तो किसी का घर है का
1: किसी का नहीं मेरा घर है तू भगत जी का बेटा है इसलिए तुझे थाने नहीं ले गया हाथ मुंह धोकर पानी पी और इधर बैठ जा अच्छा, मैं अभी आता हूँ
0: अच्छा साहब
1: ये ले
0: ये क्या साहब
1: कमीज है और क्या तेरी कमीज फट गई है ना चल इसे पहन ले
0: फटी तो पैंट भी है साहब
1: हाँ हाँ लेकिन तेरे नाप की कोई पैंट तो है नहीं मेरे पास अच्छा ठहर क्या क्या पजामा लेके आता हूँ
0: आप बात अच्छे है साहब
1: अच्छा अच्छा कुछ नहीं बे ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि तू भगत जी का बेटा है और मैं भगत जी की बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी बस्ती में सबसे शरीफ आदमी है वो ये ले पजामा पहन ले चाय पिएगा
0: जाने तो साहब
1: हाँ हाँ जाने तो दूंगा पहले तुझसे जरा बातें तो कर लूं तू सबसे बड़ा लगता है भगत जी का
0: नहीं साहब मेरे से बड़ा एक और था
1: था मतलब
0: वो भाग गया साहब जब बाप का पैर कटा और घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो एक दिन वो चुपके से भाग गया
1: वाह क्या कलयुग का श्रवण कुमार था उसके बाद तू है
0: जी नहीं एक बहन है मेरे से बड़ी
1: शादी हो गई उसकी
0: हो गई थी मगर उसका आदमी दारू का धंधा करता था साहब इसलिए पकड़ा गया साल भर की हो गई
1: वाह वाह वाह शाबाश ये सारे नमूने भगत जी के भाग में बदे थे आजकल बहन कहाँ है
0: हमारे घर में है साहब वो छोटे छोटे दो बच्चे लेकर कहाँ जाती है अकेली
1: तीसरा नंबर तेरा है
0: जी
1: और तेरे बाद
0: मेरे बाद एक भाई है उसके पीछे तीन बहने हैं
1: भाई क्या करता है
0: कुछ नहीं साहब
1: कुछ नहीं तो मतलब सब लोग भगत जी की छाती पर बैठ कर खाते हो माँ तुम्हारी माँ कुछ काम करती है
0: बर्तन भांडे मांजने जाती है साहब दो तीन घरों में
1: भगत जी को मिल से मुआवजा भी तो मिला होगा पैर कटने का
0: हाँ साहब उसमें से थोड़ा सा बहनोई के मुकदमे में खर्च हो गया और बाकी मंदिर को चढ़ावे में दे दिया
1: भगत जी ने
0: हाँ साहब
1: वाह वाह वाह क्या श्रद्धा है क्या देवता आदमी है जिनकी तिजोरियां भरी होती है उनकी जेब से तो चवन्नी तक नहीं निकलती मंदिर के नाम पर अरे भगत जी है सो मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे देवता के घर राक्षस कहां से आ गए एक वो हैं जिनका मुंह खुलता है तो जबान से राम राम निकलता है और एक तुम हो जो चोरी के इल्जाम में सड़कों पर जूते खाते फिरते हो शर्म आनी चाहिए अब सिर झुका कर क्या बैठा है उधर देख वो दीवार पर तस्वीर देखता है जानता किसकी है मेरे पिताजी की है मैं 3 बरस का था तभी चल बसे थे उनकी सूरत बस इस तस्वीर में ही देखी है मैंने सिवाय इस तस्वीर को माला लाने के और कोई सेवा नहीं कर सका मैं अपने जन्मदाता की इतना तरसा हूं जिंदगी भर बाप की परेशानी को और बाप ही क्या भाई बहन भी नहीं बस मां ने किसी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा किया लेकिन तुम मां बाप भाई बहनों की कदर क्या जानो सब दिया है ना राम जी ने इसीलिए आज बेखटके बाप की इज्जत को बाजार में उछलता है सोचता हूं भगत जी को पता चलेगा तो उनकी आत्मा को कितना दुख होगा कैसे तू इतने भले आदमी के मन को चोट पहुंचा सकता है
0: साहब एक बात बोलूं
1: क्या बात है
0: आप मेरे बाप को इतना शरीफ आदमी मालूम है क्यों बोलते हो
1: क्यों
0: क्योंकि वो आपका बाप नहीं है
1: क्या मतलब
0: हाँ साहब क्योंकि वो मेरा बाप है
1: क्या बकवास है
0: साहब काले आदमी के नजदीक सांवले आदमी को बैठाओ तो वो गोरा ही दिखेगा
1: तू कहना क्या चाहता है
0: मैं आपकी नजर में चोर बदमाश हूँ साहब पाकेटमार हूँ इसीलिए आपको मेरा बाप बहुत शरीफ दिखाई देता है मेरे कसूर के लिए तो पुलिस है थाना है जेल है और ये नहीं तो सड़क पर जूते मारने के लिए पब्लिक है मगर मेरे बाप के कसूर के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है
1: दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा उस संत आदमी के खिलाफ क्या बकवास कर रहा है खिला फिला कर इसलिए जवान किया तुझे
0: जवान किया कैसा जवान किया वो तो आपको दिखता ही है साहब बदन पर फटे हुए कपड़े है न खाने का ठिकाना न रहने का जिधर जाता हूँ लोग दुत्कारते हैं नौकरी मांगता

0: तो गाली मिलती है साहब, जेब काटता हूं तो जूते मिलते हैं, किसी को जवानी बोलते हैं आप?
1: व्हाट नॉनसेंस, करतूतें तेरी और दौलत भगत जी का, जब माँ बाप ने जन्म दिया है तो क्या जिंदगी पर खिलाने का ठेका भी ले लिया है?
0: लेकिन साहब मैं पूछता हूँ काहे को दिया जन्म, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो।
1: शाला शर्म नहीं आती इस तरह की बकवास करते? माँ बाप की इज्जत करना तो दूर, उनके खिलाफ जो मुंह में आगे बकेगा।
0: माफ करना साहब, माफ करना साहब, मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ साहब, बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल, जो दिल में आता है बिना सोचे बोल देता हूँ साहब।
1: लेकिन तेरे दिल में इतना मैला भर कहां से गया?
0: धीरे धीरे करके जमा हो गया है साहब, जब से हो संभाला तब से बराबर जमा हो रहा है साहब, और गरीब आदमी हूं ना इसलिए होश जल्दी ही संभाल लिया था। जब मैं 8-10 बरस का था साहब, तब एक रात अचानक बड़ा हो गया था मैं। मैंने अपने माँ बाप की बातचीत सुनी थी, उस रात अंधेरे में जो कुछ सुना था साहब वो आज भी याद है मुझे, क्योंकि उसी की वजह से जिंदगी में आज तक अंधेरा है साहब।
2: अरे सुनती है रतन की अम्मा, आज वो मोटर वाले सेठ लोग फिर आए थे, अरे वही बिना संतान वाले।
3: कब?
2: संजय को मैंने गली के नुक्कड़ पर ही रोक लेना।
3: फिर वही बात कह रहे होंगे।
2: और क्या, साथ में वो समाज सेवक भी था।
3: लेकिन जब हमने एक बार कह दिया कि हम अपने बेटे को देने के लिए तैयार नहीं है तो बेर बेर आने की जरूरत क्या है? अरे कहीं दूध पूध भी बेचे जावे हैं।
2: अरे कलयुग है ये कलयुग, दूध का बिकना तो तू देख ही रही है रोजाना, पूत का बिकना मैं देखा है आज।
3: क्या मतलब?
2: अरे वो गिरतहलाल नहीं है, अरे वो जो मिल के बॉयलर में काम कर रहे है।
3: हाँ हाँ वही जो राशन की दुकान के ऊपर रहवे है।
2: हाँ हाँ वही।
3: अच्छा क्या हुआ उसको?
2: अरे मति परस्त हो गई है उसकी, और का बेटे को बेच दिया है उसने।
3: मतबल वो मोटर वाले सेठ उसका लड़का ले गए?
2: और का, इतने दिनों तक अपने रतन के पीछे पड़ रहे, अब कोई पूछे भाई तुम्हारे बाल बच्चा नहीं हुआ तो हम क्या करें? पर हमारे ना करने से कहा समाज सुधारक ने गिरधर लाल का लड़का दिलवा दिया उनको। श्री राम श्री राम।
3: कौन सा वाला लड़का दिया है?
2: अरे वही जो अपने रतन के बराबर है, 8-9 वर्ष का।
3: हाय हाय कैसा कलेजा है माँ बाप का, पैदा करके संतान और लोगों को सौंप दी।
2: जब ये तो कहता हूँ कलयुग है ये कलयुग, माँ बाप लड़का औरों को सौंप कर कह रहे हैं इसी में लड़के की भलाई है, सुख चैन से रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहरेगा, खूब पढ़ेगा और जिंदगी बन जाएगी उसकी।
3: मतबल लड़के की जिंदगानी ही सब कुछ हो गई, माँ बाप का फर्ज तो कुछ हुआ ही नहीं।
2: अरे उनसे पूछो तो यही फर्ज है जो उन्होंने किया है।
3: और तो और जो कल को लड़का वापस असली माँ बाप के पास लौट आया तो?
2: ऐसा थोड़े ही होता है, पक्की कानूनी कार्रवाई हुई है, अब तो लड़का गया सेठ का वंश बढ़ाने।
0: सेठ का वंश बढ़ाने मैं भी जा सकता था साहब, मगर कोई पूछे आज 12-15 बरस बाद मैं क्या हूँ? एक चोर मैं क्यों हूँ? क्यों आधा भूखा हूँ, आधा नंगा हूँ, अनपढ़ हूँ, और जब यह सवाल अपने पाप से करता हूँ कि क्यों पैदा किया मुझे, तो बताओ कौन सा पाप करता हूँ साहब? साहब आप तो बहुत भारी पढ़े लिखे समझदार सरकारी अफसर हैं, आप ही बताइए किसका बाप शरीफ है, मेरा या उस लड़के का जो आज सेठ का लड़का बनकर ठाट से मोटर में घूमता है? उसके बाप ने उसे जिंदगी दी और मेरे बाप ने क्या दिया मुझे? कहां धकेला मुझे, सड़क पर लोगों के जूते खाने के लिए। मेरा बड़ा भाई घर से भागता नहीं तो और क्या करता? अभी तो देखना साहब मुझको एक दिन जेल हो जाएगी, छोटी बहनें बड़ी होकर इस उसके साथ भाग जाएंगी। अभी तो बाप की सिर्फ टांग ही कटी है साहब, एक दिन नाक भी कटेगी। अब शायद उस दिन भी मेरे बाप को शरीफ आदमी कहेंगे साहब, मगर मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि शराफत बच्चे पैदा करने में नहीं है साहब, बच्चों की परवरिश करने में है, परवरिश करने में।

अभी आपने लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका सुनी शराफत। निर्देशिका थी अचला नागर। ये नाटिका विविध भारती की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों को। नमस्कार, सविता सिंह का।

जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया और पूजा की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोलते ए आर रहमान की तर्ज थी। जब तक है जान फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

जब तक है जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राघव माथुर, शिल्पा रॉय की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। बार बार देखो फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कर की आवाजों में।

बार बार देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारा अर्शी नेहा कक्कर बादशाह की आवाजें थी, गीतकार थे अमरीक सिंह और कुमार, संगीतकार जैसलिन रॉयल। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से सुनवाएंगे गाने को।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
2: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
1: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है,
2: स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
1: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
2: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलबालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वाज इन टॉप 8।
1: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर

0: सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
2: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
3: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
2: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Samachar Sandhya mein aapka phir swagat hai. विदेश मंत्री

0: बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहा सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील रिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुँच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र

0: द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defense cooperation. Agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from barrages caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kyiv welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. And now the news in detail. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both the leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. More from our correspondent.
3: Both leaders also welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-EU Free Trade Agreement and called for its timely implementation. They also called for early completion of negotiations on the India-EU Investment Protection Agreement and the Geographical Indication Agreement. On defense and security, Belgium conveyed solidarity with India in the fight against terrorism and condemned the terror attack in Pahalgam. Both sides agreed to strengthen cooperation against terrorism and explore the establishment of a joint working group on counter-terrorism. The two countries also signed a letter of intent to strengthen defense cooperation through regular exchanges, training, research and defense industrial partnership. A memorandum of understanding was also signed between the Central Bureau of Investigation and the Federal Police of Belgium to combat transnational organized crime.

0: risen. India and Belgium signed pact on defense cooperation, agreed to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from Bear Rajas caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. He welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाख्त दी वेवर ने मजबूत कलीदी शराकतदारी की जरूरत पर जोर दिया है। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की। भारत और बेल्जियम ने दिफाई तआवुन के सिलसिले में माहदे पर दस्तखत किए हैं। अगले 5 वर्षों में बाहमी तिजारत को दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में तआवुन बढ़ाने से भी इत्तफाक किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सहमाही में 7.8% GDP की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में MSMEs की सताइश की है। बहुत तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में सैलाब आ गया है। वजीर आजम ने वाराणसी में सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। कीव की जानिब से रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की वजीर आजम मोदी की अपील का खैर मकदम किया गया। और खवातीन क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप में भारत और हांगकॉन्ग के दरमियान ग्रुप ए का मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और बेल्जियम ने आज तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी तआवुन को मजीद फरोग देने के अपने अज़्म की तौसीक की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हमनसब बाख्त दी वेवर ने नई दिल्ली में दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद जारी किए गए भारत बेल्जियम मुश्तरका बयानिए में बाहमी तिजारत के शोबों में बढ़ते हुए तनवों का खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने भारत बेल्जियम कलीदी मुज़ाकरात के आगाज का भी खैर मकदम किया। भारत और बेल्जियम ने अगले 5 बरस में बाहमी तिजारत को दोगुना करने के उमंगों से भरे हदफ भी तय किए हैं। दोनों मुल्कों ने अद्वियात साजी, लाइफ साइंसेज, सेमीकंडक्टर्स, दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग, अहम नौयत की मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, खला और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज में तआवुन के खातिर खा इम्कान की भी निशानदेही की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दोनों लीडरों ने भारत यूरोपी यूनियन आज़ाद तजारती माहदे से मुतालिक मुज़ाकरात के कामयाब इख्तिताम और इस पर बरवक्त अमलावरी की ज़रूरत की तजवीज़ का भी खैर मकदम किया। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपी यूनियन सरमायाकारी तहफ़ माहदे और जुग्राफियाई इंडेक्शन से मुतालिक माहदे पर मुज़ाकरात की जल्द अज जल्द तकमील की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दिफा और सलामती के मुतालिक बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजहती का इजहार किया और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। दोनों लीडरों ने दहशतगर्दी के खिलाफ तआवुन को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी से निमटने के सिलसिले में एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों ने मुस्तकिल एक्सचेंज, तरबियत, तहकीक और दिफाई सनअती शराकतदारी के जरिए दिफाई तआवुन को मुस्तहकम करने के एक लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI और फेडरल पुलिस ऑफ बेल्जियम के दरमियान एक मुफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए गए ताकि बैन कौमी मुनज्जम जराइम और साइबर क्राइम से निपटा जा सके। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: भारत और बेल्जियम ने आज दिफाई तआवुन के इकरारनामे और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मुफाहमत नामों समेत कई माहदे किए ताकि बैन मुल्की जराइम से निपटा जा सके। इनमें साइबर क्राइम और सिफारती तरबियत के माहदे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रेस के लिए अपने बयान में जोर देकर कहा कि चैलेंजों से भरे इस माहौल में भी भारतीय मईशत ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी है। वजीर आजम ने कहा कि पिछली सहमाही में भारत में 7.8% शरह तरक्की दर्ज की गई। उन्होंने मजीद कहा कि आज भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया के लिए एतमाद और नए मौके का एक वसीला बनती जा रही है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया।

0: लेबर ने मजबूत कलीदी शराकतदारी की जरूरत पर जोर दिया। बेल्जियम ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई की हिमायत की है। भारत और बेल्जियम ने दिफाई ताउन के सिलसिले में माहदे पर दस्तखत किए हैं। अगले 5 वर्षों में बाहमी तिजारत को दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, अहम मादनियात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में ताउन को बढ़ाने से भी इत्तेफाक किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पिछली सहमाही में 7.8% GDP की शरह तरक्की हासिल करने के सिलसिले में MSMEs की सताइश की है। बहुत तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के सबब उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में सैलाब आ गया है। वजीर आजम ने वाराणसी में सूरत हाल का जायजा लिया और वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। कीव की जानिब से रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील का खैर मकदम किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: स्मृति मानधना का बल्ला चला तो रिकॉर्ड टूटते चले गए। शानदार
2: आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हुई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

0: के फनकार कार्यक्रम में आज नमन एक उत्तम अभिनेता को।
1: रात भर दाढ़ पेलते पेलते हर मास टूटने लगा। ये भी कोई धंधा है?
2: पहले जब तुम लोग महिम घसल का काला धंधा करते थे तब तुम्हारा हार नहीं टूटता था हा? और अब हमारे साथ मछली मारने का ये इज्जत का धंधा चालू किया तो तुम्हारा हार टूटने लगा। चालो
1: धंधा सब धंधा है, चाहे मछली मारो चाहे चोरी करो।
2: मारे बट्टा वाह, बहुत होशियार हो गया।
3: उस्ताद ये नया पंछी कौन है?
2: प्रति नहीं देखता, नया इंस्पेक्टर आने वाला था वही होगा शायद।
3: अच्छा
1: उस्ताद आदमी दबंग लगता है।
2: अबे बहुत देखे दबंग, हाथी घोड़े बहे गए गधाइया पूछे कितना पानी। ला मछली ला। ए पदा
4: हाँ।
2: ये मछली सीधा कालीगंज के महाजन की गद्दी पर पहुंचा दे
4: हाँ।
2: और कहना कि हिसाब साफ कर दे। हाँ
4: अच्छी बात है उस्ताद।
0: जी हाँ आज जिक्र है बंगला सुपरस्टार उत्तम कुमार का, जो हिंदी की कुछ गिनी चुनी फिल्मों में नजर आए थे। एक उत्तम अभिनेता का हिंदी फिल्मों में इतना कम नजर आना हमारा दिल तोड़ देता है, और उन्हें देखने के लिए रुख करना पड़ता है बंगला सिनेमा का।

दोस्तों, आपकी ये रेडियो सखी उत्तम कुमार की बंगला फिल्मों का जिक्र ज्यादा करेगी, लेकिन गीत सुनवाएगी उनकी गिनी चुनी हिंदी फिल्मों की।

उत्तम कुमार का जन्म सन 1926 में हुआ था। उनका असली नाम था अरुण कुमार चटर्जी। अपने शुरुआती दौर में उत्तम कुमार ने कलकत्ता में बंदरगाह कमिश्नर के दफ्तर में क्लर्क की नौकरी भी की थी। बाद में वो स्टार थिएटर समूह में अभिनेता बन गए। सन 1949 में माया दूरे नामक एक फिल्म से बतौर एक्स्ट्रा शुरू हुई उत्तम कुमार की अभिनय यात्रा, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी।

कुमार का बंगला सिनेमा में सबसे बड़ा योगदान था थिएटर की नाटकीय अदाओं से सिनेमा को मुक्त करना। सहज अभिनय ने उत्तम कुमार को शीर्ष पर पहुंचा दिया। उन्हें जिस फिल्म ने एक चमकता हुआ सितारा बनाया उसका नाम है 75.5। निर्मल डे की इस फिल्म से उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी बनी।

सन 1949 में नवेंद्र सुंदर बनर्जी के निर्देशन में बनी उत्तम कुमार की पहली फिल्म रिलीज हुई थी और बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के टाइटल्स में उत्तम कुमार का नाम अरुण कुमार दिया गया था। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि अरुण कुमार नाम शुभ नहीं है, इसलिए दूसरी फिल्म मर्यादा में उन्होंने अपना नाम अरुण कुमार रख लिया। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई और उत्तम कुमार एमपी प्रोडक्शंस में नौकरी करने लगे। दरअसल नई नौकरी में पुरानी असफलताओं को भुलाने के लिए एक बार फिर उन्होंने एक नया नाम रखा, उत्तम कुमार। ये नाम उनके लिए उत्तम सफलता लेकर आया। एमपी प्रोडक्शंस कंपनी से प्रदर्शित उनकी ये फिल्म बोशु परिवार सुपरहिट रही।

1967 में आलू सरकार की फिल्म छोटी सी मुलाकात के जरिए उत्तम कुमार आए हिंदी सिनेमा में।

बैजंती माला और उत्तम कुमार की जोड़ी वाली ये फिल्म बहुत सफल नहीं रही थी और इसके बाद उत्तम कुमार दोबारा बांग्ला फिल्मों में लौट गए थे।

0: अभिनेता उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का दिलीप कुमार कहा जाता है। वे बड़े ही मेहनती अभिनेता थे और पर्दे पर इतने सहज, सरल और प्रभावशाली नजर आते थे कि पूछिए मत।
1: अरे महिम प्रधान, इस गंदी नीच औरतों की बुस्ती में तुम
2: कायदे से मधु, इज्जत आबरू सबकी है
1: और इन लोगों की तो इज्जत आबरू है ही नहीं।
2: मैं
1: साले, सब कुछ तो छीन लिया तूने। इसे औरत को तो छोड़ दिया होता मेरे लिए, यहाँ भी नजर टिका दिया।

0: तो प्यार।
1: उत्तम कुमार सही मायनों में असाधारण अभिनेता थे।
2: काहे अपनी जिंदगी खराब करते हो बाबू, शराब जानवर बना देती है।
3: अरे जानवर न बनू तो ये कुत्ते साले कच्चा खा जाएंगे। ला ला बैठी ला। और देख कल होली है, जबरदस्त हंगामा होना चाहिए। ये ले, ये पैसा ले और बस्ती में जाके बांट दे। हा?
1: हरान अशूर और शब्दपति आदि बांग्ला फिल्मों में वो एक रूमानी नायक बने, तो दूसरी तरफ विचारक, नेकलेस, चिड़ियाखाना, अपरिचित, नायक, शिल्पी, बड़ी दीदी, शाम मोचन, साहब बीबी गुलाम, सोनार हारिन आदि फिल्मों में उनकी प्रतिभा खूब खूब चमकी।
4: सलाम मधु बाबू।
3: अरे आओ आओ नसरुद्दीन, सुनाओ बेटे की तबीयत कैसी है?
4: क्या बताएं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि सदर ले जाओ, लेकिन कैसे ले जाएं? थोड़ा सा धान था वो भी पीतू आकर उठा ले गया। कुछ पैसे बाकी थे महिम बाबू, उसी के बदले में ले गया।
3: बोलो सर। बिल रुपए दे दे नसरुद्दीन को।
4: अब आपसे और लूं?
3: अरे रखो रखो नसरुद्दीन, मेरे पास रहे तो दारू शराब में ही जाएंगे, 10-20 रुपए अच्छे कम में लग जाए तो बुरा क्या है। रखो रखो।
4: कैसे शुक्रिया अदा करूं मधु बाबू? ए बड़ा भैया, जरा नाव पर नजर रखना, मैं दवाई लेकर अभी आया।
3: ए बेटू, अरे नाव क्यों खोल रहा है?
5: मालिक का हुक्म है, पता है कितना पैसा बकाया है नसरुद्दीन पर?
3: अबे तो उसका धान नहीं उठा ले गया?
5: 4 बोरी धान में क्या सारा कर्जा चुकता हो गया? मालिक ने कहा है जहाँ भी नसरुद्दीन का नाम मिले फौरन कब्जा कर लो।
4: ए बिदु भैया, ऐसा जुल्म मत करो, मैं धीरे धीरे सब पैसा चुका।
3: इसके नाव छोड़ दे, बाकी पैसा भी ये दे देगा। मैं इनसे कह देना मेरी जमानत है।
5: तेरी जमानत कौन देगा? तेरा बाप?
3: बाप तक पहुँचना।

सन 1977 में शक्ति सामंत की ही फिल्म आनंद आश्रम में नजर आए उत्तम कुमार। इस बार भी नायिका थी शर्मिला टैगोर, संगीतकार भी श्यामल मित्रा।

1979 में भीमसेन की फिल्म दूरियां में सुदर्शन चेहरे वाले नायक उत्तम कुमार बंगला सौंदर्य की प्रतिमूर्ति शर्मिला टैगोर से ये बात कहते नजर आए।

कुमार की आखिरी हिंदी फिल्म थी मेरा करम मेरा धर्म। इस फिल्म में उत्तम कुमार के साथ थे नायक धर्मेंद्र। ये फिल्म काफी समय से बन रही थी और उत्तम कुमार के मौत के बाद रिलीज हुई।

दोस्तों, उत्तम कुमार की स्मृति को नमन करते हुए आपकी ये रेडियो सखी कहना चाहती है कि भारत में सिनेमा का मतलब सिर्फ हिंदी सिनेमा और हिंदी कलाकार नहीं है। क्षेत्रीय सिनेमा में भी कुछ ऐसे कलाकार सक्रिय हैं या सक्रिय रहे हैं जिनकी अभिनय प्रतिभा असाधारण रही है। उत्तम कुमार सर्वोत्तम कोटि के ऐसे ही अभिनेता थे।

0: 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
1: ऐसी अद्भुत यादें।

0: संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे।
2: वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
2: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

छाया गीत सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मोहब्बत घर आंखों से छलक जाए तो लफ्जों की जरूरत है क्या? आंखें बंद कर लेने से ये जज्बात थम जाएंगे क्या? ये तो मोहब्बत है, अपनी जिद पर अड़ी रहेगी जनाब। लाख कोशिशें कीजिएगा मगर छिपाने से ये छिप जाएंगी क्या?

मोहब्बत का इजहार तो कर दूं, मगर डर लगता है कहीं तुम खफा तो ना हो जाओगे। चलो इकरार कर भी दिया अगर, तो डर लगता है कहीं नखरे तो ना दिखाओगे। नखरों को तुम्हारे मैं सह भी जाऊं, पर डर लगता है दिल चुरा के मेरा कहीं तुम बदल तो ना जाओगे।

ना जाने उन्हें हमारी सूरत पसंद आई या सीरत, ना जाने हमारे बोलने का अंदाज पसंद आया या लफ्ज, बेवजह तारीफ करना आदत सी लगती है उनकी। कहते हैं हर धड़कन पर नाम है तुम्हारा, चाहो तो पढ़ लो हर लफ्ज।

0: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल नेचुरल है
1: इसका सोल्यूशन,
0: वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे।
1: वाओ, सो ब्यूटीफुल,
0: नेचुरल है। नेचुरल ब्यूटी वॉश।

अंतराल के बाद छाया गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यार जब परवान चढ़ जाए तो फिर क्या सुबह क्या शाम, दिल गुनगुनाता है सिर्फ अपनी दिलबर का ही नाम। निकाले चाहे कोई लाख बुराई, करे कितना ही बदनाम, हंसते हंसते सह जाते हैं आशिक हर खुशी हर गम का जाम।

अचानक जब तुम यूं मेरी नजर के सामने आ जाते हो, दिल की धड़कन कुछ इस कदर बढ़ जाती है मानो सारी जिंदगी एक पल में सिमट गई हो। तुम्हारे साथ बिताए चंद पलों को याद करती हूँ तो लगता है मानो ये जिंदगी उन चंद पलों में ही था।

से मिलने की कसक ने इस कदर बेताब किया कि भीगी भीगी रातों में भी जलने लगा मेरा जिया। अब अगर तुम आ जाओ तो चैन आ जाए, मेरा दिलदार आ जाए तो करार आ जाए।

सुना रही हूं प्यार की कहानी। प्यार से सुन लो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा। मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।

सुना रही हूं प्यार की कहानी। प्यार से सुन लो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा। मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।

सुना रही हूं प्यार की कहानी। प्यार से सुन लो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा। मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।

0: ढलती जाए रात।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चल, नेचुरल है
2: इसका सोल्यूशन,
1: वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
0: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
0: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में सलमा की ओर से नमस्कार।
1: विकेट मिलते हैं दीप्ति शर्मा, आज 3 विकेट लेकर विश्व स्तर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन जाती है, जिनकी संख्या 174 है। फिर प्रेमा रावत को 2 विकेट मिलते हैं, 12 रन 3 ओवर्स में उन्होंने खर्च किए थे। हांगकांग के लिए ज्यादा अच्छा सफर बल्लेबाजी में रहा नहीं था। एक तो कप्तान नताशा माइल्स, जिनके नाम 27 गेंदों में 15 रन आए,
2: ताकि दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
3: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
4: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
2: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते का आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, उषा मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत संगीत है ललित का। एल्बम का नाम है मैंने पायल है छनकाई।

मीडियम वेव 241.5 4 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। चिड़ी की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं। संपन्न होती है हमारी ये सभा प्रातः 5:53 पर। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.5 चैनोमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। चिड़ी की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं। संपन्न होती है हमारी ये सभा प्रातः 5:53 पर। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।